जिस लाभ लोभ अहंकारा नाउ पढ़िया नाउ बुझिया गुरमति विचारा गुरमति नाम तन खटिया भगती परे भंडारा।

साथ इस भाव सी नानक रखै लाज महला पहला हक पराया नानका उस सुअर उस गाय गुर पीर हा माता भरी जा मुरदार न खाए गली पिस्त ना जाइए छुट्टे सच कमाए मारन पाहे हराम मैं होए हलाल न जाए नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए महला पहला पंज निवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाम पहला सच हलाल दुई तीजा खैर खुदाई चौथी नीयत रास मन पंजवी सिफत सनाई करनी कलमा आख कै ता मुसलमान सदाई नानक जेते कूड़ियार कूड़ै कूड़ी पाए पौड़ी एक रत्न पदार्थ वणज दी एक कच्चै दे वापारा सतगुर तुठै पाइयन अंदर रतन भंडारा विण गुर किनै ना लद्या अंधे भौंक मोए कूड़ियारा मनमुख दूजै पच मोए ना बूझै विचारा एक सबाजो दूजा को नहीं किसे आगै करह पुकारा एक निरतन सदा भौंक दे एक ना भरे तुजारा विण नावै होर धन नाहीं

रब की रजाए मन्ने सिरे उपर करता मन्ने आप गवावे तो नानक सर्व जिया मेहरमत होए ता मुसलमान कहावे।

काम कामनी मोह तजै ता अंजन माहे निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी टहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्भ भरे भंडार रीते एक खणे ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घर वार किते से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दतार सनाखत कुदरती सलोक महला पहला नदियां होवह तीनवा सुम होवह दुध कीओ सगली धरती सक्कर होवे खुशी करे नित जीओ।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल होए थाव पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे दे है दुख लाई है पाप ग्रह दोहरा रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है।

अग्गी पाला कप्पड़ हुए खाना हुए वाव सुरगै दिया मोहनिया इस्त्रिया होवन नानक सबो जाव पी तू है सालाहना आखन लह ना चाओ पवड़ी बद फैली गै बाना खसम ना जाने सो कहिए देवाना आप ना पछाने।

खसम पठाया, तबल बाज बीचार शब्द सुनाया। एक होए असवार एक ना साखती, इकनी बदे पार इक ना ताखती। सलोक महला पहला, जा पक्का ता कटिया, रही सो पलरवाड़, सण की सारा चिथिया। कान लया तन झाड़, दोए पुड़ चक्की जोड़ कै, पीसन आए बहिठ। जो दर रहे सो उबरे, नानक अजब डिठ। महला पहला, वेख जे मिठा कटिया, कट कुट बद्दा पाए, खुंडा अंदर रख कै, देन सो मल सजाए, रस कस टटर पाई।

वाह क्या करे, खुसरे क्या घरवास, कुत्ते चंदन लाइए पीसो कुत्ती तात, बोला जे समझाइए पढ़िए है सिमरत पाठ, अंधा चानन रखिए दीवे बल है पचास, चौने सोयना पाइए चुन चुन खावे कास, लोहा मारन पाइए कह न हुए कपास, नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश, महला पहला कहां कंचन टुटे सार, अग्नि गंड पाए लोहार, गोरी सेती टुटे पतार, पुत्ती गंड पवे संसार, राजा मंगे दिते गंड पाए, भुखियां गंड पवे जा खाए, काला गंड नदियां मीह झोल, गंड प्रीति मिठे बोल, वेदा गंड बोले सच कोए, मोया गंड नेकी सत होए, एत गंड वरतै संसार, मूर्ख गंड पवै मोहि मार, नानक आखै एहो बिचार, सिफती गंड पवै दरबार, पौड़ी आपे कुदरत साजकै आपे करे बिचार, एक खोटे एक खरे आपे परखण हार, खरे खजाने पाइए खोटे सटिए बाहर वार, खोटे सच्ची दरगाह सुटिए किसे आगे करह पुकार, सतगुर पिछे भज पवह एहा करनी सार, सतगुर खोट्यों हो खरे करे शब्द सुवारन हार, सच्ची दरगाह मनियन गुर कै प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करी जो आप

मेर अबद बादशाह अफजू खुदाई, एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका तरा, हस्त एक दिगर कोई, एक तुई महला पहला, ना दादे देहां दे आदमी, ना सपत जेर जिमी, हस्त एक दिगर कोई, एक तुई महला पहला, ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नह जलो, अन पौन फिर ना कोई, एक तुई महला पहला, ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे, हस्त एक दिगर कोई, एक तुई महला पहला, परंदे ना ग्रहा जर, दरखत आब आस कर, देहां दिसुई, एक तुई महला पहला, नानक ललार लिखिया।

खाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह जेते जी जीवह लै साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों सच्चे भावे त्यों त्यों दे ग्राह महला पहला एक मास हारी एक त्रिण खाहे एक ना शक्ति अमृत पाहे एक मिटिया मह मिटिया खाए एक पौन समारी पौन समार एक निरंकारी नाम आधार।

सारे कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम त्याई है, दूजी कार लग जन्म गवाई है, बिन नावे सब विस पेंजे खाई है, सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है, बिन सतगुर सेवे नाही सुख निवास, फिर आई है, दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है, नानक सच खरा सलाहे पत स्यों जाई है, सलोक महला पहला, तुद भावे ता वावे गावे है, तुद भावे जल नावे है, जा तुद पावे

सेख कहावह, जां तुद भावै ता होवै राजे, रस कस बहुत कमावह, जां तुद भावै तेग बगावह, सिर मुंडी कट जावह, जां तुद भावै जाहे दसंतर, सुन गल्लां घर आवह, जां तुद भावै नाहिर चावह, तुद पाणी तू भावह, नानक एक कह बेनंती, होर सगले कूड़ कमावह। महला पहला, जां तू वड्डा सब वड्याईयां, चंगा चंगा होई, जां तू सच्चा तां सब को सच्चा, कूड़ा कोई ना कोई, आखण वेखण बोलण चलण, जीवन मरना तात, हुक्म साज हुक्मै विच रखै, नानक सच्चा आप पौड़ी, सतगुर सेवन संग परम चुकाई है, सतगुर आखै कार सो कार कमाई है, सतगुर हुए दयाल ता नाम त्याई है, लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है, मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है, सच्चे दै दर जाए सच चवाई है, सच्चा अंदर महल सच बुलाई है, नानक सच सदा सचियार सच समाई है। श्लोक महला पहला, कल काती राजे का साई, धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़िया, हों भाल विकुन्नी होई, अंधेरै राहो ना कोई, विच हों मैं कर दुख रोई, कहो नानक किन बिदगत होई। महला तीजा, कल कीरत प्रगट चानन संसार, गुरमुख कोई उतरै पार, जिसनो नदर करे तिस देवै, नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी, भगतां तै संसारियां।

उजली सच्चा शब्द सुहाया सलोक महला पहला सबाही सालाह जिनी ते आया एक मन से पूरे साह वक्त ऊपर लड़ मोए दूजे बहुते राह मन किया मती खिंदिया बहुत पए असगाह गोते खाए ना निकलह तीजे मुही ग्राह भुख तिखा दोए पौंकियां खादा हुए स्वाह पी खाने स्यों दोस्ती।

गुण गाहक एक वन भुखियां भुख ना उतरै गली भुख ना जाए नानक भुखा तां रजै जां गुण कह गुणी समाए पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है बिन सच्चे तन शार शार लाई है बिन सच्चे सब भुख जे पैंजै खाई है।

ठगियो ठग आइय जाइय तन मह तृष्णा यग शब्द बुझाइय सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान पत के सा

संसार किन समझाई है, सच ना धरे प्यार तंदै ताई है। काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है, हुक्मी सिर जंदार मारे दाई है। आपे दे प्यार मन वसाई है, मोहत ना चसा विलम भरिए पाई है। गुर प्रसादी बुज सच समाई है, सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस। आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस, जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस। हंडन कर्मा बाहरी महला पहला, मत पंखे रू किरत साथ। कब उत्तम कब नीच, कब चंदन कब अक डाल, कब उच्ची परीत। नानक हुक्म चलाई है।

खट दर्शन कह पीख किसे सच समावना सच्चा पुरख अलख शब्द सुहावना मन्ने नाउ बसंक दरगाह पावना खालक कौ आदेश ताडी जावना नानक

आई। हुक्म पया तुर खसम का, अती हूं टका खाई। गुरमुख स्यों मन मुख अड़े, डुबे हक न्याय। दुहां सिरियां आपे खसम, वेख कर व्यपाय। नानक एवै जानिए, सब किस तिसहर जाय। महला दूजा नानक परखे।

मूल जान गल्लां करे हान लाए हान लब ना चली सच रह सो विष्ट परवान सर संदे आगास को।

साधना तृप्तिया सायर परेक सुख नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा नेह पलंग तस जन्मस

खसमै कै दरबार टाडी वसिया, सच्चा खसम कलाण कमल विगसिया। खसम पूरा पाए मनो रहस्या, दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या। सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या, सच्चा शब्द विचार काल बदौसिया। ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया, नानक गुण गहरास।

रहे, जे सो तो वन पाए, नानक बख्शे बख्शी है, नाही ता पाही पाए। महला पहला। नानक बोलन चखना, दुख छड मंगी है सुख, सुख दुख दुए दर कपड़े, पहर है जाए मनुख, जिथे बोलन हारी है, तिथे चंगी चुप पौड़ी। चारे कुंडा देख अंदर पालिया, सच्चे पुरख अलख सिरज निहालिया, उजड़ भुले राह गुर वेखा लिया, सतगुर सच्चे वाह सच संभालिया, पाया रतन कराह दीवा बालिया, सच्चा शब्द सलाहे सुखिए सच वालिया, ने डरिया डर लग गर्भ से गालिया, नाम भुला जग फिरे बेतालिया। श्लोक महला तीजा, पै विच जम्मै पै मरै,

नित सुरही सा तन दही बनोवै इत के होम जग सद पूजा पय कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वड्याई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछ होए नान

ढूपै तरै जिन किश किया सो किश करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगे पाछे हुक्म समाए हंस हेत आसा समान तिस विच भूख बहुत नैसान पाओ खाना पीना आधार बिन खादे मर होए गवार जिसका कोए कोई कोए कोए सबको तेरा तू सबना का सोए जाके जी जंत धन माल नानक आखन बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर इहो वसेख कहना है किस कहन ना जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भए करनी कामन कर मन लए साहा संजोग व्याह वियोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी।

तत तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाण, पीतर होंदी वस्त ना जाने। हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया। गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाऊ, ताँ कै सद बलिहारे जाऊं।

गुरमुख मुख तो बंद ना पाए, शब्द विचार छुट्टे हर नाई, तरवर पंखी बहो निसबास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, सांझ बिहाग तकह आगास, दह दिस तावह कर्म लिखियास, नाम संजोगी गोइन थाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन बखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरब संजोग, सच रहस्ये पूरे हर लोग, मन तन देले सहज सुभाए, नानक तिनके लागो पाए, गौड़ी महला पहला, काम क्रोध मा

बोले पढ़वाऊ जेवा इंद्री एक सुवाऊ दिष्ट वकारी नाही पहु पाओ आप मारे ता पाए नाओ शब्द मरे फिर मरन ना होए बिन मुए क्यों पूरा होए परपंच व्याप रहया मन दोए फिर नारायण करे सो होए बोहित चढ़ो जा आवे वार थाके बोहित दरगाह मार सच सलाही तन गुरुद्वार नानक दर घर एकंकार गौड़ी महला पहला उल्टे ओ

मन मानै अमृत रस पीजै रहाउ। जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया। नजर पई घर घर ते जानिया, जत सत तीरथ मज्जन नाम।

गुर बचनी सच शब्द पछाता तेरा तान नाम की वडियाई नानक रहना भगत सरनाई गौड़ी महला पहला जिन अकथ कहाया अपयो पी आया अन पै बिसरे नाम समाया क्या डरिए डर डर है समाना पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास सहज सुपाए मिले साबास जाहे सवारे सांझ बयाल इत उत मन मुख बांदे काल अहनस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले ब्रह्म दूरे गौड़ी महला पहला जन्म मरे त्रै गुण हितकार चारे वेद कथ है आकार तीन अवस्था कह बखियान तुरियावस्था सतगुर ते हर जान राम भगत गुर सेवा तरना बहुड़ जन्म ना हुए है मरना रहाउ चार पदार्थ कह सब कोई सिमरत सासत पंडित मुख सोई बिन गुर अर्थ विचार ना पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया जां कै हृदय बसिया हर सोई गुरमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरमत पाए परमानंद जिन पाया गुर देख दिखाया आसा माहि निरास बुझाया दीना नाथ सर्व सुख दाता नानक हर चरणी मन राता गौड़ी चेती महला पहला अमृत काया रह सुखाली बाजी एहु संसारु लब लोभ मुच कूड़ कमावे बहुत उठावे पारू तू काया मैं रुलदी देखी ज्यों धारू पर शारू सुन सुन सिख हमारी सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े बहुड़ न आवे वारी रहाऊ हों तुदे आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी निंदा चिंदा करह पराई झूठी लाए तिबारी वेल पराई जो है जियड़े करह चोरी बुरियारी हंस चलिया तू पिछे रही छुट्टड़।

भोग तिसै का पाना रहाउ। साहू हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके बनजारी। जियो पिंड सब रास तिसै की, मारे आपे जीवाले। गौड़ी चेती महला पहला, अवर पंच हम एक जना। क्यों राखो कर बार मना, मार है लूट है नीत नीत।

तना अमृत केल करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना ताही मड़ोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना।

लभ लोभ की ताविसता, जपस निरंजन रचस मना, काहे बोलह जोगी कपट कना रहाउ, काया कमली हंस एयाणा, मेरी मेरी करत बिहानीता, प्रणवत नानक नांगी दाजै, फिर पाछै पछतानीता, गौड़ी चेती महला पहला, औखद मंत्र मूल मन एकै, जे कर दृढ़ चित की जैरी, जन्म जन्म के पाप कर्म के, काटन हारा ली जैरी, मन एको साहिब पाई रे, तेरे तीन गुणा संसार समाव है, अलख न लखना जाई रे रहाउ, सक्कर खंड माया तन मीठी, हम तो पांड उचाई रे, रात अनेरी सूजस नाही, लाज टूकस मूसा पाई रे, मन मुख करह तेता दुख लागै।

गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थाम हो हम आई अगन बिंब जल पीतर निप

का मूड़े फिर पाछे पछताहे रे रहाओ अनता तन तरनी तरे अनत ना चाहे आ जाए अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ होए कर्मा।

गौरी बैरागण महला पहला हरनी हुआं बन वसा कंद मूल चुन खाऊं गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो मैं बनजार नराम की तेरा नाम बकर वापार जी रहाऊ कोकिल हुआ अम बसा सहज शब्द विचार सहज सुपाए मेरा सहु मिले दर्शन।

आए नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखी है करते का हुए बिचारु तित कर गाव हो सोहिला शिवर हो सिरजनहारु तुम गाव हो मेरे नरपहो का सोहिला हौ वारी जाऊं जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े संभालियन देखे गा देवनहार तेरे दान कीमत ना पवे इस दाते कवन समार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यो होवे साहिब स्यो मेल कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरी है नानक से दे आवन।

शब्द पछाण सतगुर कह पहे ब्रह्म पहु जाई पहरा कह सच रंग समाई रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

आवै जो पांडा होए ऊंदे पांडे टिके ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास गौड़ी ग्वारी महला तीजा।

साची वाणी शब्द विचार गावत रह जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाव। एक गाव है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप है बहुत दुख पाव है नचे टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत बिचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाण गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे धात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मिकदारा गुर अंकस मार जी वालनहारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाण गौड़ी गुआरी महला तीजा हम मैं विच सब जग बहुराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवे आप ना पछाना धंधा करतिया आन दिन विहाना हिरदय राम रमहु मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ। गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए

पोतै पुन तिन हऊ मैं मारी। नानक जो नाम रते तिन कौ बलिहारी। गौड़ी ग्वारी महला तीजा, तू अकथ क्यों कथिया जाई। गुर शब्द मारन

साई, गुरमुख भगत हर नाम समाई, आपे दात करे दातार, पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार, नानक नाम रते तिन को जयकार, गौड़ी ग्वारी महला तीजा।

रहाउ। असंत अनारी कदे ना बूजै, कथनी करे तै माया नाल लूजै, अंध अज्ञानी कदे ना सीजै। इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उदारा। इस

बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बांधेव माया पास जन नानक छूटे गुर प्रगास महला तीजा गौड़ी बैरागण जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है क्या धरती मध्य पानी नाही जैसे धरती मध्य पानी परगासिया बिन पगा बरसत फराही बाबा तू ऐसे परम चुकाही जो किस करत है सोई कोई है रे तैसे जाए समाही रहाओ स्त्री पुरख होए कह क्या हुए कर्म कमाही नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माही समाही इतने जन्म भूल परे से जा पाया ता भूले नाही जाका कार्ज सोई पर जाने जे गुर कै शब्द समाही।

महला तीजा सब जग काल बस है बांदा दूजे पाई हमे कर्म कमावंदी मन मुख मिले सुजाई मेरे मन गुरचरणी चित लाए गुरमुख नाम निदान लै दरगाह लै छाए रहाओ लख चौरासी भरम दे मन हठिया वै जाए गुर का शब्द ना चीन्यो फिर जोनी पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसया मन आए अन दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए हम मैं तजे विकार जन नानक करमी पाईन हर नामा भगत भंडार गौड़ी बैरागण महला तीजा पेयड़ै दिन चार है हर हर लिख पाया शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया देव कड़ै गुण संभलै सोहरे वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससुरह पेयै पिर वसै कहो कित बिद पाईऐ आप निरंजन अलख है आपे मेलाइए रहाओ आपे ही प्रभ देह मत हर नाम ते आईऐ वडभागी सतगुर मिले मुख अमृत पाईऐ हमे दुबदा बिर सजाए सहजे सुख समाईऐ सब आपे आप वरतदा आपे नाए लाईऐ मन मुख गर्भ ना पायो अज्ञान ज्ञानी सतगुर सेवा ना करै फिर पछताणी गर्भ जूनी वास पाए दे गर्भे गल जानी मेरे करते एवं पावदा मन मुख परमाणी मेरा हर प्रभ लेख लखाया तुर मस्तक पूरा हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंदप बीरा हर हर बख्श मलाए प्रभु जन नानक कीरा गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बीचारा मत मलीन प्रगट पई जप नाम मरारा शिव सकत मटाईया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाईऐ संत जन हो जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मेले हो हर रस पीवा रहाओ हौ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सत पुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुण दाता हर राय है हम अवगण यारे पापी पाथर डूब दे गुरमत हर तारी तू गुण दाता निर्मला हम अवगण यारी हर शरणागत राख लेओ मूड मुग्ध निस्तारी सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन त्याया सज्जन हर प्रभ पाया कर सोहिला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगै धूड़ तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी गुआरी महला चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भज मन मेरे कर भौजल तू तारी रहाओ सन्यासी बेपूत लाए दे सवारी पर त्रै त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी।

जा हर जस गावे सारिंग प्रीत बसह जल तारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाते गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाते जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी गुआरी।

गुर मिल आघाए, हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी, कर कृपा लोचपुर हमारी। रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारी सब दुख त्यागे, गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे, बछरे प्रीत खीर मुख खाए, हृदय बिगसै देखै माए, गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए, होर सब प्रीत माया मोह काचा, बिन सजाए कूड़ा कच पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वार री महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम त्याया हर तनी, जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कणी, गुरसिख हर बोलो हो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप लह जाई। रहाओ जब गुर मिलया तब मन वास आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अन दिन नगरी हर गुण गाया, सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई, तिन कूड़ ते आगे हर लिब लाई, ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर पावे, कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावे, नानक गुरमुख हर आप तरावे, गौड़ी ग्वार री महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रव रहया बनवारी, हर आपे तप तापै लाए तारी, ऐसा मेरा राम रहया भरपूर, निकट वसै नाही हर दूर। रहाओ हर आपे शब्द सुरत धुन आपे, हर आपे वेखै विगसै आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे, हर आपे सारिंग अमृत धारा, हर अमृत आप पिया मनहारा।

बणंजह रंग स्यों जे आप दयाल हुए देह हम बणजारे राम के हर वणज करावे दे रासरे रहाओ लाहा हर भगत तन खटिया हर सच्चे साहा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया होर वणज करह वापारिये अनंत तरंगी दुख माया वे जे है बणज हर लाया फल तेहा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे

गर्भ पालती सुत की कर आसा वड्डा हुए तन खाट दे कर भोग बलासा क्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गुसैया जन की उपमा।

मंदर कर आनंद हर हर जस मन पावे सब रस मीठे मुख लगे है जा हर गुण गावे हर जन परवार सुधार है इक्की ही कुली सब जगत छडावे जो किश किया सो हर किया हर की वड्याई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत भंडार लहाईंदा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या तिस चतुराई जे राज बहाले ता हर गुलाम कासी को हर नाम कढाई जन नानक हर का दास है हर की वड्याई गौड़ी गवार भी महला चौथा किरसानी किरसान करे लोचै जियो लाए हल जोतै उदम करे मेरा पुत धी खाए त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए।

त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे बिक संचय हटवानिया बह हाथ कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए एह माया मोह कटंब है।

गौड़ी बैरागण महला चौथा नित दिन सरात लालच करी पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर पार उठाया जो गुर की जन सेवा करी सो कर कै काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै कम लाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाउ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजी अर्थ सब माया कै बंद कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद की चै बहु भांत कर माया कहताई जान लाहा दे ता सुख मने तू टै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे।

हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हौं कुर्बानी गुरे अपनी जिन

हर बार हर गणत ना आवे, तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे, हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे, तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म होए जाए, हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए, तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए, जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जान हो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, गौड़ी बैरागन महला चौथा, कंचन नारी मह जियो लुभत है, मोह मीठा माया, कर मंदर घोड़े खुशी, मन अन रस लाया।

हर हर दयाल कर कृपा बख्शे अवगण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नाही किस ढंग ना मेरा क्या मुंह लै बोल है गुण विहून नाम।

कपड़ पहनन दिया रासे अन्न को गाणी जिन दिए सो चेतना आवई पशु हों कर जानी सब कीता तेरा वरतदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करहे सब खेल तुम स्वामी जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन फरंती उड़ती कपरे बागे वाली ओहरा कह चीत पीछे बिच बचरे नित हृदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखे जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखे रसना मास रात केरी कोई जानो मास काती कह किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखे पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कह किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग न सके बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावहु जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लही है।

हम सतगुर पार ब्रह्म कर मानी, हम मूढ़ मुगद अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर कै बचन हर हम जानी रहाउ, जितने रस अनरस हम देखे सब कितने फीक फीकाने, हर का नाम अमृत रस चाखिया मिल सतगुर मीठ रस गानी, जिनको गुर सतगुर नहीं भेटिया ते साकत मूढ़ देवानी, तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने, जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगानी, जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी, कहो कित्ते हर पहु नसीऐ, हर आपे बख्श लए प्रभ साचा, हर आप छुड़ाए छुटिऐ, मेरे मन जप हर हर हर मन जपिऐ, सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना, गुर सतगुर पीछे छुटिऐ रहाव, मेरे मन सेवहु सो प्रभ सर्ब सुख दाता, जित सेवै निज कर वसीऐ, गुरमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसीऐ, मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम, लैला हर मन हसीऐ, हर हर आप दया कर देवै, ताय अमृत हर रस चखीऐ, मेरे मन नाम बिना जो दूजै लागे, ते साकत नर जम कुटिऐ,

नरहर जित सेवै लेखा छुटिया जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल ना कटिया गौड़ी पूर्वे महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करहो हर दर्श दिखावहो मेरे मन तन लोच कनेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिल आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी अन दिन नाम

अन दिन अनद पया बड़ पागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वड़ पागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाउ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े

जो मन मुख गर्भ गलाडी हम जानिया कछु ना जान है आगे जो हर राख है त्यों ठाडी हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरी कांडी गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाई पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजली पुन वड्डाई कर डंडोत पुन वड्डाई रहाओ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभे दुख पावे है जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम सुमानी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाई गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है किस साधना पावे तीठा हर दीन दयाल अनुग्रह किया।

हर अग में अगोचर पार ब्रह्म है, मिल सतगुर लाग बसीठा, जिन गुर बचन सुखा नेहियर है, तिन आग है आन परीठा, मन मुख हियरा अत कठोर है, तिन अंतर कार करीठा, बिसियर कौ बहु दूध पी आई है, बिक निक सह फोल फलीठा, हर प्रभ आन मलाव गुर साधु, कस गरड़ो शब्द मुख लीठा, जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया, पूरे गुर कह आगे, सतगुर दाते नाम दड़ाया, मुख मस्तक भाग सुभागी, राम गुरमत हर लिव लागे रहाओ, कट कट रमैया रमत राम राय, गुर शब्द गुरु लिव लागे, हो मन तन देव काट गुरु कहो, मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागी, अंधियार है दीप ज्ञान जलाए, गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ, कर वस्त लही मन जागे, साकत बदक माया तारी, तिन जम जो हन लागे, हुन सतगुर आगे सीस ना बेचिया, हुए आवह जाहे अभागे, हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर, हम शरण प्रभु हर मांगे, जन नानक की लाज पात गुरु है, सिर बेचे हो सतगुर आगे, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हम अहंकारी अहंकार अज्ञान।

गुर कै बचन हर पाया रहाउ, मेरा ही अरे प्रीत राम राय की, गुर मार्ग पंथ बताया, मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगे, जिन विछड़िया हर गल लाया, मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को, गुर हृदय नाल दिखाया, सहज आनंद भया मन मोरे, गुर आगे आप बिचाया, हम अपराध पाप बहु कीने, कर दुष्टि चोर चुराया, अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजे शब्द अनाहद, गुरमत मनुआ गावे, वड पागी गुर दर्शन पाया, तन तन गुरु लिव लावे, गुरमुख हर लिव लावे रहाउ, हमरा ठाकुर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावे, हम मल मल धोवे पाव गुरु के, जो हर हर कथा सुनावे, हृदय गुरमत राम रसायन, जिहवा हर गुण गावे, मन रसक रसक हर रस आगामी, फिर बहोर न भूख लगावे, कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी, बिन कृपा नाम ना पावे, जन नानक को हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे, राह गौड़ी माज महला चौथा, गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा, संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा, वडभागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो, वडभागी मिल सुगड़ सुजाणी जियो, मेरा मन तन हर रंग पिन्ना, आवह संत हो मिल नाम जपाहा, विच संगत नाम सदा ले लाहा जियो, कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो, मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा, सामन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया, हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो, जन नानक प्रेम रतन्ना, गौड़ी माज महला चौथा, आओ सखी गुण कामन करी हा जियो, मिल संत जना रंग मान रलिया जियो, गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो, हर तुठे टुल टुल मिलिया जी।

प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जीव मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपुरा वेख विगस जीव हर नाम मिलिया सोहागणी मेरे गोविंदा मन अन दिन अन दरहस जीव हर पायड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लैलाहा मन हस जीव हर

एक राजे तख्त बह नित सुखिए एक ना भिख मगाया जियो सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही।

हर कथा मंगह हर चंगी जीओ, हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा। हर भगता लोच मन पूरी जीओ, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा। रब रहया नहीं दूरी जीओ, हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा। हर आप रहया भरपूरी जीओ, हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा। हर वेखै आप हदूरी जीओ, हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा। हर आप बजाए त्यों वाजै जीओ, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा। गुर शब्दी हर प्रभ गाजै जीओ, आपे सरन पुआएंदा मेरे गोविंदा। हर भगत जना राख लाजै जीओ, वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा। जन नानक नाम सिद्ध का जय जीओ, गौड़ी माज महला चौथा। मैं हर नामै हर बिरहो लगाई जीओ, मेरा हर प्रभ मित मिलै सुख पाई जीओ। हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जीओ, मेरा नाम सखा हर पाई जीओ। गुण गावो संत जीओ, मेरे हर प्रभ केरे जीओ। जप गुरमुख नाम जीओ, भाग वडेरे जीओ। हर हर नाम जीओ, प्राण हर मेरे जीओ। फिर बहुड़ ना पवजल फेरे जीओ, क्यों हर प्रभ वेखा मेरा मन तन चाओ जीओ। हर मेलो संत जीओ, मन लगा पाओ जीओ। गुर शब्दी पाई हर प्रीतम राव जीओ, वड भागी जप नाओ जीओ। मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जीओ, हर मेलो संत जीओ, गोविंद प्रभ पासा जीओ। सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जीओ, जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जीओ। गौड़ी माज महला चौथा, मेरा बिरही नाम मिलै ता जीवा जीओ। मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जीओ, मन हर रंग रतड़ा हर रस।

पंजवां राग गौड़ी गुआर री चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद इन बेद कुशल होत मेरे भाई क्यों।

सुपने पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगतां पाया जन नानक हूं मैं मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई इउं पाईए हर राम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी गुआररी महला पंजवा क्यों भ्रमिए भ्रम किसका होई जा जल थन महियल रविया सोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जाने जो वरतंता मनमुख मोए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्श मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी गुआर री महला पंजवा कई जन्म पय कीत पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म परापत कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभमान जीवत मरह दरगाह परवान जो किश होआ सो तुझ ते होग अवर ना दूजा करने जोग ता मिलिए जानह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाई गौड़ी गुआर री महला पंजवा कर्म भूम मह बोह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पावह मिटै जम त्रास नित गावह हर हर गुण जास।

पावहमान उगत सियान पसगली त्याग संत जना की चरणी लाग सर्ब जी है जा के हाथ कदे ना विछड़े सब के साथ अपाव छोड़ गहो तिसकी ओट निमुख माही होवे तेरी छोट सदा निकट कर तिसनो जान प्रभ की आज्ञा सत करमान गुर कै बचन मटाव हो आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी गुआरवी महला पंजवां गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कट्टी जम फासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत करमान रहाउ गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कटे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु ना जाय गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रकट संसार गुर कै बचन नया व्यहार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी गुआरवी महला पंजवां जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वडियाई तिस प्रभ को आठ पहर त्याई रमैया रेन साध जन पाव गुर मिले अपना खसम त्याव रहाओ जिन कीता मूड़ ते बक्ता जिन कीता बेसुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निद पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसते किश नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी ग्वारी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पहु सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखनहार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

तन मनसी तल पहे जन्म जन्म के किल विख गए सर्व निदान पेखे मन माए अब ढूंढन काहे को जाए प्रभ अपने जब पहे दयाल पूर्ण होए सेवक काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहे हो सब जाए गुरपूर सब परम चकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बांध लाख खरे।

रहाऊ। हस पवन हस्त असवारी, जोआ चंदन सेज सुंदर नारी। नट नाटक आखारे गाया, तामह मन संतोख न पाया। तखत सभा मंडन दोलीचे, सगल मेवे सुंदर बागीचे। अखेर बिरत राजन की लीला, मन ना सुहिला पर पंच हीला। कर कृपा संतन सच कहया, सर्व सुख इहो आनंद लहया। साध संग हर कीर्तन गाईए, कहो नानक वड भागी पाईए। जां कै हर तन सोई सुहेला, प्रभ कृपा ते साध संग मेला। रहाउ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवां।

संसार जो हलाहल सो पीवै बवरा अमृत नाम जानै कर कौरा साध संग कै नाही नेर लख चौरासी ब्रह्मता फेर एकै जाल फहाए पंखी रस रस भोग करहै बहुरंगी कहो नानक जिस पये कृपाल गुरपूरै ताके काटे जाल। गौड़ी गुआररी महला पंजवां तौ किरपा ते मार्ग पाईऐ प्रभ किरपा ते नाम ते आईऐ प्रभ किरपा ते बंधन छुटै तौ किरपा ते हमै टुटै तुम लावहो तौ लागहै सेव हम ते कछु ना होवै देव रहाउ तुद पावै ता गावां बाणी तुद पावै ता सच बखाणी तुद भावै ता सतगुर मया सर्ब सुखा प्रभ तेरी दया जो तुद भावै सो निर्मल करमा जो तुद भावै सो सच धर्मा सर्ब निदान गुण तुम ही पास तू साहिब सेवक अरदास मन तन निर्मल होए हर रंग सर्ब सुखा पावो सतसंग नाम तेरा रह मन राता एहु कल्याण नानक कर जाता। गौड़ी गुआरी महला पंजवा आन रसा जेते तै चाखे निमखना तृष्णा तेरी लाते हर रस का तू चाख है साधु चाख तो हुए रह।

राम गुण गाऊ, निमक निमक हर हर हर त्याव, आन ना सुनिए कतहु जाइए, साध संगत बड पागी पाइए, आठ पहर जिहवे आराध, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसने अमोली, बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े, आन ना रस कस लवे ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई, गौड़ी गुआरी महला पंजवा, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मधे बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह, कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी, रहाव मन तन अर्पी सेव करीजै, कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै, कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावै, कमन सो बिद जित पीतर बुलावै, तू वड साह जाके कोट बन जारे, कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह, कहो नानक गुर कै विसार, गौड़ी महला पंजवां गुवारी, रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा, ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन, हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे, रहाव चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आग

ते मुक्ते सदा अलिपत जोग अरजुगते दिस है सब मह सब ते रहते पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते संतन की महिमा कमन बखानो अगाध बोध किस मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय तूर संतन की नानक दी जय गौड़ी गुआरी महला पंजवा तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत तू मेरी पत तू है मेरा गहना तुझ बिन निमख ना जाई रह।

बसना। निरपो नाम जपू तेरा रसना। तू मेरी नावनिद तू पंडार, रंग रसा तू मन है आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तने अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया। सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, व्यापत हरक सोग विस्थार। व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निरधन पेख सोभा। मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु प्रकारी। संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी रहाउ। व्यापत हम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता। व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता। व्यापत भूम रंक अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा। व्यापत सेज महल शिंगार, पंच दूत व्यापत अंधियार। व्यापत कर्म करे हौ फासा, व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा। चार व्यवहार व्यापत ए जात, सब किश व्यापत बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापै माई। कहो नानक जिन तूर संत पाई, ताकै निकट न आवै माई। गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओ अपनी लह रहाओ, सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी, उन तेरा कह बाप ना माई, उन तेरा कह मीत ना पाई, दर्ब सियाणप ना हुए रहती, साध संग ओए दुष्ट वस होती।

नाम पार ब्रह्म स्यो लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरै मेटिया अंधियारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ न व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर त्याई है।

कृपाल अगमय गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्व निदान प्रभु।

सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जा कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रब चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पव काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्शना में तय कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन इशना।

पुरख जपै भगवान आठ पहर हर हर गुण गाऊं कहो नानक कहो तिस बल जाऊं राग गौड़ी ग्वारनी महला पंजवा चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस सियो मन रचना कहो गसाई मिली ऐ के जो बिबरजत तिस सियो ने रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ अपूठा बुनना दोहां सनिया का कसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई गौड़ी ग्वार री महला पंजवा कल युग मह मिल आए संयोग जिचर आ गया तिचर भोग है भोग जलै न पाइय राम स्नेही किरत संयोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हठ जल जाइए प्रिय संग न पावे बहु जोन पवाइए सील संयम प्रिय आग्या मान तिस नारी को दुख ना जमान कहो नानक जिन प्रियो परमेश्वर कर जानिया धन सती दरगाह परवानिया गौड़ी ग्वार री महला पंजवा हम तनवंत भागठ सच ना।

अमोल। परे पंडार अखूट अतोल, खाव है खर्च है रल मिल पाई, टूट न आवे वध दो जाई।

देखाया गौड़ी महला पंजवा दलाब दे पाई वडपागी नाम ना जप है ते आत्म काती मरना जाही जिन्ना बिसरत राम नाम बिहून जीवन कौन काम रहाव खात पीत खेलत हस्त बिसथार कवन अर्थ मृतक शिंगार जो ना सुने जस परमानंदा पास पंखी त्रिगद जोन ते मंदा कहो नानक गुरमंत्र दिरड़ाया केवल नाम रिद माहि सुमाया गौड़ी महला पंजवा काकी माई काको बाप नाम तरीक झूठे सब साक काहे को मूर्ख पखलाया

मार्ग पतत पनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक कर्णहार सद वसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवां संत की तूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण ते चोट संत का दर्श पूर्ण इशनान संत कृपा ते जपिए नाम रहाव संत कै संग मिटिया अहंकार दृष्ट आवे सबे कंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय लै संचा कहो नानक जा का पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवां हर गुण जपत कमल परगासै हर सिमरत त्रास सब नासै सामत पूरी जित हर गुण गावे वड्डे भाग साधु संग पावे रहाव साध संग पाईए निदनामा साध संग पूर्ण सब कामा

मुख हर हर बोले सो जन इत उत कतह ना डोले जां कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसाह जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवां नाम भगत कै प्राण आधार नाम

याद भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरने आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया गौड़ी महला पंजवां कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग धामो भलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन महलेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दलाब देह नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवां जाको अपनी कृपा धारे सो जन रसना नाम उचारे हर बिसरत सह

करत जन सू है ता कौ माया अग्न ना पू है। मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजी अले।

साध संग मिल भजह गोपाला गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी तै बिन से निरभउ हर त्याया साध संग हर के गुण।

रात पूरा गुड़ काढ़े जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिस भेटत गत पई हमारी गौड़ी महला पंजवा साध संग ता की सरनी परो मन तन अपना आगै धरो अमृत नाम पीवो मेरे भाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ ताज अवमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मन सुमाले सो तन संचो जो चाल नाले तिसह प्राप्त जिस मस्तक भाग कहो नानक ता की चरणी लाग गौड़ी महला पंजवा सूके हरे किए खिन माए अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाओ मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा कर दया सतगुर गुणतासा दुख नाठे सुख आए समाए ढील ना परी जा गुर फुरमाए इच पुन्नी पूरे गुर मिले नानक ते जन सुफल फले गौड़ी महला पंजवा ताप गए पाई प्रभ शांत शीतल पय कीनी प्रभ दात प्रभ कृपा ते पय सोहेले जन्म जन्म के बिछरे मेले रहाओ सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ सगल रोग का बिनसे आठाओ सहज सुपाए बोले हर वाणी आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे गौड़ी महला पंजवा पले दिनस पले संजोग जित भेटे पार ब्रह्म निर्जोग।

मन ओह करी जित रस ना उचरै हर हरी सफल ओह माथा संत नमस्कारस चरण पनीत चलह हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित पेते साधु के चरण गौड़ी महला पंजवां गुर का शब्द राख मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे।

गुर मूरत स्यो लाए ध्यान, नीहा ऊहा पावे मान। सगल त्याग गुर सरनी आया, मिटे अंदेसे नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए। नाम रतन वसै मन आए, जप मन मेरे गोविंद की बाणी। साधु जन राम रसन बखाणी, रहाओ

कर हर हर अखर मन मह लेख रव रहे आ सरबत स्वामी गुण गावे नानके अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा तै मह रचियो सब संसारा तिस भउ नाही जिस नाम आधारा।

पंजवा तुमरी कृपा ते जपी है नाव तुमरी कृपा ते दरगाह थाव तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ तुम मन वसे तो दुख न लागे तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी सगल कथा के अंतर जामी करो अरदास अपने सतगुर पास नानक नाम मिले सच रास गौड़ी महला पंजवा कण बिना जैसे थोथर तुखा नाम विहून सुने से मुखा हर हर नाम जपो नित प्राणी नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग परत बिहून।

तू है मेरा स्वामी, सब किस सुमते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाणा, हुक्म बूझै सो सच समाणा, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्स पाईऐ वड भागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वस्या मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजै, दास की तूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवां, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाव, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, विक्रम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे, गौड़ी महला पंजवा, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सतगुर मिल निस्तारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाओ, दलभ देहे होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवां, गुरजी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवै परवान, गुरपार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाईऐ वड भागी, नानक गुर भेटत हर स्यों लिव लागी, गौड़ी महला पंजवां, करै दुह कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाणा रहाउ, अंतर बेख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बाता चोटा खावे, अनक पढ़दे मह कमावे विकार, खिन मह प्रगट होए संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस किरपाल बिदाता, गौड़ी महला पंजवां, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाओ, संतह संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरे जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पहे निहाल, कहो नानक गुर पहे हैं दयाल, गौड़ी महला पंजवां, सिमरत स्वामी किल विख नासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाव, साध संग कस पौ ना परांति, गुण गोपाल गाय है दिन राती, कर कृपा प्रभ बंधन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस पीवह जन नीत, गौड़ी महला पंजवां, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द भ्रमता का भागा, हर धन को वापारी पूरा, जिसह

जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीव हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यो आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्यागह रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जाने स्वान कहो नानक हम लूण हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मन लह जाई रहाओ हर की कथा रिदमाहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जा कैर दसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना प्राप्त साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यो बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परमह बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरै हर नाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरथा कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवां कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी।

असरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा बिकै राज ते अंधला पारी दुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तुही वडियाई माया मगन नरक ले।

हर को नाम बिचर संसार पूर्ण सब काम वड भागी हर कीर्तन गाइए पार ब्रह्म तू देहे ता पाइए रहाउ हर के चरण हृदय उरतार भव सागर चल उतरह पार साधु संग करहो सब कोय सदा कल्याण फिर दुख ना होए प्रेम भगत भज गुणी निदान नानक दरगाह पाई है मान गौड़ी महला पंजवा जल थल महियल पूर्ण हर मीत प्रम बिन से गाए गुण नीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ चरण कमल प्रभ हृदय निवास

उपकार प्रेम भगत राते गोपाल नानक जाचे साधरवाल गौड़ी महला पंजवा ऐसी प्रीत गोविंद सिंह लागी मेल लए पूर्ण वड भागी रहाउ परता पेख बिकसै ज्यो नारी त्यों हर जन जीवै नाम चतारी पूत पेख ज्यो जीवत माता ओत पोत जन हर स्यो राता लोभी आनंद करै पेख तना जन चरण कमल स्यो लागू मना।

कोट जन्म के किल विख खोए, सिमरह साध करह आनंद, मन तन रबिया परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान। गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, ता की पूर्ण होई काल, जां की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवाने।

रहाउ। बिखैठ गौरी जिन जिन खाई, ताकी तृष्णा कबहू न जाई। दारण दुख दुत्तर संसार, राम नाम बिन कैसे उतर सपार। साध संग मिल दुए कुल साध, राम नाम नानक आराध। गौड़ी महला पंजवा, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी। पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी, पूरा न्याय करे करतार। अपने दास को राखन हार रहाउ। आद जगाद प्रगट प्रताप, निंदक मुआ उपज वध ताप। तिन मारिया जे रखे न कोय, आगे पाचे मंदी सोए। अपने दास राखे कंठ लाए, शरण नानक हर नाम त्याए। गौड़ी महला पंजवा, महजर झूठा की तुने आप। पापी को लागा संताप, जिसह सहाई गोविंद मेरा। तिसको जम नहीं आवे नेरा रहाउ। साची दरगाह बोले कूड़, सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़। रोग व्यापे कर दे पाप, अदली होए बैठा प्रभ आप। अपन कमाए आपे बांधे, दर्ब गया सब जी कै साथे। नानक शरण परे दरबार, राखी पैज मेरे करतार। गौड़ी महला पंजवा, जन की धूर मन मीठ खटानी। पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाउ। अहम बुद्ध मन पूर थिधाई, साध तूर कर सुद मन जाई। अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुद न तेही। सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया भउ काल। मुकत भुगत जुगत हर नाउ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा।

पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार, निर्मल गुण गावहु नित नीत, गई ब्याद उबरे जनमीत। मन बच क्रम प्रब अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई, गौड़ी महला पंजवा, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण पई सेव, रहाऊ सीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै, गौड़ी महला पंजवा, तन ओह मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लही है, रसना राम नाम जस कही है, रहाओ तिन ऊपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया निर्वाण, गौड़ी महला पंजवा, तू है मसलत तू है नाल, तू है राख है सार संभाल, ऐसा राम दीन दुनी सहाय, दास की पैज रखे मेरे भाई, रहाओ आगे आप इहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर को जापे।

बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपव होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब पै मिटह तुम्हारे नाई, पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटै सब चिंता, हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अन दिन जागे, हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिन कहो बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी महला पंजवा, उदम करत सीतल मन पहे, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पहे आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कारे आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ, नेतर पनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोबंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की कीने आप सहाय, सुख पाया लग दासह पाए, आप गया ताया पह पहे, कृपा निदान की सरनी पए, जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहां को जाया, अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इशनान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिट है साधु सरन दयाल रहाओ, बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन अरादे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सिंह मन माने, अगाध बोध हर अग्नि अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे, नानक कहो प्रभ कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुर गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पए सगल काम, दर्शन देख सीतल मन पहे, जन्म जन्म के किल बिख गए, कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवक की आप पैज रखाई, गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवक को आप सहाई, नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए, कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव, अब मन बसया करने हारा, पै बिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाते, कहन न जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास सदा सरनाई, राग गौड़ी चेती महला पंजवा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम को बल पूरन पाई, ताते बिरता ना व्यापै काई रहाओ, जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रभ पत गुआई, नानक हर गुण निरपो गाई, गौड़ी महला पंजवा, पूज बल बीर ब्रह्म सुख सागर,
गर्त परत गह लेहो अंगोरिया रहाओ। श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगोरिया। दीना नाथ अनाथ करना में, साजन मीत पिता महतरिया। चरण कमल हृदय गह नानक, तय सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागण महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दई गुसाई मीतला तू संग हमारे बास जियो रहाओ। तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुख दातिया निमक निमक बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्तहो उदर गोपाल। मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल। क्या सुख तेरे सम्मला कवन विधि विचार। सरल समाई दास हित ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे। सो प्रसन्न भये केसवा सेजन हर गुण गाहे। मात पिता

ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै, जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिसह परापत सो हर गुण गाहै, ताकि शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

नाम आधारी राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवनो गुण प्राण पत मिलो मेरी माई रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोहे परदेसन दूर ते आई नाहिन दर्ब ना जोबन माती मोहे अनाथ की करो समाई खोजत खोजत पई बैरागन प्रभ दर्शन कहो हौ फिरत तसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नान साध संग मेरी जनन बुझाई गौड़ी महला पंजवा प्रभ मिलबे कौ प्रीत मन लागी पाई लगो मोहे करो बेनती को संत मिले बड़ भागी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी जो प्रभ की हर कथा सुनावे अनदिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट्यो पुरख रसक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा।

तृष्णा रस पंकज अत तीखियन मोह की फास काटन हार जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करहु निवास कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम दीना नाथ सुनहु अरदास कर गै लेहु नानक के स्वामी जियो पिंड सब तुमरी रास गौड़ी महला पंजवा हर पीखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवों दिन रैनी है कोई संत मलावे नेरा रहाओ सेवा करो दास दासन की अनक पांत तिस करो निहुरा तुला तार तुले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बोहोरा आनंद सुख भेटत हर नानक जन्म किरतार्थ सफल सवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मुह मार्ग दे बताई रहाओ अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई एका संगत इकत ग्रह बस्ते मिल बात ना करते पाई एक बस्त बिन पंच दोहेले ओह बस्त अगोचर ठाई जिसका ग्रहो तिन दिया ताला कुंजी गुर संपाई अनक अपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरनाई जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिवलाई पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीतले सतगुर मुझे बतायो रहाओ जत कत देखो तत तत तुम ही मोहे एहो विश्वास हुए आयो कह पह करो अरदास बेनती जो सुन तो है रघुरायो लहयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना।

आ सुई फुनोसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निद नाम निदान एक ठाई तौ बाहर कैठ जायो एक कनक अनक पांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुरु खोई है इव तत्तै तत् मलायो गौड़ी महला पंजवा औद कटै दिन सरै नारी।

बसन सुहेला। एह संसार विकार सहसे मह, तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसह जगाए की आए हर रस। अकथ कथा तिन जानी जा को आए सुई विहाजो, हर गुर ते मन है बसेरा। निज कर महल पावहु सुख सहजे, बहुर ना हुए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बधाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास इही सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। गौड़ी

राखहु राखनहारी, खेद करह और बहुत संताव है, आयु शरण तुहारी, कर कर हारियु अनक बहु भांति, छोड़ है कतहु नाही। एक बात सुन ताकि ओटा, साध संग मिट जाही, कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया, संति मंत दियो मोहे निरपहु, गुर का शब्द कमाया, जीत लय ओए महा बिखादी, सहज सुहिली बाणी, कहो नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा, ओ अबनासी राया, निरपौ संग तुम्हारे बस्ते,

अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दर्स हर राया सोई हुआ जो तिस पाणा अवर ना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारी कृपा निद दयाला राख ले हो पिता प्रभ मेरे अनाथ है कर प्रतपाला जिसनो तुम है दिखायो दर्शन साध संगत कह पाछ कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एह बांछ गौड़ी महला पंजवा हौ ता कह बलिहारी जा कह केवल नाम आधारी रहाओ महिमा ता की कीतक गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन समसारे अवर ना दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परै सो तरिया।

हो प्रभु कृपाला, राज जोबन अवध जो दीसै, सब किस जोग मह घाटिया, नाम निधान सद नव तन निर्मल, एहो नानक हर तन खाटिया। गौड़ी महला पंजवां, जोग जुगत सुन आयो गुरते, मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ, नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रव्या, निमख निमख नमस्कारा, दीखिया गुर की मुंदरा कानी, दृढ़े हो एक निरंकारा, पांच चेले मिल पए इकतरा, एक सकै वस किए, दस बैरागने आज्ञाकारी, तब निर्मल जोगी थिए, परम जराए चराई बेपूता, पंथ एक कर पेखिया, सहज सूख सो कीनी भुगता, जो ठाकुर मस्तक लेखिया, जह पौ नाही तहां आसन बांधे हो, सिंघी अनहत बानी, तत बीचार डंडा कर राखे हो, जुगत नाम मन पानी, ऐसा जोगी वडभागी भेटै।

मन की आसा गुर भेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त अगाए नानक हर जियो तां को देवै जां को हुक्म मनाए। गौड़ी महला पंजवां दया मया कर प्राण पत मोरी मोहे अनाथ सरन प्रभ तोरी अंध कूप मह हाथ दे राखो पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ। कर्म करावन सब किश तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गत मित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभ राती ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी राम संत मह भेद किश नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहिय प्रगट प्रभ होआ आनंदन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अति ऊचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक को प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी। गौड़ी महला पंजवां तुम हर से तीराते संत हो नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते ओड़ पहचाव हुदाते रहाओ तुमरा मर्म तुमा ही जानिया तुम पूर्ण पुरख बधाते राखो सरन अनाथ दीन को करहो हमारी गाते तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी भांति कर कृपा जिस राखो संगे ते पार पुराते ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सब किस तुमरे हाथे ऐसा निदान देहो मोको हर जन चले हमारे साथे निर्गुण यारे को गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे। गौड़ी महला पंजवां सहज समायो देव मोको सतगुर भये दयाल देव रहाओ काट जेवरे कियो दासरो संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको अचरज गुरह दिखायो पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मनह प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तिया अनपै ठहरायो मान आग्या सर्व सुख पाए दुखा ठाउ गवायो जो सो प्रसन्न पये प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किस आवत ना किस जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकुर भगत टेक हर नायो। गौड़ी महला पंजवां पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता कियो टगी जैरे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ता को नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्याग हो हर जन हुक्म बूझ सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई भल मानो सुख दुख ओही त्याई रे कोट पतत उधारी खिन मै करते बार ना लागे रे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी

तिस करते पूर रहे हो रतनागर रे जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे नानक दास तां की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुख दाता सगल कटां प्रित पारी रहाओ महा कष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरनी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राख है पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन में जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म नाहारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद छोड़ गए बहुलोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूढ़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहिया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है गौड़ी महला पंजवां मन तर तरबे हर नाम नु सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नु रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिखिया पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारू माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया कहो नानक एक त्याया कट कट नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारू तुही एक सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवां जी अरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है अहम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाव कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू तली तू निर्गुण तू सरगुणी इहां उहां तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवां हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै परम मोह पहो साधी है रहाओ वेद प्राण सिमरत पने सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन लख चौरासी जोन फिर है गोविंद लोक नहीं जन्म मरह बल बुद्ध स्यान पहो मैं रही हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवां मन राम नाम गुण गाइय नीत नीत हर सेविय
सास सास हर त्या ये रहाओ, संत संग हर मन वसे, दुख दर्द अनेरा भ्रम नसे, संत प्रसाद हर जापी है, सो जन दुख ना व्यापी है, जां को गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया माया अग्न ते, नानक को प्रभ मया कर, मेरा मन तन वासे नाम हर, गौड़ी महला पंजवां, रसना जपिए एक नाम, इहां सुख आनंद घना, आगे जी कै संग काम रहाओ, कटिया तेरा अहं रोग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग, हर रस जिन जन चाखिया, तां की तृष्णा लाथिया, हर विश्राम निध पाया, सो बहुर न कत ही ताया, हर हर नाम जां को गुर दिया, नानक तां का

भव गया गौड़ी महला पंजवा जाको बिसरै राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रवह से गुणी गहीर रहाव जाको गुरमुख हृदय बुद्ध ताकै कर तल नव निद सिद्ध जो जान है हर प्रभ तनी किस नाही ताकै कमी करने हार पछानिया सर्ब सुख रंग माणिया हर धन जाकै ग्रह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै।

हरी खसम हमारा, खिन मह साज सवार नहारा, काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा, सरन परयो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा, एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा, गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हूं मैं तोरे, इस मीठी ते एहो मन हो रह रहा, अज्ञानी मनुख भया, जो नाही सो लोरे, रैन अंधारी कारिया, कमन जुगत जित पूरे, प्रम तो हारिया, अनक विधि कर टोरे, कहो नानक कृपा पही, साध संगत निद मोरे, गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मई रहाओ, दीन दयाला पार ब्रह्म, जांकै सिमरन सुख पई, अकाल पुरख अगाध बोध, सुंत जसो कोट अग खई, कृपा निद प्रभ मया तार, नानक हर हर नाम लई, गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए, जान दिन बिसरे प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाए रहाव, एक रैन के पहुन तुम आए, बहु जुग आस बंधाए, ग्रह मंदर संपै जो दिसे, ज्यों तरवर की छाए, तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए, देवनहारा बिसरियो ठाकुर, खिन मह होत पराए, पहरे बागा कर इशनाना, चोआ चंदन लाए, निरपहो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यों हस्ती नवाए, जो हुए कृपाल, ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए, मुक्त पया बंधन गुरु खोले, जन नानक हर गुण गाए, गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए, रत्न जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बले हरिय रहाव, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइये, जो हुए दयाल सतगुरे अपना, ता एह मत बुद्ध पाइये, मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूटे, सर्व सुखा सुख पाइये, सेव स्वामी सतगुर दाता, मन बंचत फल आइये, नाम इष्ट मीत सुत करता, मन संग तुहारे चाले, कर सेवा सतगुरे अपने की, गुर ते पाइये पाले, गुर कृपाल कृपा प्रभ तारी, बिन से सर्व अंदेसा, नानक सुख पाया हर कीर्तन, मिटियो सगल कलेशा, राग गौड़ी महला पंजवा।

मन ना होरे परे परे ही को लुजीहे सुंदर नारी अनक प्रकारी परग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजीहे अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजीहे जा कोरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजीहे गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

कर कीर्तन हुए उदार। राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख। चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लो हो किस सोचो चितों।

केते बंद परे जो साधु कर मस्तक धरयो तब हम मुक्त भए जो लो मेरो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चल्यो तौ लो दान भरे पोट डार गुरु पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्यागियो री त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आगियो रहाओ मान अभमान दो समानी मस्तक डार गुर पागियो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लागियो बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टागियो निरपौ भये संत भ्रम डारियो पूर्ण सर्वागियो जो किस करतै कारण कीनो मन बुरो न लागियो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जागियो जन नानक ओड़ तुहारी परियो आयो सरनागियो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लागियो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन सीतल मन सीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुर पूजै तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुरे ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकुर जो भेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जानै जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरनी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निसतारा सुख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूजत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावै फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूजत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारै नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावै करता होए जनावै रहाओ अनजानत किस इन्ह कमानो जप तप कशु ना साधा दह दिस लै इह मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इह मेरा परम मोह कस सूजस नाई एह पैखर पय पैरा तब एह कहां कमावन परया जब एह कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपह करता अपने कर्तव्य आपे जानै जिन एह रचन रचाया कहो नानक करनहार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिथे जप तप संयम कर्म कमाणी एह ओरै मूसे रहाओ वर्त नेम संयम मह रहता तिनका आड़ ना पाया आगे चलन और है भाई ऊहा काम ना आया तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता।

वाण तेन त्रे भवन सुख परमानंदा जीओ सेज सुहावी इहो मन बिकसंदा जीओ देख दर्शन इहो सुख लहिया जीओ चरण पखार करी नित सेवा जी।

आज सब फिक्किया तन मन फिक्का होए, बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोए। अंचल गह कह साधका तरना एहो संसार, पार ब्रह्म आरादी है उदरै सब परवार। साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे, औगण सब मटाए कह पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर हर के चरण निदान, नानक जाचक दर तेरे प्रभ तुधनो मंगे दान। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महला नौवां, साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनस भागो रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना। हरख सोग ते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाना। जन नानक एहो खेल कथन है किन्हू गुरमुख जाना। गौड़ी महला नौवां, साधु रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थर माने अचरज लखियो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बनासै ज्यो बादर की शाई, जन नानक जग जानियो मिथ्या रहियो राम सरनाई। गौड़ी महला नौवां, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे एहन समग्न रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यों एह विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग देख तास उठ धावे। भुगत मुक्त का कारण स्वामी मूड ताहे बिसरावे, जन नानक कोटन मैं को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नौवां, साधु एहो मन गहियो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है याते थिर ना रहाई रहाओ। कठन क्रोध घट ही के भीतर जेहे सुध सब बिसराई,

गाई जन नानक हर भये दयाला तौ सब बिद बन आई गौड़ी महला नौवा साधु गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काहे गवावो रहाओ पतत पनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जेह सिमरत तुम काहे बिसरावो ताज अभमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुक्त पंत एहो गुरमुख हुए तुम पावो गौड़ी महला नौवा को माई भूल्यो मन समझावै वेद पुराण साध मग सुन कर निमख न हर गुण गावै रहाओ दुर्लभ देह पाए मानस की बिरथा जन्म सरावै माया मोह महा संकट बन तास्यों रुच उपजावै अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यों नेहो न लावै नानक मुक्त ताहे तुम मानो जेह कट राम सुमावै गौड़ी महला नौवा साधो राम सरन बिसरामा वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा रहाव लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परसै जे नाहिन सो मूरत है देवा सुर्ग नरक अमृत बिख ए सब

प्राणी गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहा जो तन तै अपनो कर मान्यो हर सुंदर ग्रह नारी इनमें कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन स्यों बिरथा औध सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुन गावै और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पार रे रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मोह धर रे पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उत्तर रे राग गौड़ी अष्टपदियां महला पहला गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निध सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख ठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यों लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोए न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी राचो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना।

सर्ब जंजाला मनमुख को चील कुशत बिकराला सतगुर सेवे चूकै जंजाला अमृत नाम सदा सुख नाला गुरमुख बूझै एक लिवलाए निज करवासै साच समाए जम्मण मरना ठाकर हाय पूरे गुरते एहे मत पाए कथनी कथो ना आवै ओर गुर पुछ देखिया नाही दर होर दुख सुख भाणै तिसै रजाए नानक नीच कह लिवलाए गौड़ी महला पहला दूजी माया जगत चित वास काम क्रोध अहंकार बनास।

जाने वेद की विपत पड़ी पछताने जह प्रभ सिमरे तही मन माने ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ निवारे रहाउ। बाल राजा माया अहंकारी जगन करे बहु भार अफारी बिन गुर पूछे जाए प्यारी हरी चंद दान करे जस लेवे बिन गुर अंत ना पाए अपेवे आप पलाए आपे मत देवे दुर्मत हरनाक्ष दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी प्रहलाद पुदारी कृपा धारी भूलो रावण मुग्ध अचेत लूटी लंका शीस समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहु मद कीट मह खासा हर नाक्ष ले नखो बिदासा दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमन संघारी रक्त बीज काल नेम बिदारी दैत संघार संत निस्तारी आपे सतगुर शब्द बीचारी दूजे भाए दैत संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम ना जानिया करता सोई जन को दुख पचे दुख होई जन्मे जय गुर शब्द ना जानिया क्यों सुख पावे परम पलानिया एक तिल भूले बहोर पछतानिया कंस केस चंडूर ना कोई राम ना चीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमत धर्म धीर जहर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चोआ चंदन अंक चढ़ावो पाट पटंबर पैर हंडावो बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो बिन जगदीश कहां सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला।

0: ईस कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी,
1: खोड़ सिंगार करे अत प्यारी,
0: बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर महला सेज सुखाली, अहनस फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर ने बखवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे देवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बलावो, ताज कुलह सिर छत्र बनावो, बिन जगदीश कहां सच पावो, खान मनुक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवरस काजा, हों मैं ममता गुर शब्द वसारी, गुरमत जानिया हृदय मरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक न जान से अवरे, परपंच ब्याद क्या गै कवरे, भाई मिले सच साचे साचरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाए मिले मन धोई, रहाउ ऊंदो कवल सगल संसार, दुर्मत अगन जगत पर जारे, सो उबरै गुर शब्द बीचार।

हितकारी क्रोध बनासै सगल विकारी पत मत खोवै नाम वसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी धंधे लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर को देई काम दाम चित पर वस से बिन पेर त्रिपत ना कबहू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद प्राण पढ़ै सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरै न लेखै पावै वेस करै बहु भस्म लगावै नाम विसार बहुर पछतावै तू मन हर जियो तू मन सुख नाम बसार सह जम दुख रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद दूर नाम बसारे है सब कूड़ो कूर नेजे वाजे तखत सलाम अदकी कृष्णा व्यापै काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अहंकार नाही प्रभ मेला मन दे पावह नाम सुहेला दूजे पाए अज्ञान दुहेला बिन दम के सौदा नहीं हाट बिन बोहित सागर नहीं वाट बिन गुर सेवे घाटे घाट किसको वाह वाह जे वाट दिखावे किसको वाह वाह जे शब्द सुनावे किसको वाह वाह जे मेल मलावे वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो गुर शब्दी मत अमृत पियो नाम वडाई तुद भाणे दियो नाम बिना क्यों जीवा माए अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए नानक नाम रते पत पाए गौड़ी महला पहला हों मैं करत भेखी नहीं जानिया गुरमुख भगत बिरले मन मानिया हों हों करत नहीं सच पाईए हों मैं जाए परम पद पाईए रहाओ हों मैं कर राजे बहुतावह हों मैं खपह जन्म मर आवह हों मैं निवरै गुर शब्द विचारै चंचल मत त्यागै पंच संघारै अंतर साच सहज घर आवह राजन जान परम गत पावह सच करनी गुर परम चकावै निरपो कै घर ताड़ी लावे हों हों कर मरना क्या पावे पूरा गुर भेटे सो झगर चकावे जेती है तेती केहो नाही गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही हों मैं बंधन बंद पवावे नानक राम भगत सुख पावे गौड़ी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले घर आया ब्रह्म कमल पयाल ना पाया आग्या नहीं लीनी परम भलाया जो उपजै सो काल संघारिया।

है निरालम एका सच करनी परम पद पाया सेवा गुर चरणी मन ते मन मानिया चूकी अहं परमणी इन विद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच महल गुर अलख लखाया निश्चल महल नहीं छाया माया साच संतोखे परम चुकाया जिनकै मन वसिया सच सोई तिनकी संगत गुरमुख होई नानक साच नाम मल खोई गौड़ी महला पहला राम नाम चित रापै जाका उपजंप दर्शन की जय ताका राम ना जपो अपाग तुम्हारा जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ गुरमत राम जपै जन पूरा तित घट अनहत बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार से प्रभ राखे कृपा धार जिनकै हिरदय हर हर सोई तिनका दर्श परस सुख होई सर्व जिया मैं एको रवे मनमुख अहंकारी फिर जूनी भवे सो बूझै जो सतगुर पाए हउ मैं मारे गुर शब्द दे पाए अर्ध उर्द की संद क्यों जाने गुरमुख संद मिले मन माने हम पापी निर्गुण कौ गुण करिए प्रभ हुए दयाल नानक जन तरिए सोलह अष्टपदिया ग्वारी गौड़ी किया गौड़ी बैरागण महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यो गाई को गोयली राख है कर सारा एहन सुपाल राख ले आत्म सुख तारा इत उतराखो दीन दयाला तो शरणागत नजर निहाला रहा जह देखो तह राव रहे राख राखन हारा तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सैना अधियारा जग बिनसत हम देखिया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा निज कर महल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द तेर को नहीं बूझै सुख होई क्या ले आया ले जाए क्या फस है जम जाला डोल बद्दा कस जेवरी आकाश पताला गुरमत नाम ना विसर सहजे पत पाई है अंतर शब्द निदान है मिल आप गवाई है नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावे नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावे गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझ ले तो हुए नबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरी क्या तिन स्यो कही है बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद निर्वही है।

अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता। चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दीस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रीस। इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक की नय आपको, सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर किरपा ते बूजी है, सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ। मनमुख सूतक कबह न जाए, जिचर शब्द ना पीजे हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार, मरमर जम्मे वारो वार। सूतक अगन पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए। सास्त सिमरत सोध देखो कोय, विण नावे को मुक्त न होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मह गुरमुख उतरस पार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाय। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा। हर जियो राखो हृदय उरतारा, गुरमुख शोभा साच द्वारा। पंडित हर पढ़ तजो विकारा, गुरमुख भोजन उतरो पारा। रहाओ गुरमुख विचो हमें जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए। गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रत्ते सुख होई। अपना मन प्रबोध हो बूझो हो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई। गुरमुख समझो हो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई। जो किस कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे थौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजियों लाए बह नित ध्याना। जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई।

एहु संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हूं मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरह सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई।

हिरै अहंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई दिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रत्ते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुर सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिसते उपजे देव मोह प्यासा त्रै गुण भरमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन है पांड पराला मनमुख अज्ञान कुमारग पाए हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए पवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे गुरमुख जम काल नेड़ ना आवे हौ मैं दूजा शब्द जलावे ना मेरा ते हर गुण गावे माया दासी भगतां की कार कमावे चरनी लागे ता महल पावे सद ही निर्मल सहज समावे हर कथा सुन है से तनवंत दिस है जुग माही तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही सहजे गुण रवह साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुनाया त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया नानक हों मैं मार ब्रह्म मलाया गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा वेद पढ़े वाद वखाणे अंतर तामस आप ना पछाणे ता प्रभ पाए गुर शब्द वखाणे गुर सेवा करो फिर काल ना खाए मनमुख खादे दूजे पाए रहाओ गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे गुर कै शब्द अंतर सहज रीदे मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे सतगुर मेले प्रभ आप मलाए मेरे प्रभ साचे कै मन पाए हर गुण गावह सहज सुपाए बिन गुर साचे परम पलाए मनमुख अंधे सदा बिख खाए जम डंड सह सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की सरनाई हों मैं मार सच लिवलाई सदा रह हर नाम लिवलाई सतगुर सेव है से जन निर्मल पविता मन स्यो मन मिलाए सब जग जीता इन विद कुशल तेरे मेरे मीता सतगुरु सेवे सो फल पाए हिरदय नाम विच्चों आप गवाए अनहद बाणी शब्द वजाए सतगुर ते कमन कमन ना सीधो मेरे भाई भगती सीधे दर सोभा पाई नानक राम नाम वड्याई गौड़ी महला तीजा त्रै गुण बखाणे भरम ना जाए बंधन ना टूटे है मुक्त ना पाए मुक्त दाता सतगुर जुग माहे गुरमुख प्राणी भरम गवाए सहज तुन उपजे हर

ताय साच ना छपै जे को रखै छुपाए ज्ञानी बूझ सहज सुपाए गुरमुख साच रहिया लिभ लाए हम माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मलाए सतगुर दाता शब्द सुनाए धावत राखै ठाक रहाए पूरे गुर ते सोजी पाए आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सहज समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनु कृपा करे सो हर रस पावे अनगिन हिरदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ हिरदय सूख पया परगास गुरमुख गावे है सच गुण तास दासन दास नित होवे दास ग्रह कटंब मह सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावे सोई त्रै गुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रभ सोई मोह कटंब स्यों प्रीत ना होई जां हिरदय वसिया सच सोई गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होई हुकम पछाणे बूझे सच सोई।

तन सब जग महलोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसै अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया प्रसादी सतगुर पाया पूरे वडभागी हौं मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय रवे।

आए मन करहला अत निर्मला मल लागी हम मैं आए प्रताख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय किते ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुरु

हर हर नाम संभाल, मन करहला मेरे प्यारिया, सत संगत सत गुर भाल, सत संगत लग हर ध्याई है, हर हर चले तेरे नाल, मन करहला वडभागिया, हर एक नदर निहाल, आप छडाए छुट्टी है, सतगुर चरण संभाल, मन करहला मेरे प्यारिया, विच देही जोत संभाल, गुर नौ निद नाम वखालिया, हर दात करी दयाल, मन करहला तू चंचला, चतराई छड विकराल, हर हर नाम संभाल तू, हर मुक्त करे अंतकाल, मन करहला बड़ भागिया, तू ज्ञान रतन संभाल, गुर ज्ञान खड़ग हाथ धारिया, जम मारियड़ा जमकाल, अंतर निदान मन करहले, भ्रम पवे बाहर।

के ता ध्यान। सहजे जागण सहजे सोए, सहजे होता जाए सो होए। सहज बैराग सहजे ही हसना, सहजे चूप सहजे ही जपना। सहजे भोजन सहजे पाओ, सहजे मिट्यो सगल दुराओ। सहजे होआ साधु संग, सहज मिलो पार ब्राह्मण संग। सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे दुबदा तन की नासी। जाके सहज

सहज कथा मह आत्म रसिया तां कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया तां कै कार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयू कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरक अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दीसै पासारा बिनस जाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सद वसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे तां का विचार कहो नानक जिस कृपा करे निचल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावे इसह मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे जो इस मारे सो दरगाह सिजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवे गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वड भागा जो इस मारे सो अन दिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किस मैला इस मारी बिन सब किस जौला जाको पये कृपाल कृपा निद तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यों जुरे ता सबको मीत हर स्यों जुरे ता निश्चल चीत हर स्यों जुरे ना व्यापै काड़ा हर स्यों जुरे ता हुए निस्तारा।

दास नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जाकै सुन नाम, कोट पूजा जाकै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मह फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी

कह पांत, जाकी दृष्ट हुए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतर ना ही को मूड़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस भागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीव है साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मह जिया, कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाओ, बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिस्ता महवास, बिन सिमरन पय कुकर काम, साकत बेसवा पूत नाम, बिन सिमरन जैसे सींग सतारा, बोलह कूर साकत मुख कारा, बिन सिमरन घर दब की न्याई, साकत थान पृष्ट फराही, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद ना पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया, कहो नानक गुर जगत तराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर कै बचन मोहे परम गत पाई, गुर पूरै मेरी पैज रखाई, गुर कै बचन त्यायो मोहे ना।

गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर कै बचन मिटिया मेरा भरम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग। गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निध। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिस की कटिया जम की पासा। गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवां।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन गुर मोह को दीना जियो, अपना दस राय आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार, काल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहु नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी महला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असने।

करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनुकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद जो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहै हर की प्रीत सदा संग चालै दयाल पुरख पूर्ण प्रतपालै रहाव बिनसत नाही छोड़ न जाए जह पेखा तह रह आसमाए सुंदर सुगढ़ चतुर जी दाता भाई पूत पिता प्रभ माता जीवन प्राण आधार मेरी रास प्रीत लाई कर हृदय निवास माया सिलक काटी गोपाल कर अपना लीनो नदर निहाल सिमर सिमर काटे सब रोग चरण ध्यान सर्व सुख भोग पूर्ण पुरख नव तन नित बाला हर अंतर बाहर संग रखवाला कहो नानक हर हर पद चीन सर्बस नाम भगत कौ दीन राग गौड़ी माज महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद खोजत फिरे असं

कापड़ तन ना सुहाई। कापड़ तन सुहावै जां फिर भावै, गुरमती चित लाइयै सदा सुहागण जां सतगुर सेवे, गुर कै अंक समाइयै। गुर शब्दै मेला तां फिर रावी, लाहा नाम संसारी नानक कामण नाह प्यारी, जां हर के गुण सारी। सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारी। गुर शब्द विचारे हों मैं मारे, इन बिद मिलो प्यारे, सा धन सुहागण सदा रंग राती, साचै नाम प्यारे। अपने गुर मिल रही है अमृत गही है, दुबदा मार निवारे, नानक कामण हर वर पाया।

कूड़ मुठी कूड़ आरी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जूए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचो होमे मारी। हर का नाम हृदय बसाई, ऐसा करे सिंगारू, नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी, मैं नैणी नींद ना आवै जियो, भावै अन्न ना पानी। पानी अन्न ना भावै, मरियै हावै, बिन फिर क्यों सुख पाईऐ। गुर आगै करो बिनंती, जे गुर पावै ज्यों मिलै तिवें मिलाईऐ। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए, नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरै ना जाए।

गौड़ी महला तीजा। कामण हर रस दे दीजियो, हर कै सहज सुपाई, मन मोहन मोए लिया जियो, दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए, कामण वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए, गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भगती मैल ना जाए, नानक कामण पिरह प्यारी, विचों आप गवाए, कामण पिर पाया जियो, गुर कै भाई प्यारे, रैण सुख सुती जियो, अंतर उर तारे, अंतर उर तारे मिलिए प्यारे, अन दिन दुख निवारे, अंतर महल पिर रावे कामण, गुरमती विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे, आव हो दया करे जियो, प्रीतम यत प्यारे, कामण बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे, सच शब्द सिंगारे, हम मैं मारे, गुरमुख कार्य सवारे, जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझै गुर बिचारे, मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी, किस आगै जाए पुकारे, नानक मनमुख थाओ ना पाए, बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो, फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शन हारा, अवगण बख्शन हारा, कामण कंत प्यारा, कट कट रहे आसमाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाई, सतगुर बूझ बुझाई, सदा आनंद रह दिन राती, अन दिन रह लिवलाई, नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निद पाई। गौड़ी महला तीजा। माया सार सबल वरतै जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहे था जियो, शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंघाए, इन बिद दुत्तर तरिए, गुरमुख भगत प्राप्त होवै, जीवतियां इयों मरिए, जिन मह राम नाम किलविख काटे, पए पवित शरीरा, नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा, स्त्री पुरख काम व्यापे जियो, राम नाम की बिद नहीं जानी, मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी, गत नहीं जानी, हम मैं तात संसारे, जो आया सो सब को जासी, उबरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम बखाने, आप तरह कुल तारे, नानक नाम वसे घट अंतर, गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची जियो, राम नाम वापारा, राम नाम वापारा, अगम अपारा, गुरमति धन पाइए, सेवा सुत भगत एह साची, विचो आप गवाइए, हम मतहीन मूरख मुगद अंधे, सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सहावे, अन दिन हर गुण गाए, आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे, आपे सतगुर आप शब्द जियो, जुग जुग भगत प्यारे, जुग जुग भगत प्यारे, हर आप सवारे, आपे भगती लाए, आपे दाना आपे बीना, आपे सेव कराए, आपे गुणदाता अवगुण काटे, हृदय नाम वसाए, नानक सद बलिहारी सच्चे विटों, आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा।

सखा हर जीओ गुरपुरख बधाते पुरखो बधाता एक श्री तर क्यों मिलह तुझे उड़ीनिया कर करह सेवा आसीस चरणी मन आस दर्श निमानिया सास सास ना घड़ी विसरे पल मूरत दिन राते नानक सारिंग ज्यों प्यासे क्यों मिलिए प्रभदाते एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोहे लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों धीरे गुणवंत नाहा दयाल बाला सर्व गुण भरपूरे पूरे।

आव हो नाह प्यारी हों मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब दिसा हों सिर अर्पी तिसमीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता सीस सुथान गुर पह संग प्रभु दिखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रहन रलिया करै कामण मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ ते हम जैसा मेरा मन आनंद भया जियो वजी वधाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहरखे उपजिया दूत थाऊं गवाया अनहत वाजे बजे है घर में है फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया कंत सुखदाई गौड़ी महला।

यह साध संत इकत्तर हुए हैं तहां तुझे त्यावही कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्स प्यासी मिल दर्शन सुख सारा मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू मान है एक जी अवर सब राली मान है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल तारिया तुद बचन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श त्याना मोहन जम नेर ना आवै तुद जपहै निधाना जम काल किनको लगै नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान

ना आया, बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही। सतगुर पुरख मरारी, बिनवंत नानक टेक राखी। जित लग तरिया संसारी, गौड़ी महला पंजवां सलोक। पतत असंख पनीत कर, पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाव को, तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण, गोविंदा हर माधु। त्याए मना मरार मुकंदे, कटिए काल दुख फादु। दुख हरन दीन सरन श्री तहर, चरण कमल अराधिये। जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर, निमक सिमरत साधिये। कल मलै दहता शुद्ध करता, दिन सरैन आराधु। बिनवंत नानक करहु कृपा, गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर, पै पंजन हर राया। श्री रंगो दयाल मनोहर, भगत वच्चल बिरदाया। भगत वच्चल पुरख पूरन, मन है चिंदिया पाईए। ताम अंध कूप ते उधार है, नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन, गुण अनक भगती गाया। बिनवंत नानक करहु कृपा, पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर, सर्व कला जिन तारी। करुणा में समरथ स्वामी, कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता, बेअंत अगम अपारू। शरण जोग समरथ मोहन, सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह, जपत नाम मरारी। बिनवंत नानक करहो कृपा, समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी, सब ते ऊच दयाला। बिसंबर देवन को एक है, सर्व करै प्रतपाला। प्रतपाल महादयाल दाना, दया तारी सब किसै। काल कंटक लोभ मोह नासै, जी जा कै प्रभ बसै। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा, पई पूर्ण काला। बिनवंत नानक इच पुन्नी, जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवा, सुन सखिए मिल उदम करेहा। मनाए लह हर कंतै, मान त्याग कर भगत ठगौरी। मोह है साधु मंतै, सखी वास आया फिर छोड़ ना जाई। एह रीत भली भगवंतै, नानक जरा मरण पै नरक निवारै। पनीत करै तिस जनतै, सुन सखिए एह भली बिनंती। एहो मता पकाइयै, सहज सुभाए अपाद रहत होए। गीत गोविंदह गाइयै, कल कलेश मिटहै भ्रम नासहै। मन चिंदिया फल पाइयै, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर। नानक नाम त्याइयै, सखी इश करी नित सुख मनाई। प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्श बैरागण। देखो थान सबाए, खोज लहो हर संत जना संग। समरथ पुरख मलाए, नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता। सेवड भागी माए, सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे। मेरा मन तन हर संग लिया, सुन सखिए मेरी नींद पली। मैं आपनड़ा फिर मिलिया, प्रम खोयो शांत सहज स्वामी। प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी। नानक सुहाग ना टलिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत्र नरोदरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत,
गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आप है किया कराया, आप है करम जोग, नानक एको रब रहया, दूसर होवा ना होग पौड़ी। ओ अंसाध सतगुर नमस्कारन, आदि मद अंत निरंकारन, आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन, आपने आप आपह उपायो, आपह बाप आप ही मायो, आपह सूखम आपह अस्थूला।

एक बखाननो, नानक एक अनेक पौड़ी। ओअंग गुरमुख कियो अकारा, एक है सूत परो मनहारा। पिन पिन त्रै गुण विस्थार, निर्गुण ते सरगुण दृष्टार। सगल पांत कर करह अपायो, जन्म मरण मन मोह बढ़ायो। दूहू पांत ते आप नरारा, नानक अंत न पारा वारा। सलोक से सहा भगवंत से, सच संपै हर रास। नानक सच सोच पाई, तेह संतन कै पास। पवड़ी ससा सत सत सत सो, सत पुरख ते भिन्न ना को। सो सरन परै जिह पायं, सिमर सिमर गुण गाए सुनायं। संसय परम नहीं कछ व्यापक, प्रगट प्रताप ताहू को जापत। सो साधु एह पहुंचन हारा, नानक तां कै सद बलिहारा। सलोक तन तन कहां पकारते, माया मोह सब कूर। नाम बिहूने नानका, होत जात सब तूर। पवड़ी तद्दा तूर पनीत तेरे जनुआ, तन तेऊ जे रुच या मनुआ। तन नहीं बाछ सुरगना आछ, अच प्रिय प्रीत साध रज राचह। धंधे कहां व्यापह ताहू, जो एक शाद अन कतै ना जाहू। जा कह ही है दियो प्रभ नाम, नानक साध पूर्ण भगवान। सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान, मन

भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों अनक जुगत शास्त्र कर पातों ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो कहत सुनत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै उसन सीत समसर सब ताकै ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा तारी सलोक आमने आए सृष्ट मह बिन बूजे पस ढोर नानक गुरमुख सो बुझै जां कै भाग मथोर पौड़ी या जुग मैं एकै को आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवनहार मन है बिसराना धारो कृपा जिसह गुसाई इत उत नानक तिस बिसरहो नाही सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म आग्या पिन्ना कोए आमन जाना ते मिटै नानक जिहे मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया जाते तरो बिखम एह माया कर किरपा सतसंग मलाए नानक तां कै निकट ना माए सलोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप असे आपन हों हों करे नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी ये कह आप करावन हारा आपे पाप पुन बिसथारा या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दुआयो वा का अंत ना जाने को जो जो करे सो फुन हो ये कहते सगला बिसथारा नानक आप सवार नहारा सलोक राच रहे बनता बनोद कुसुम रंग बिखशोर नानक ते सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मान बिन हर जह रचो तह तह बंधन पाहे जेह बिद कतु ना छूटी है साकत तेऊ कमाहे हौ हौ करते कर्म रत

कहे आप अवर नह हो होवन हार होत सद आया वाका अंत न काहू पाया कीट हस्त मह पूर समाने प्रगट पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर ते जपना सलोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान नानक धन तन धन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए जास रसन हर हर जस भनिए आए बस है साधु कै संगे अन दिन नाम त्याव है रंगे आवत सोजन न मेहराता जाको दया मया बेदाता एक है आवन फिर जोन न आया नानक हर कै दर्स समाया सलोक यास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा पाओ दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम

नानक पाप बनासे कद के सलोक ठाक ना होती तिन्हों दर जेह हो वो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते तन तन पौड़ी ठठा मनुआ ठाह नाही जो सगल त्याग एक लपटाई ठहक ठहक माया संग मूए।

दसिया ठाकुरे अपने जो जन पाया नानक वा का मन सीतलाया। श्लोक दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ पौड़ी डड्डा डेरा एहो नहीं जह डेरा तह जान वा डेरा का संयम गुर कै शब्द पछान या डेरा को श्रम कर काल जाका तसु नहीं संग चाल वा डेरा की सो मित जान जाको दृष्ट पूर्ण भगवान डेरा निश्चल सच साध संग पाया।

पौड़ी। तद्दा तावत तौ मिट संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तौ होए मनह परगास। तन साचा तेऊ सच साहा, हर हर पूंजी नाम बसाहा। तीरज जस सोभा ते बनिया, हर हर नाम श्रवण जेह सुनिया। गुरमुख जेह कट रहे समाई, नानक तेह जन

मत पूरी प्रधान ते गुरपूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ अपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मर्म पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख अवाकै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा वाह रस मैं वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं ते माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो बिन हर शूटन नाहे नानक तेह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे पवड़ी जैया यतन करत बहु विदिया एक नाम बिन कह लो सिदिया याहू जतन कर होत छटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरण धारे सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समराता राख लेहो निर्गुण नरनाथा मन बच क्रम जेह आप जनाई नानक तेह मत प्रगति आई। सलोक रोस न काहू संग करहो अपने आप विचार होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रेन होत सब जाकी तज अवमान छुटै तेरी बाकी रण दरग है तो सीजै भाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बेकारा गुर पूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते। सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द ते मिटै खनाओ नाम औखद जे हृदय हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हर औखद सब घट है भाई।

देव सर्वत्र में ऊन ना कतहु ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काय दुराए पौड़ी, ववा वैर न करिए काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहू, वास देव जल थल में रविया, गुर प्रसाद विरले ही गविया, वैर विरोध मिटे ते मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चेहन सगल है ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत बेहानिया, साकत मुग्ध अजान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावन, नानक किरत कमान पौड़ी, राड़ा लाड़ मिटे संग साधु, कर्म तर्म तत नाम अराधु, रूड़ो जेहे बसे उरिद माही, वा की राड़ मिटत बिन साही, राड़ करत साकत गावारा, जेहे ही है हम बुद बेकारा, राड़ा गुरमुख राड़ मटाई, निमख माही नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट गहो, उकत सियान पत्याग, गुर दीखिया जेहे मन बसै, नानक मस्तक भाग पौड़ी, ससा शरण परे अबहारी, शास्त्र सिमरत वेद पुकारी, सोधत सोधत सोध बीचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सास सास हम भूलन हारे, तुम समरत अगनत अपारे, शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख पाए,

देव मंत नरो धरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उधरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा इह सलोक आद अंत पढ़ना गौड़ी सुखमनी।

प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु कै सिमरन सब किस सुझै, प्रभु कै सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा।

आसन रतना प्रभ को सिमरह से तनवंते प्रभ को सिमरह से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन परवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बेमोहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी

संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत बिबेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परै ना भंग हर का नाम

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते करे पार जात।

संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वड पागी पाई, संत की सेवा नाम ते आई, नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना।

चार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै महा उदास तपीसर पीवै अग्न माहे होमत परान कनक असव है विर भूम दान न्योली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावै तौ पी हों मैं मैल ना जावै हर के नाम समसर कछ नाहि नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गमान ना मन ते हुटै सोच कर

मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच, बहुत सियाणप जम का भौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्ण ना थरापै, भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट अपाव दरगाह नहीं

अपमान आपस कहो जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना एक है सगल सृष्ट साजन।

सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओढ़ निबिहावे, कहां बजारत दूजै डोरा, निस कहिए तो समझै पूरा, कहां

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर धर्म को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत किया।

कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत जानन हार प्रभु परबीन बाहर भेख ना काहू पीन अवर अपदेश है।

ते रहत सब कछ जान आत्म की रहत जिस पावै तिस लय लड़ लाई थान थन अंतर रहे आसमाय सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावह तिस को सिमरत परम गत पावह जे प्रसाद बसह सुख मंदर तिसह त्याहि सदा मन अंदर जेहे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरहो तिस रसना जेहे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याहि त्यावन जोग जेहे प्रसाद पाठ पटंबर हंधावह तिसह त्याग कत अवर लुभावह।

मानै मुखता को जस रसन बखानै जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगाह मान पावै नानक पत सेती

मन सुख पावह हर हर जस कहत, जे प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके, मन चरनी पार ठाकर प्रभ ताकै, जे प्रसाद तुझ को ना पहुंचै, मन सास सास सिमरहु प्रभ उच्चे, जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक ताकी भगत करे, जे प्रसाद अपूखन पहरीजै, मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै, जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी, मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी, जे प्रसाद बाग मिलख तना, राख प्रोए प्रभ अपने मना, जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सद तिसह त्याई, तिसह त्याई जो एक अलख

ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लाग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस पव को मूल।

सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सो नाऊ, आप गवाए सो हर गुण गाओ, प्रभ कृपा ते होए परगास, प्रभु दया ते कमल बिगास, प्रभ

ता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहू धावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजह महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञान

पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन परीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म मह सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन

न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया धुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म नाम तिस नगरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान तो दास दरगाह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास

लोक उस्तत करह अनेक जन अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची बहुबेद अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थ वास्ती, कई कोट बन भ्रम है उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म

कई कोट भय अबमहानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरा सब हूते दूर, नानक आप लिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई

दास तिन होवत आत्म परगास कई कोट तत के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पये सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है अपने जन को सास

होए नानक तिस बलिहार ने जल थल महियल सोए। अष्टपदी करन करावन करन जोग जोत सिपावै सोई होग। हिन मह थाप उथापन हारा अंत नहीं किश पारा वारा। हुक्मे तार अतार रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै। हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनकरंग प्रकार।

प्रभ भावे बिन सास्ते राखे, प्रभ भावे ता हर गुण भाखे, प्रभ भावे ता पतत उधारे, आप करे आपन विचारे, दोहा श्रेय का आप स्वामी, खेले बिगसे अंतर जामी।

आवै इसके हाथ हुए ता सब किस ले जो तिस पावै सोई करे अनजानत बिख्या मह रचै जे जानत अपने आप बचै परमे फूला दह दिस धावै।

ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आत्मला।

पर राजा कबहु भिखारी नीच का साजा कबहु अपकीर्त मह आवे कबहु भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखे तिव ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबहु होए पंडित करे बखियान कबहु मोन धारी लावे ध्यान कबहु तट तीर्थ इशनान कबहु सिद्ध साधक मुख।

बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदे जिसके अंतर राज अभमान सो नरक पाती होवत सोवान जो जाने मैं जो बनवंत तो होवत भिष्टा का जंत आपस कहो कर्मवंत कहावे जन्म मरे बहु जोन प्रमावे

फनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, फनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगाह कहू कैसे गवे, आपस कहो जो भला कहावे, तिसह भला।

तब इसको सुख नाही कोई। जब एह जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई,

को उठ धावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनक भोग बिख्या के करे, नह तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राज्य, सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी तिसे प्राप्त होए, करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करन हार, इसके

कौतक करे रंग अपार। मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन ना जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी।

चार अष्टपदी संत कै दुख में आर जा घटै, संत कै दुख जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाय, संत कै दुखन नरक मह पाय, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखै ना कोय, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होय, संत किरपाल किरपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै।

भेद सब जाय, संत कै दुखन नीच निचाय, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावे ता उए भी गत पाहे, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई, संत का निंदक महा हथियारा, संत का निंदक

नानक ज्योति सपाव है सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी

हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिस की कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह ना लागह दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाय।

नह किस मरे आपन चलते आप ही करे आमन जावन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मह आप अनक जुगत रच थाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड धारन धार रहो ब्रह्मांड अलख।

ਬਿਰਥਾ ਜਨ ਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ

नानक सो जन सदा अरोग ज्यो मंदर को थमै थमन त्यो गुर का शब्द मनै अस्थमन ज्यो पाखाण नाव चढ़तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै।

संग मिल जोत प्रगटावे, इन संतन की बाचो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए,

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किनै अंत ना पाया, जां की लीला की मित नाहि, सगल

के पाय, सब घट तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवै नानक हर नाव, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उधरे सुन श्रवन, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहि समाणी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसह बुझाए तिसह सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जां कै हृदय प्रवेश, सत नित बूझै जे कोय, नाम जपत तां की गत होय, आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करनै हार, अवर ना बूझ करत बीचार, करते की मित ना जानै किया, नानक जोत सुभावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म पये बिस्माद, जिन बूझया तिसे आया स्वाद, प्रभ कै रंग रात जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, वे दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सो वड भागी।

आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पीखनहार नाम सत सत ध्यानहार आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रवक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार।

बारंबार बार प्रभ जपी है ई अमृत इह मन तन तृपी है नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृष्ट।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उच्चरै।

बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ भरम। सहस सियान पलया ना जाइए, नानक ऐसा गुरबद भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करन आगहने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावै तिस लये मलाए। जिहवा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने ना पाई। अनक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस पर साध ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोई, अमृत पीवै अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जां कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग ना लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख तह ते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पहु चूका निरपहु होए बसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे। जिसका साथ इन कृपा धारी, साध संग जप नाम मरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्ब निरंतर एको सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग, पये प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ न चल बिन भजन, विखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो बीचार, एक सिमर नाम आधार। अवर अपाव सब मीत बसार हो, चरण कमल रिद मह उतार हो। करन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत। यहु तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट उठ धावह, तो तन हर सेवा ते पावह। जिस सुख को नित बांचह मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरनी। अनक अपावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए। सर्व निदान मह हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान। मन पर बोध हो हर कह नाए, दह

0: नाव, सिमर सिमर सदा सुख पाव, पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाए आत्म परगास, तित कर जाए बसे अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी,
1: तत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरे सो काचो काचा, आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग सरन गुरदेव, यो रतन जन्म का हुए उदहार, हर हर सिमर प्राण अधार, अनक अपावना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करहु मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए, संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटाव है मूर्ख मना।

परयातो सरनाय नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने

मन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहया सतसंग हजूरी जिसका साथन लिया मलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल ना भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै

बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करहु इहु काम आन त्याग जपहु हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहु आप जपहु अवरहा नाम जपावहु भगत भाई तरिय संसार बिन भगती तन हो।

अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कह ते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इस का वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कमन नडार कमन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा।

अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई जह सर्व कला आपह प्रवीन तह वेद कतेव कहां को चीन जब आपन आप आप उरतारै।

मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोचै तो नानक एक जह अवगत भगत तह आप जह पसरै पासार संत प्रताप दुहू पाख का आप है धनी उनकी शोभा उनहु बनी आप है कौतक करे अनद चोज आप है रस भोगर निरजोग जिस भावै तिस आपन नाए लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेशमार अथाह अगंत अतुलै ज्यो बलाव हो त्यो नानक दास बोलै सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दिसतार अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आप एक आप विस्थार जान तिस भावै तां सृष्टि अपाई अपने भाणै लई समाई तुम

दृष्ट दर्शन पेठत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पहे अमरा।

हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदे संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक घट माहे।

कहो किने कछ करा, आप भला कर तूत आत्मी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज, ताकि गत मित कही ना जाए।

अष्टपदी पूरे गुर का सुने उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरहो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक नवार उधार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वह नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरन ही आए कर कृपा प्रभ आप मलाए।

समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरन नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत जिस जन आवै।

नानक संत निर्मल पए, जिन मन वसया सोए पौड़ी, तृतीया त्रै गुण बिखे फाल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग प्रमतो कणो, सदा संगारे नीच, हरख सोग

भरम बूढ़त कणो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख ले हो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध

दुख दार्द अपवित्रता नासह नाम आधार सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए नानक साधरवा।

नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसुम बास बहुरंग घणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझियै नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदेओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारा वार भगत सोह गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सेख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीते हर स्यों बीते भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसेओ पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याय सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुभाय नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिव लाए पौड़ी सप्तम संचोह नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारा वार आप तजो हो गोविंद भजो हो सरन पर हो हर राय दुख हरे पवजल तरे मन चिंदे आप फल पाए आठ पहर मन हर जपै

मीत जो हर की मत दे नानक तिस बलिहार ने हर हर नाम जपे सलोक आठ पहर गुन गाई है तजी है अवर

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

आर्य नरक स्वर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद हिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरै तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन बसे।

मन मह चितव पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाई नानक इहो संजम प्रभ कृपा पाई सलोक एको एक बखानी है बिरला जाने स्वाद गुण गोबिंद ना जानिए नानक सब बिस्माद पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन बिद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राखे एक ठाए मन तन शुद्ध जपत हर नाए सब मह पूर रहे पार ब्रह्म।

पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार आवत जात नरक अवतार हर हर भजन न मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख न गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिन विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। श्लोक चार कुंट

पौड़ी चौदह चार कुंट प्रभे आप सगल भवन पूर्ण प्रताप दसे दिशा रव्या प्रभ एक तरन आकाश सब मह प्रभ पीक जल थल बन पर्वत

श्लोक आत्मजीता गुरमति गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी किंद पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे संत।

हो मैं छुट्टी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवागमन, आप तरिया कुटुंब सियो।

नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभ आप दिन दिन चढ़े सुआया नानक होत ना घाट पौड़ी पूर्णमा पूर्ण प्रवेक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख सब ऊपर जा का हथ गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई सरन जोग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझिय सिमरहु हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की सरन सलोक दुख बिन से सहसा गयो सरन गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक हर गुण गाय पौड़ी कोई गावे को सुने कोई करे विचार को उपदेसे को दृढ़े तिसका हुए उदहार किलबिख काटे हुए निर्मला जन्म जन्म मल जाय हलत पलत मुखी उजला नह पोहे तिस माय सो सुरता सो वैष्णो सो ज्ञानी।

हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर त्याई है, गुरमुख पावे कोई महला चौथा। हों मैं माया सब बिख है, नित जग तोटा संसार, लाहा हर धन खटिया गुरमुख शब्द विचार। हों मैं मैल बिख उतरे, हर अमृत हर उरतार, सब कार्य तिनके सिद्ध है, जिन गुरमुख कृपा तार। नानक जो तुर मिले से मिल रहे, हर मेले सिरजनहार। पौड़ी तू सच्चा साहेब सच है, सच सच्चा गोसाई, तुदनो सब त्याई दी, सब लगे तेरी पाई। तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है, जिन कीती तिस पार लंघाई।

मनमुख अहंकार सलाहंदे होमे ममतावाद जिन सलाहन से मर है खप जावे सब अपवाद जन नानक गुरमुख उबरे जप हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम त्याई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया जिन्नी तू एक मन सच त्याया तिनका सब दुख गवाया।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यो बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करह सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहेब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छिड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठे सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना।

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब भावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी।

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन हो सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच्चै वख कड्डे जजमाले सचियार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर का आख्या सिखावे नाही तिना मुंह भलेरे फिरै दईए गाले जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी से किचर कवेराइन मन मुख बेताले सतगुर नू मिले सो अपना मन थाए रखे ओ आप वरतै अपना।

रखै हलत पलत सब तिसका गया नित चहियां पाए झगू सुटे झकदा झकदा झड़ पया नित अपाव करै माया धन कारण अगला धन भी उड गया क्या ओह खट्टे क्या ओह खावै जिस अंदर सहसा दुख पया निर्वैर नाल जे वैर विचारे सब पाप जगतै का तिन सिर लया ओस अगे पिछे ढोई नाही जिस अंदर निंदा मुहे अंब पया जे सोइने नो ओह हाथ पाए तां खेहू से तीर हल गया जे गुर की सरनी फिर ओह आवे तां पिछले औगण बख्श लया जन नानक अन दिन नाम त्याया हर सिमरत किल विक पाप गया पौड़ी तू है सच्चा सच तू सब तू ऊपर तू दीवान जो तुद सच त्याईंदे सच सेवन सच्चे तेरा मान ओना अंदर सच मुख उजले सच बोलन सच्चे तेरा तान से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाहिया

मिलन करतारी सत संगत ढोई ना लहन विच संगत गुर विचारी कोई जाए मिले हुण उना नू तिस मारे जम जंदारी गुर बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद कीते कूड़ियारी गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ इना विचारी गुर चौथी पीढ़ी टिकिया तिन निंदक दुष्ट सब तारी कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कारज सब सुवारी जो इच्छा सो फल पाए सी पुत धन लक्ष्मी खड़ मेले हर निस्तारी सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उड़तारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिख

सारे सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। सलोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला ओस दे आखे कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओस दा सब गया नित चुगली करे अणहोंदी पराई मुंह कढ ना सकै।

ना होई, विस खादी तत्काल मर जाए। भाई वेखो न्याओ सच करते का, जेहा कोई करे तेहा कोई पाए। जन नानक को सब सोजी पाई, हर दर कियां बातां आख सुनाए। महला चौथा होंदे प्रतख गुरु जो विछड़े, तिनको दर ढोई नाही। कोई जाए मिले तिन निंदका, मुंह फिके थुक थुक मुहे पाही। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित भंबल भूसे खाही। जिन गुरु गोपिया अपना, से लैंदे ढहां फराही। तिनकी भुख कदे ना उतरै, नित भुखा भुख कुकाही। उना दा आख्या को ना सुने, नित हौले हौल मराही। सतगुरु की वड़ियाई वेख ना सकनी, उना अगै पिछै थां नाही। जो सतगुर मारे

हर तिन का दर्शन ना करहो जो दूजे पाए चित लाही तुर करत आप लिख पाया तिस नाल केहो चारा नाही जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही नावै की वडियाई वड्डी है नित सवाई चढ़ै चढ़ाही महला चौथा जे होंदै गुरु बह टिकिया तिस जन की वडियाई वड्डी होई तिस को जगत निमया सब पैरी पया जस वरत्या लोई तिस को खंड ब्रह्मांड नमस्कार करह जिसकै मस्तक हाथ धरिया गुर पूरै सो पूरा होई गुर की वडियाई नित चढ़ै सवाई अपड़ को ना सकोई जन नानक हर करतै आप बह टिकिया।

करे हर वस्त संभाले नाम निदान हर बन जीए हीरे परवाले विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड बेताले से उजड़ भरम पवाई है ज्यों झाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मह होया नरक घोर दुख खूह है उथे पकड़ ओहो ढोया कूक पकार को ना सुने ओहो औखा होए होए रोया ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया ओहो तेली संदा बल्द कर नित भलके उठ प्रभ जोया हर वेखै सुने नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया जैसा बीजे सो लुणे जेहा पुरब किने बोया जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण धोया गुर सतगुर पिछे तर गया ज्यों लोहा काठ संगोया जन नानक नाम त्याए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा वडभागियां सुहागनी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर ज्योत परगासिया नानक नाम समाए पौड़ी एहो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच ज्योत गोहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड़े खोत सब आत्म राम पछाणिया ता एक रविया इको ओत पोत एक देखिया एक मन्या इको सुनिया श्रवण सरोत जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा सब रस तिनकै हृदय है जिन हर वसिया मन माहे हर दरगह ते मुख उजले तिनको सब देखण जाहे जिन निरपव नाम त्याया तिनको भौ कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको धुर लिखिया आहे ते हर दरगह पैनाई है जिन हर बुठा मन माहे ओए आप तरे सब कटंब सियो तिन पिछे सब जगत छडाहे जन नानक को हर मेल जन इन वेख वेख हम जिवाहे। महला चौथा सा धरती पई हरियावली जिते मेरा सतगुरु बैठा आए से जंत पई हरियावली।

जिन नाम अराध्या आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लय छाय हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया जा दिथा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याय सी सो करे जे सतगुर भाव सी।

आप होए होर केती चख चख जाए सी जन नानक नाम त्याए तू हर हलत पलत छोड़ाए सी महला चौथा गुर सिखा कै मन भांदी गुर सतगुर की वडियाई हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़ै सुआई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हर तिन सब आन निवाई जिन्नी दिठा मेरा सतगुर पाओ कर तिन के सब पाप गवाई।

तेरे भाई पौड़ी हम आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वड़ियाई सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया

मन बजी वधाई। सलोक महला चौथा। जिन्ना अंदर अमरथल से जान सूलिया, हर जान है से बिरहो। हौ तिन बिटो साध घुम घोलिया, हर मेलो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन बिटो तल रोलिया। जो सिख गुर कार कमाव है हौ गुलम तिना का गोलिया, हर रंग चलूलै जो रते तिन भिन्नी हर रंग।

त्यों संतो निर्मल होए गुरमुख गुण वे हादी है मल हों मैं कड़ै धोए सच मणंज है रंग स्यों सच सौदा होए तोटा मूल ना आवे लाहा हर भावै सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वस्से सच सच्चा हर रखवाली।

उठा सतसंगत मह हर पुस्तत है संग साधु मिले प्यारिया वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है उपदेश कर है पर उपकारिया हर नाम दृढ़ाव है हर नाम सुनाव है हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचे नव खंड जगत नमस्कारिया तुदे आपे आप रखिया सतगुर विच गुरे आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज कराव है सतगुर को सिर जनहारिया कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो तिस काला मुह जम मारिया तिस अगे पिछे ढोई नाही गुर सिखी मन विचारिया सतगुरु नो मिले से ही जन उबरे जिन हिरदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुत हो हर जपे हो हर निस्तारिया महला तीजा हो मैं जगत भलाया दुरमत बिख्या बेकार सतगुर मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार नानक आपे मेल लय जिसनो शब्द लाए प्यार पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाहा है सो करे जिस अंदर भिजै जिन्नी एक मन एक अराध्या तिनका कंध ना कबहू सिजै तन तन पुरख साबास है जिन सच रसना अमृत पिजै सच सच्चा जिन मन भावदा से मन सच्ची दरगाह लिजै तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजै सलोक महला चौथा साकत जाए निवह गुरे आग्ञा मन खोटे कूड़ कूड़ आरी जा गुर कह उठो मेरे भाई बह जाहे कुसर बगलारी गुर सिखा अंदर सतगुर वरत चुन कड्डे लड्डू वारी कोई अग्गे पिछे बह मुह सुपाइन ना रलनी खोटे आरी ओना दा भख सो ओथे नाही जाए कूड़ लहन भेडारे जे साकत नर खवाई है लोची है बिख कड्डै मुख उगलारे हर साकत सेती संग ना करियो हो उए मारे सिरजन हारे जिसका एहो खेल सोई कर वेखे जन नानक नाम समारे महला चौथा सतगुर पुरख अगम है जिस अंदर हर उर धारिया सतगुरु नो अपड़ कोई ना सकई जिस वल सिरजन हारिया सतगुरु का खड़ग संजोव हर भगत है जित काल कंटक मार वडारिया सतगुरु का रखण हारा हर आप है सतगुरु कै पिछे हर सब उभारिया जो मंदा चितवै पूरे सतगुरु का सो आप उपावन हारे मारिया एह गल हुआ हर दरगाह सच्चे की जन नानक अगम विचारिया पौड़ी सच सुत्या जिन्नी अराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग मह जानी है जो गुरमुख सच रवे हौ बलिहारी तिनको जे अन दिन सच लवे जिन मन तन सच्चा भामदा से सच्ची दरगाह गवे जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे सलोक महला चौथा क्या सवना क्या जागना गुरमुख ते परवान जिन्ना सास ग्रास ना विसर से पूरे पुरख प्रधान करमी सतगुर पाई है अन दिन लगे ध्यान तिनकी संगत मिल रहा दरगाह पाई मान सौंदे वाहो वाहो उच्चरह उठदे पी वाहो करेन नानक ते मुख उजले जे नित उठ संभालेन महला चौथा सतगुर सेविया अपना पाईए नाम अपार भौजल डुबदियां कढ ले।

माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला, गुरमुख जापै शब्द लिवलाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, जो तिस भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किस जानदा, जो जिया अंदर वरतै, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणतै, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनतै, तू घट घट एक वरतदा, सच साहिब चलतै, सतगुरु नू मिले सो हर मिले, नाही किसे परतै। श्लोक महला चौथा, एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाइयै चित, क्यों सास ग्रास वसारी है, बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई, एहो जीअड़ा हर प्रभ वस, ज्यों भावै त्यों रख तू, जन नानक नाम बखश। महला तीजा, मनमुख अहंकारी महल ना जाने, खिन आगे खिन पीछे, सदा बलाइए महल ना आवे, क्यों कर दरगाह सीजे।

सफल है। जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्या, ता पाप कसमल पन्ने, अपदेश जे दिता सतगुरु, सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाणा मन्या, तिन चढ़ी चवगण वन्ने, एह चाल नराली गुरमुखी, गुर दीखिया सुन मन भिन्ने, सलोक महला तीजा, जिन गुर गोपिया अपना, तिस ठौर ना ठाऊं, हलत पलत दोऐ गए, दरगाह नाही थाऊं, ओह वेला हाथ ना आवई, फिर सतगुर लगह पाए, सतगुर की गणत कुसी है, दुखे दुख विहाय, सतगुर

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मातहारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उतै सच वरतदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कढ दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड्डे मन वेखो को निरजास कूड़े आरी जाए रले सत्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवा रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर संत सहाई नानका वरतै सब जाहर। महला पंजवा मुंडो भुले मुंड ते कितै पायन हाथ तिन्ह मारे नानका जे करन कारण समरथ। पौड़ी पंजवा लै फाहे राती तुरह।

संग जुट सलोक महला चौथा तपा न होवै अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सद्या सतै दी भिखिया लए नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सभा सुन लगे।

कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे। जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े। जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड गड़े। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे। ज्यों पावै त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे। सुध गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौज दी की वार की धुन उपर गावे।

ना लद्या नानक से साबास जिन्नी गुरमिल एक पछाणिया पौड़ी जिथै बैसन साध जन सो थान सुहंदा ओए सेवन समर्थ अपना बिनसै सब मंदा पतत उदारन पार ब्रह्म संत वेद कहंदा भगत वचल तेरा बिरद है जुग जुग वरतंदा नानक जाचै एक नाम मन तन पावंदा श्लोक महला पंजवा चिड़ी चौंकी पहु फुटी वगन बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचे नानक नाम है रंग।

सुहावियां लगड़ियां अक कंठ बिरह विछोड़ा तनी सियो नानक सह सह गंठ महला पंजवां वसारें दे मर गए मर पे ना सकै मूल वे मुख होए राम ते ज्यों तस्कर उपर सूल पौड़ी सुख निदान प्रभ एक है अबनासी सुनिया जल तल मैयल पूरिया घट घट हर भणिया ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया तुस नानक देवै जिस नाम तिन हर रंग मणिया।

हथे पैर भौंदा फिर खामन संधड़ै सूल दोजक पौंदा क्यों रह जा चेतना होए रसूल पौड़ी तिसै सरे वो प्राणी हो जिसका नाव पल्लै ऐसै रहो सहेलिया अगे नाल चलै घर बंद हो सच धर्म का गड थम अहलै ओट लै हो नारायण दीन दुनिया चलै नानक पकड़े चरण हर किस दरगाह मल्लै श्लोक महला पंजवां जाचक मंगै दान दे प्यारिया देवन हार दा तार मैं नित चितारिया नखोट न जाई मूल अतुल भंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किश सारिया महला पंजवां सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख यूजन सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम कै पंथ ना पाई है फिर नाही मरने जिसनो आया प्रेम रस किसे ही जरने बाणी उचर है साध जन हम्यो चल है चरने पेख दर्शन नानक जीविया मन अंदर धरने श्लोक महला पंजवां सतगुर पूरै सेवै दुखां का होए नाथ नानक नाम अरातै कारज आवै रात महला पंजवां जित सिमरत संकट छुटै है आनंद मंगल बिचराम नानक जपियै सदा हर निमक ना बिसरो नाम पौड़ी जिनकी शोभा क्या गणी जिन्नी हर हर

बिख कुड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ पौड़ी एह निशानी साध की जिस भेटत तरी जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरी है भव सागर संसार बिख सो पार उतरी है हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरी है नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरी है तलोक महला पंजवा नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित गाली अल पलालिया कम ना आवह मित महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण अगम

नानक धनी मिहूनिया महला पंजवा नीह जे विद्या मन पछाणु विरलो थियो जोड़ नहारा संत नानक पादर पदरो पौड़ी सोई सेव हो जी अड़ी दाता बख्शिंद किल विख सब बनास होन सिमरत गोविंद हर मार्ग साधु दस्या जपिया गुरमंत माया स्वाद सब फिक्किया

जिस तुस देवै आप जित खादै मन तृप्ति है। नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग मैं से खट है। जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस। निश्चल एक सरेरिया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास। कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवां पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सुपाए अन तन बहुत उपजिया। रिथमी रजी तिप्त अगहाए सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाए। पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाए। परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याए। महला पंजवां जीवन पद निर्वाण

रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस भलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद भावही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

सारी पौड़ी रसना उचरै हर श्रवणी सुने सो उदरै मित्ता हर जस लिखे लाए भावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिख्या गढ़ जिता नानक लड़ लाए।

तन फटन जिन्ना साहिं विसरै महला पंजवां प्रेतोह की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारे निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारे नानक का प्रभ वड्डा है।

जगत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाउ मन मारन कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत ना पाइए, जेह पावक सुर नर है जारी।

चतराई ना चतर भुज पाइए रहाउ पर हर लोभ अरलोकाचार पर हर काम क्रोध अहंकार कर्म करत बदे अहमेव मिल पाथर की करही सेव कहो कबीर भगत कर पाया भोले पाए मिले रघुराया गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती कहो रे पंडित बामन कब के हुए बामन कह कह जन्म मत खोए रहा जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया तुम कत ब्राह्मण हम कत

गौड़ी कबीर जी अंधकार सुख कबह ना सोई है, राजा रंक धू मिल रोई है, जो पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ, जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कहो कां की माया, जस जंती में

गौरी कबीर जी जोत की जात जात की ज्योति तित लागे कंचुआ फल मोती कमन सो घर जो निरपहु कही है पहु पा

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हो मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग

सब दुनिया गौड़ी कबीर जी अवर मुए क्या सोग करीजै तौ कीजै जो आपन जीजै मैं ना मरूं मरबो संसारा अब मोहे मिलियो है जे आवनहारा रहाओ या देही परमल महकंदा ता सुख बिसरे परमानंदा कुवटा एक पंच पनिहारी टूटी लाज परे मत हारी कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी ना ओह कुवटा ना पनिहारी गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक जन्म किए बहुरंगा ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ जोगी जति तपी ब्रह्मचारी कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी साकत मर है संत सब जीव है।

ला पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमोहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए।

सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंधा, सत राम झूठा सब धंधा, गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके, जमते उल्ट भये है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उल्ट भये है मीता, साकत उल्ट सुजन भये चीता, अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया, शांत भई जब गोविंद जानिया, रहाउ तन मह होती कोट अपाद, उल्ट भई सुख सह

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लाव खोजत तन मह ठौर ना पाव लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाओ एक पाए देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जो बिख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार। पंडित देखो हृदय बिचार, प्रीत बिना कैसे बदे स्नेह। जब लग रथ तब लग नहीं नेह। रहाओ साहन सत करे जी अपने, चोर मैये को मिले ना सुपने। तन मन धन गृह।

नहाऊ। तिनकै सद बलिहारै जाऊ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन भावै रहाऊ। जिहे कट राम रहया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, वाको कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बीचारा रहाउ, सहज कलालन जो मिले आई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तव अनुभव पाया, गौरी कबीर जी मन का सुपहो मनह व्यापी, मनह मार कमन सिद्ध थापी, कमन सो मन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाउ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना हुई।

अंत समाया। कैसे जीवन हुए हमारा जब ना होए राम नाम अधारा रहाओ। कहो कबीर खोजो असमान राम समान ना देखो आन। गौड़ी कबीर जी जेहे सिर रच रच बांधत पाग सो सिर चुंच सवार है काग। किस तन तन को क्या गर भैया राम नाम का।

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हम हो ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते सिव ब्रह्म डराना सो सुख हम हो साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन में।

जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी ग्वार रे अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भये लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तार तारे।

गोर ठपी, रे जी न लाज लाज तोहे नाही, हर तज कत काहू के जाही रहाओ, जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जन पर कर जात ना सोई, सो साहिब रहया भरपूर, सदा संग नाही हर दूर, कवला चरण सरन है जाके, कहो जन का नाही घर ताके, सब को कह जास की बाता, सो समरथ निज पत है दाता, कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवर ना होई।

बताऊं कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यों मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाउ। साधु संगत दियो रलाय, पंच दूत ते लियो छडाय। अमृत नाम जपो जप रसना।

आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो ताते अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

सूतक सूतक श्रवनी होई उठत बैठत सूतक लागे सूतक परै रसोई फासन की बिद सब को जाने छूतन की एक कोई कह कबीर राम हृदय विचारे सूतक तिन ना होई गौड़ी।

धारी उपर दुर्मत भांडा फूटा आंधी पाछे जो जल बरखै केह तेरा जन पीना कह कबीर मन भया परगासा उदय पान जब चीना गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जस सुनह।

तिन तैसी झल देखी गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं सहिया तह उत्पत परलो नाही जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाद दो तह नाही सहज की अकथ कथा है निरारी तुल नहीं चढ़ै जाए ना मकाती हल्की लगे ना भारी रहाउ अर्ध उर्द दो तह नाही रात दिन सतह नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहां समाही अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए कहो कबीर बल जाओ गुर अपने सत संगत मिल रही है गौड़ी पाप पुन दोए बैल बसाही पवन पूंजी परगासियो तृष्णा गुण भरी घट पीतर इन बिद टांड बसाहयो ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बनजारा रहाओ काम क्रोध दोए भये जगाती मन तरंग बटवारा पांच तत्व

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाऊ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्ज सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पल मीठा अवरना दूजा भाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी ए कह है सिद्ध पाई हर बिन भरम भलानी अंधा जाप है जाओ आप छुटकावन ते बांधे।

पिंड तह नाही, रचनहार तह नाही, जोड़नहारु सदा अतीता, एह कहिए किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए बिना।

है नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजै फूट मरे जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिले सिद्ध पाई है।

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है

तन संगानी काष्ट लोहो उधारियो रे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तारियो रे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे चलत रचियो जगदीश काम सवाए गज बस परे मन बौरारे अंकस सहयो सीस बिखै बाच हर राच समझ मन बौरारे निरपै हुए ना हर भजे मन बौरारे गहयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरारे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परिया मन बौरारे नाचियो घर कर बार ज्यो नलनी सुअटा गहयो मन बौरारे माया एहो व्यवहार जैसा रंग कुसुंभ का मन बौरारे त्यों पसरियो पासार नावन को तीर्थ कने

माया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हूं लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी किन मह बिन सजाए अहंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाव जा तिस भावे ता हुक्म मनावे इस बेड़े को पार लंघावे गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर भज सार गपानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो लागत पवन खसम बिसरायो जियरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन मह उर्द तप करता तौ जठर अगन मह रहता लख चौरासी जोन भ्रम आयो अब के छुटके ठौर ना ठायो कहो कबीर भज सार गपानी आवत दिसै जात ना जानी गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी।

गुण गाइय जाते पाइय परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संयम क्या वर्त क्या स्नान जब लग जुगत ना जानी भाउ भगत भगवान। संपै देख ना हरखीय विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों विपत है विद निरति आसो होए। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जिह घट बसै मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार बिरक बसेरो पंख को तैसो इहो संसार। राम रस पियारे जिह रस बिसर गए रस और रहाओ। और मुए क्या रोई है जो आपा थिर न रहाए जो उपजै सो बिनस है दुख कर रुए बलाए। जह की उपजी तह रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग। राग गौड़ी पंथ निहारै कामनी लोचन भरी ले।

रहाउ। ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेशी इहो जग सगलो धंधा कह कबीर एक राम नाम।

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो

करै उधार, जान कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरभउ, तरन तारन राम राया रहाउ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भये है, एक देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी। खट नेम कर कोठड़ी बांधी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुस्से घर जाई रहाओ, पांच पहरुआ दर मह रहते। तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चेत होए रहो। तव लै परगास उजारा, नौ कर देख जो कामन भूली। बस्त अनूप ना।

जास गुण गाव है तास बस है मोरे प्राणा न रहाउ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना। विखै रोग पै बंधन भागे मन निज कर सुख जा नाना। एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना। चंदन बास पये मन बासन त्याग घटियो अबमानाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना। तेहे बड भाग बसियो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो एकै एक समानाना। कह कबीर गुर भेट महा सुख भ्रमत रहे मन मानाना।

बावन अक्षर लोक त्रै सब कछ इन ही माहे ये अखर खिर जाहिंगे ओए अखर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लख ना कोई लह लहूं तो क्या कहूं कहूं ता को

बटक बीज मैं रब रहे हो जाको तीन लोक बिस्थार अलह लहंता भेद शै कश कश पायो भेद उल्ट भेद मन बेदेओ पायो अपंग अशेद तुरक तरीकत जा।

आद मैं जाना लिख अर मिटै ताहि न माना ओंकार लखै जो कोई सोई लख मिटना न होई कक्का किरण कमल मह पावा सस बगास संपट नहीं आवा हर जे तहां कुसम रस पावा कह कहां कह का समझावा खखा एह खोड़ मन आवा खोड़े शाड ना दह दिस तावा खसमह जान खिमा कर रह तो हुए निखियो अखै।

गह गगन रहाई, कग्गा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट तबह ना होई, तां घट माही घाट जो पावा, सो घट छाड़ अब घट कत तावा, नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह, चचा रचत चित्र है भारी,

यह शत्रपत पासा शाक के ना रहो शाद के ना आसा रे मन मैं तो सिन सिन समझावा ताहे शाद कत आप बंधावा जज्जा जो

परवाना कत झख झख और न समझावा झगर किए झगरो ही पावा नन्या निकट सो घट रहे हो दूर कहां तज जाए जां कारण जग ढूंढ्यो नेरो पायो ताहे तटा बिकट घाट घट माही खोल कपाट महल के ना जाही।

अर्दह उर्दह मांज बसेरा अर्दह चाड़ उर्द जो आवा तो अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रही रतवाई निरखत निरखत जब जाए पावा तबले निरख है निरख मलावा पप्पा अपार पार नहीं पावा परम ज्योत स्यो परचो लावा पांचो इंद्री निग्रह करी पाप पुन दो निर्वरी फफा बिन फूल फल हुई

मन मन रह तो तीन लोक की बातें कहे जैया जो जान है तो दुर्मत हन कर बस काया गांव रण रूतो भाजे नहीं सूरो थारो नाव रारा रस निरस कर जानिया होए नरस सो रस पहचानिया ये रस छाडे ओह रस आवा ओह रस पिया ये रस नहीं पावा लल्ला ऐसे लिव मन लावे अनत न जाए परम सच पावे अर जो तहां प्रेम लिव लावे तो अलह लह लह चरण समावे ववा बार बार बिसन समहार बिसन

एहो अर ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोय। सत्सा सो नीका कर सुध हो घट परचा की बात नरुद हो। घट परचै जो उपजै पाओ पूर रहया तह त्रे पवन राओ। खखा खोज परै जो कोई जो खोजै सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करै बिचारा तो भवजल तरत ना लावै बारा। सत्सा सो सह सेज सुवारै सोई सही संदेह निवारै। अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एह त्री ओह कंत कहावा। हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तब है मन माना। है तो सही लख जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई। न्यो न्यो कर

अकुल निरंजन एक पाय तृतीया तीने सम कर लियावे आनंद मूल परम पद पावे साध संगत उपजे विश्वास बाहर भीतर सदा परगास चौथे है चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहु ना बहो।

छठ खट चक्कर शहू दिस धाय, बिन परचै नहीं फिरा रहाय। दुबदा मेट खिमा गह रहो, कर्म धर्म की सूल ना सहो।

एकादशी एक दिश तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहू लोक का पियो अचरज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगम बखान अर्ध उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरो ध्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुण्यो पूरा चंद आकाश पसरह कला सहज परगास। आदि अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर में।

बार बार हर के गुण गाव, गुरगम भेद सो हर का पाव रहाव। आदत करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंब। अहनिस अखंड सुर ही जाए, तो अनहद बीन सहज महबाई। सोमवार सासे अमृत चरै,

रीत पंच चोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाई नातर खरार सहराय बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल मह हर का बास गुर मिल दो एक सम धरे उर्द पंकले सूदा करे बृहस्पत बिख्या दे बहाय तीन देव एक संग लाय तीन नदी तह त्रिकुटी माहि हैनस कसमल तो वह नाहि सो किरत सहारे सो एह व्रत चढ़े अन दिन आप आप स्यो लड़े सुरखी पांचो राखे सबे तो दूजी दृष्ट ना पैसे कवे थावर थिर कर राखे सोए जोत दी वटी घट मह जोए बाहर भीतर भया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग घट मह दूजी आन तौ लो महल न लाभ जान रमत राम स्यो।

मोहन तारियली राम कहत जन कस ना तरे रहाउ तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियली करन बदक जन तेऊ मुक्त भये।

तेउ तरे राग गौड़ी रवदास जी के पदे गौड़ी गुआररी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

साध कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कस आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

पाए बोरे मोसौ को न कह समझाए जाते आवा गमन बिलाए रहाउ बहु विद धर्म निरूपी है करता दिसै सब लोए कवन कर्म ते छूटी है जेह साधे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म बिचारी है शंका सुन वेद पुराण संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभमान बाहर उदक पखारी है घट भीतर बेबिद बेकार शुद्ध कवन पर होए वो सोच कुंचर बिद व्यवहार रब प्रगास रजनी जथागत जानत सब संसार पारस मानो तांबो छुए कनक होत नहीं बार परम परस गुर भेटी है पूर्व लिखत लेलाट हुन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट भगत जुगत मत सत करी भ्रम बंधन काट बेकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक बेचार अनक जतन निग्रह

तत पड़े रिथि सुर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माछ पयाले गावन तुदनो।

रूपुरुख निरंजन हर पुरुख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहु।

प्यारा तू काट काट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक को पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हम तुद बिन अवर ना।

वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तापह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको।

चित तरे जां तू करनहार करतार क्या मोहताजी क्या संसार आप अपाए आपे दे आपे दुर्मत मन है करे गुर प्रसाद वसै मन आए दुख अनेरा विचों जाए साच प्यारा आप करे अवरी को साच ना दे जे किसै देव खाने नानक आगे पूछ ना ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दोलक दुनिया वाजह वाज नारद नाचै कल का भाऊ।

मान, ता किस दरगाह पावे मान। आसा महला पहला, जेता शब्द सुत धुन तेती।

हित रंग नाच हो रख रख पाऊ पूरे ताल जाने सलाह होर नचना खुशियां मन माह रहाऊ सत संतोख वजह दोए ताल पैरी वाजा सदा निहाल राग नाद नहीं दूजा पाऊ इतरंग नाचो हो रख रख

कही है, सर्व निरंतर रव रहे नाल कटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सिष्ट गया आग्या अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या बड़ा भया, रतन उपाय तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया, आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप नारेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन।

तेरा देखिया सगल भवन तेरी माया हरारे रूप नरालम बैठा नदर करे विच छाया बिना शब्द वजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द अनाहद सो सहोराता

जब लग हृदय न आवह जाद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ मन की मत मता गल मता जो किस बोलिया सब खतो खता क्या मुह लै कीचै अरदास पाप पुन दोए साखी पास जैसा तू करहे तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुद आपे पावे तिवें चलावे राग रतन परियां परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते का इहो धन माल जे को बूजै इहो विचार आसा महला पहला कर किरपा अपने घर आया ता मिल सखियां काज रचाया खेल देख मन आनंद भया सहो वी आहण आया गावो गावो कामणी बिबेक बिचार हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ जा सहो मिलिया ता जानिया तेहो लोका हमें शब्द रव्या है आप गया मन मानिया अपना कार्य आप सवारी पूर्ण कार्य न हुई जित कार्य सत संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझै कोई भणत नानक सबना का पिर एको सोए जिसनो नदर करे सा सुहागण होए आसा महला पहला ग्रह बन समसर सहज सुपाई दुर्मत गत पई कीरत थाए सच पौड़ी साचो मुख नाम सतगुर से

एक बहु करे दुख विकिया सुख तन पर हरे काम क्रोध अंतर तन हिरे दुबदा शोहड़ नाम निस्तरे सिफत सलाह।

नानक अस्थिर नाम रजाई, आसा महला पहला, एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासे परमल रूप, उजल मोती चूग हंस, सर्व कला जगदीसै अंस, जो दीसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल ना दीसै रहाओ, बिरला बूजै पावै भेद, साखा तीन कह नित भेद, नाद बिंद की सुरत समाई, सतगुर सेव परम पद पाए, मुक्तो रातो रंग रवंतो, राजन राज सदा बिकसंतो, जिस तू राख है कृपा तार, बूढ़त पाहन तार है तार, त्रिभवन मह जोत त्रिभवन मह जानिया, उल्ट पई घर घर मह आनिया, अहनस भगत करे लिवलाए, नानक तिन कै लागे पाए, आसा महला पहला, गुरमत साची हुज्जत दूर, बहुत सियाणप लागे धूर, लागी मैल मिटै सच नाय, गुर प्रसाद रह लिवलाय, है हजूर हाजर अरदास, दुख

जात पात सच नाव, कर्म धर्म संयम सत भाव, नानक बख्शे पूछ ना होए, दूजा मेते एको सो होए। आसा महला पहला, एक आवह एक जावह आई, एक हर राते रह समाई, एक धर्म गगन मह ठौर ना पावह, से कर्महीन हर नाम ना त्यावह, गुरपूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिख वत अत भौजल,

गुरमुख निर्मल रह प्यारी, ज्यो जल अंब ऊपर कमल नरारी। बुरा भला कहो किसनु कहिए, दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लही है।

टुका, कोई भीखक भीख्या खाए, कोई राजा रहे आसमाए, किस ही मान किसे अपमान, ताहे उसारे तरे ध्यान।

चिंत करे कह सुनह जो मानह नाऊ हों बलिहारे तां कह जाऊ नानक एक कह अरदास जियो पिंड सब तेरे पास जा तू देहे जपी तेरा नाम दरगाह बैसन हुए।

सो प्रगट जाई, सच निशान है ठाक न पाई। पंडित पढ़े बखान है वेद, अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हौ आखा आख बखानी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देहे दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई, यो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है। जिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवो। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यों तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है करह सोई, आसा मनसा धूब नासक। त्रिहो गुण आस नरास पई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई है। संत सभा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हृदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा, आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई रोवै पूत न कलपै माई एत मोहे डूबा संसार गुरमुख कोई उतरै पार एत मोहे फिर जूनी पाहे मोहे लागा जम पुर जाहे गुर दीखिया ले जप तप कमाहे ना मोह टूटै ना थाए पाहे नदर करे ता एहो मोह जाए नानक हर स्यों रह समाए आसा महला पहला आप करे सच अलख अपार हों पापी तू बख्शन हार तेरा भाणा सब किछ होवै मन हथ कीचै अंत वगोवै रहाउ मन मुख की मत कूड़ व्यापी बिन हर सिमरन पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किछ लेवो जो उपजै सो अलख अपेवो ऐसा हमरा सखा सहाई।

मेरा सहु जागे हौ निस भर सोवा, इउं क्यों कंत प्यारी होवा। सहु जागे हौ निस भर सोवा, रहाउ आस प्यासी सीजै आवा। आगे

तेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राव सच्चा नावन ता थी जा एनस लागे भाव एक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कबहून खूटस नाहे। आसा घर चौथा महला पहला।

धर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए। पीर पैगंबर सालक साधिक छोड़ी दुनिया थाए पए। साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए। दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी। तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी। आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रह जैसे भवह उदासी। मन मेरा दयाल सेती थिर ना रह। लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ। फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू। पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू। पंच सखी मिल रु

या चतराई तेरा हुक्म भला तुद भावे नानक तां को मिले वडाई साचे नाम समावे रहाव किरत पया परवाना लिखिया बहुड़ हुक्म ना होई जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई जे को दरगाह बहुता बोले नाओ पवे बाजारी सतरंज बाजी।

सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावे कर करनी कस पाई है पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चवाई है बाबा मन मतवारू नाम रस पीवे सहज रंग रच रहिया एनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाउ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जा कौ नदर करे अमृत का व्यापारी होवे क्या मद छूछे भाउ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करे किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारे कहो नानक सुन परथर जोगी खीवा अमृत धारे आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तैं की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारी ता मन रूस न होई रहाओ सकता सिंह मारे पै बगै

कोई गुर के दर्शन सदा सुख होए। गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार। नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही। गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगे ना पीर। जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै। आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गुआए। सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए। सच्ची बाणी पाए भाग कोई।

समाहे सेवड भागी जिन नाम त्याया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह तिन बलिहार है जाऊं दर साचे साचे गुण गाव आपे देवे सहज सुपाए नानक कीमत कहन ना जाए आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी।

आए, हर एकी मत किन बिद होए, हर अपरम पर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिले जान कोए रहाओ, गुरमुख कीमत जाने कोए, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाने कोए, विणनावे दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरे पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, किनकै हम सद लागह पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगहा मिले सुपाए रहाओ, शब्द चाखै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहे।

गुर प्रसाद वसे मन आई, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, आसा महला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सोजी।

सुख पाई, संत संगत मेल हर गुण गाय, नामी नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की बाणी नाम बजाई, नानक महल शब्द कर पाई, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मन मुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाई, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में लाहा हर जप लै जाई, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाई, बिरथा जन्म दूजै लो भाई, नाम मिहूणी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरै बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाई, गर्भ जोन विस्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति जोत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हौ मैं मारी सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरहु फरमाई, बिन शब्द को थाई ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवै ढिल ना पाई, मन मुख परम भुलै संसार, बिन रासी कूड़ा करे व्यापार, बिन रासी वखर पल्लै ना पाई, मन मुख भुला जन्म गो

होए नानक नाम वडाई होए आसा महला तीजा मनमुख झूठो झूठ कमावै खसमै का महल कदे ना पावै दूजह लगी भरम पलावै ममता भादा आवै जावै दुहागणी का मन देख सिंगार पुत्र कलत धन माया चित लाए झूठ मोह पाखंड वकार रहाओ सदा सुहागण जो प्रभ पावै गुर शब्दी सिंगार बनावै सेज सुखाली अन दिन हर रावै मिल प्रीतम सदा सुख पावै सा सुहागण साची जिस साच प्यार अपना पिर राखै सदा उर धार नेड़ै वेखै सदा हदूर।

नानक साच समावै सोए। आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सहज सुपाए। गुर कै भै साचै साच समाए। बिन गुर पूरे भगत ना होए। मन मुख रुन्ने अपनी पत खोए। मेरे मन हर जप सदा त्याए। सदा आनंद हो।

पूरा भंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवनहार नानक बख्शे बख्शनहार आसा महला तीजा गुर साहिर सतगुर सच सोए पूरै भाग गुर सेवा होए सो बूझै जिस आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बनासै अन दिन जागै वेखै सच सोए रहाउ मोह गमान गुर शब्द जलाए।

ना जाए, पूरै सतगुर दित्ती वडियाई, उत्तम पदवी हर नाम समाई, जो किछ करे सो आपे आप, एक घड़ी मह थाप उथाप, कह कह कहना आख सुनाई, जे सौ काले थाए ना पाई, जिनकै पोतै पुन तिन्ना गुरु मलाई, सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहां शब्द वसै तहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचै सहज समाए, नावै जेवड होर धन नाही कोए, जिसनो बख्शे साचा सोए, पूरै शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, हासा महला तीजा, निरत करे बहु वाजे बजाए, इहो मन अंधा बोला है किसे आख सुनाए, अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बलै ना सोजी पाए, गुरमुख भगत घट चानण होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाऊ।

पछान गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी भवजल तरे गुर कै बचन भगत थाए पाए हर जीव आप वसै मन आए हर कृपा करे सतगुरु मलाए निश्चल भगत हर सियो चित लाए भगत रते पिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा घर अठवां काफी महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर कै भाणे सतगुर मिले सच सोझी होई गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई गुर कृपा ते मन वसै ता सदा सुख होई रहाउ इस युग में निरपो हर नाम है पाईऐ गुर विचार बिन नामै जम कै वस है मन मुख अंद गुआर हर कै भाणै जन सेवा करै बूझै सच सोई हर कै भाणै सलाहियै भाणै मन्नै सुख होई हर कै भाणै जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई आसा।

रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ बिन

बाजी हारी हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सुवारी कालयुग मह धड़े पंच चोर चगड़ाए काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए जिसनों कृपा करे तिस सत संग मलाए हमरा हर धड़ा जिन एह धड़े सब गवाए मिथ्या दूजा पाओ धड़े बह पावे प्राया सिदर अटकले अपना अहंकार वधावे जैसा बीजे तैसा खावे जन नानक का हर धड़ा धर्म सब सृष्ट जिन आवे आसा महला चौथा हृदय सुन सुन मन अमृत पाया।

माया मलतारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़िए।

गुरमुख पर गासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास ग्रासा रहा, नाम मैं सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सिखाई, नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मुए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उथापे, नानक नाम देवे हर आपे, आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस करसाई, हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमत सालाही, मारिया काल जम कंकर भुयंगा रहाऊ, हर हर गुरमह भगत रखाई, गुर तुट

अंधा, सब ने फल कर्म किए दुख धंधा, हर हर हर जस जपै वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी।

है जोगी तो तरवाजे बेन गुरमत हर गुण बोलो जोगी एह मनुआ हर रंग पेन जोगी हर देहो मती उपदेश जुग जुग हर हर एको वरतै तिस आगे हम आदेश रहाउ गाव है राग भांत बहु बोल है एह मनुआ खेलै खेल जो वह कूप सिंचन को बसधा उठ बैल गए चर बेल काया नगर मह कर्म हर बोव हो हर जामै हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोग हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लाभ मनुआ पेल आसा महला चौथा कब को पालै घुंगरू ताला कब को बजावै रबाब आवत जात बार खिन लागै हम तब लग समारो नाम मेरा मन ऐसी भगत बन आई हम हर बिन किन पल रह ना सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेले पंच सत गायन कब को राग धुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे तब लग मेरा मन राम गुण गावे तब को नाचे पाम पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम समारे कब को लोगन को पते आवे लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो ता जय जय करे सब कोई आसा महला चौथा सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया घट चानन अज्ञान अंधेरा जाए हर जन नाच हो हर हर त्याए ऐसे संत मिले है मेरे भाई हम जन के धोवे तो है पाए रहाओ हर हर नाम जप हो मन मेरे अन दिन हर लिव लाए जो इच्छो हो सोई फल पाव हो फिर भूख ना लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत भले तुद भावे है जिनकी पत पावे है थाए नानक आख ना राजे हर गुण ज्यो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हरे अपने गुण गाहक वणज लै जाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां की काफी महला चौथा आया मन तुरा हो हम मैं रोई है गुरमुख नाम ते आए अस्थिर हुई है गुरपूरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया रहाउ पूर्व लिखे देहे से आए माया चलन आज के काल तुरहु फुरमाया बिरथा जन्म तिना जिन्नी नाम वसारिया जुए खेलन जग के इहो मन हारिया जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया गुर प्रसादी भुज सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया दर सच्चे सत्यार महल बुलाया रहाउ अंतर नाम निदान गुरमुख पाईऐ अन दिन नाम त्याए हर गुण गाईऐ अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाईऐ हम मैं गर्भ गर्भ आप खुआईऐ नानक आपे आप खुआईऐ गुरमत मन परगास सच्चा पाईऐ राग असावरी घर सोलवा के दो महला चौथा सोधन एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम अन दिन हर नाम कीर्तन करो सतगुर मोको हर नाम बताया हम हर बिन खिन पल रह ना सको रहाउ हमरे सरवण सिमरन हर कीर्तन हम हर बिन रह ना सको हम एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों रह हर सेवा बिन
किन्हू प्रीत लाई दूजा भाव रिद धार, किन्हू प्रीत लाई मोह अपमान, हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद, नानक सिमरत हर हर भगवान, सावरी महला चौथा माई, मोरो प्रीतम राम बताव होरी माई, हों हर बिन खिन पल रह ना सकूं, जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ, हमरा मन बैराग बिरकत भयो, हर दर्शन मीत कै ताई, जैसे अल कमला बिन रह ना सकै, तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई, राख सरन जगदी सुर प्यारी, मोहे शरदा पूर हर गुसाई, जन नानक कै मन आनंद होत है, हर दर्शन निमक दिखाई।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस भौ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी। ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुरदेव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहा, एक फिर है उदासी तिन काम व्यापै। एक संचह गिरी तिन हुए ना आपै, एक सती कहावे है तिन बहुत कल पावे। हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी पुलाय। पंडित मोहे लोभ सवाय, त्रै गुण मोहे मोहया आकाश। हम सतगुरु राखे दे।

कर सेवा सतपुरख मनाया गुरयाणी घर मह ता सर्ब सुख पाया बत्ती ही सलखणी सच संतत पूत आज्ञाकारी सुगड़ स्वरूप इच पूरे मन कंत स्वामी।

वख वख परमावे घर की नायक घर वास ना देवे जतन करूं पुरजाई परेवे रहाव तुरकी भेजी आई।

दुए मनुख पहचावो, तृतीय मता किस करूं उपाया, मैं सब किस छोड़ प्रभ तुही ते आया, महा आनंद अचिंत सह जाया।

अन्युआ प्रदेश झाग सौदे कौ आया वस्त अनूप सुनी लाभाया गुण रास बन पल्ले आनी देख रतन इहु मन लपटानी सहा व्यापारी द्वारे आए।

माना कर मस्तक धार राखियो कर अपना क्या जान है एह लोग अजाना रहाव सुहाग हमारो अब हुन सोहयो कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो आंगन मेरा सोभा चंद निसबासर प्रिय संग आनंद वस्त्र हमारे रंग चलूल सगल आभरण शोभा कंठ फूल प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान दुष्ट दूत की चूकी कान सद कुचिया सदा रंग माने नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने कहो नानक जो पिरह शिंगारी थिर सुहागन संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उन्मुख कर परना

तनते मन निर्मल हर हर गुण गाय पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाय तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलो सहज सुपाय रहाओ धावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकड़े।

परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावे निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवे नाले लए सदावे अनहुंदा अजगर भार उठाए।

मरना, मुआ होए तिस निश्चल रहना, जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाओ, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटै त्रिकुटी तिस निज घर वासा, ऊंचा चढ़ै सो पवै पयाला, तरन पड़ै तिस लगै ना काला, भ्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भये निहाल, आसा महला पंजवां, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान सा

चौपदी एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पाल दिन समो को कब हो ना बिहावे दर्श

पर चहो जुगह समाने रैन पई तब अंत ना जाने पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया हसा महला पंजवा हर सेवा मह परम निदान हर सेवा मुख अमृत नाम हर मेरा साथी संग सखाई दुख सुख सिमरी।

सुखन दान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई पाए न जल जल नहीं डूबे। संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाओ तोट न आवे नखुट न जाई। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवार नाम गहना। आसा महला पंजवां जैसे किरसान बोवे किरसानी काची पाकी बाड परानी। जो जन्मे सो जानहु मुआ गोविंद भगत अस्थर है किया रहाउ। दिन ते सर पर पौसी रात रैन गई।

कहो नानक गुण गाइयह नीत, मुख उजल हुए निर्मल चीत। आसा महला पंजवा, नौ निद तेरह।

त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल।

गुर पूरी बणत बनाई, नानक भगत मिली वडियाई। आसा महला पंजवां, गुर कै शब्द बनावो।

रहाउ त्रिपत अगावन साचे नाय अठ सठ मज्जन संत तुराय सब मैं जानू करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभमान नानक को गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास भई मत पूरी तांते बिनसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंधकूप में निकस

हर रस पीवै अलमस्त मतवारा, आन रसा सब हो शेरे रहाओ। हर रस की कीमत कही न जाए, हर रस साधु हाट समाए। लाख करोरी मिले ना किहे, जिसे प्राप्त तिस ही देह। नानक चाख पये बिस्माद, नानक गुरते आया साद। ईत ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीता हर रस माहे। आसा महला पंजवां, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे। छुटकै दुर्मते अपनी धारी, होए नमाणी सेव कमावह। ता प्रीतम होवह मन प्यारी, सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

ही ब्योहारा भाग्यामान भगत हुए तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी आसा महला पंजवा दो पदे पई प्राप्त मानुख देवरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ जप तप संयम धर्म ना कमाया।

बैठत उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास ग्रासा रहाऊ। राख राख सरन प्रभ अपनी।

आप सहाये गुण निदान नित गावे नानक सहसा दुख मटाई आसा महला पंजवां औखद खायो हर को नाऊ सुख पाए दुख बिन सिया थाऊ ताप गया बचन गुरपूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाऊ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवां पांचत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मद मत सर, ए खेलत सब जुऐ हारे। सत संतोख दया धर्म सच, एह अपने ग्रह भीतर वारी। जन्म मरण चूके सब भारे, मिलत संग भयो मन निर्मल।

ग्रह मंदर महला जो दिसह ना कोई संगार। जब लग जीव है कली काल मह जन नानक नाम समार। आसा घर तीजा महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राज मिलख जोगन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी बहुत दरबहस्ती अर घोड़े।

दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने अपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी।

0: कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा।
2: राग आसा कर पंजवां महला पंजवां,

जन्म जन्म की मल धोवै पराई अपना कीता पावै इहां सुख नहीं दरगाह ढोई जमपुर जाए पचावै निंदक अहला जन्म गवाया पहुँच ना साकै काहू बातै आगे ठौर ना पाया रहाऊ।

बाहर कोए अंतर मन मैला दोए ठौरे अपने खोए इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया आगे मुस मुसरोए। गोविंद भजन की मत है होरा वर्मी मारी साफ ना मरी नाम ना सुनी डोरा रहाउ माया की किरत छोड़ गवाई भगती सार ना जाने वेद शास्त्र को।

कूड कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाले आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचे आप निवारी पंच जना ले वसगत राखे मन मह इकंकारी तेरा जन नृत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल घुंगरू अनहद शब्द।

सुनावै कर संग साधु चरण पखारै संत धूर तन लावै मन तन अर्प धरे गुर आगै सत पदार्थ पावै जो जो सुने पेखै लाए श्रद्धा तड़का जन्म मरण दुख भागै।

आया रसक रसक बिगसानारी आसा महला पंजवा बंधन काट बसारे औगन अपना बिरद समारिया होए कृपाल मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया गुरसिख राखे गुरु गोपाल काढ़ लिए महापव जलते अपनी नदर निहाल रहाओ जां कै सिमरन जमते छुटिया हलत पलत सुख पाईऐ सास ग्रास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाईऐ।

मन की होर किस पह आख सुनाइए, बिन नावे सब जग बोराया, नाम मिले सुख पाइए।

गुर काढ़ लिए निरपव भय सगल भव मिटिया राखे राख न हारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार

आ तिसको बेपना को भाखै ओहो सुख ओहा वडियाई। जो प्रभु जी मन पाणी तू दाना तू सद मेहरवाना नाम मिलै रंग माणी।

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्ण ना साको ताकि उपमा जात ना कहे ओरी। काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बने ओरी। महामंत्र गुरु हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुका ले हो रहा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज धरी कान कड़न ते छूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया, आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहा मह फलिया, ऐसा करहु बीचार ज्ञानी, जाते पाईए पद निर्बानी, आस पास बिखुआ के कुंटा, बीच अमृत है पाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

तेरा ओले भ्रम के परदे सतगुरु खोले रहाउ हुक्म बूझ रंग रस माणी सतगुरु सेवा महानिर्वाणी जिन तू जाता सो गिरस्त उदासी।

शास्त्र भेद पाप पुण्य विचार नरक सुर्ग फिर अवतार गिरस्त मह चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी कौ जंजार प्रभ कृपा ते मन वासे आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर की।

चित आवे सो नाम जपै जो जन तुद पावे रहाउ। तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत टह दुख डेरा। हुक्म बूझै सोई परवान साच शब्द जाका निशान। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया भणत नानक मेरा मन सुख पाया। आसा महला पंजवां जहां पठाव हो तह तह जाई।

सतगुर अपना सद सदा मनावहु रहाउ। सतगुर का सत शब्द कमावहु, थिर कर बैठे प्रभ अपना पावहु। पर का बुरा

नाम साध संग मन सोवत जागे तब प्रभ नानक मीठे लागे आसा महला पंजवा एको एकी नैन निहारो सदा सदा हर नाम समारो राम रामा रामा गुण गावो संत प्रताप साध कै संगे हर हर नाम त्यावो रे रहाओ सगल समगरी जा कै सूत परोई घट घट अंतर।

ये मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाउ। बिनस्यो मन का मूर्ख तीठा, प्रभु का पाणा लागा मीठा। गुरपूरे के चरण गहे, कोट जन्म के पाप लहे। रतन जन्म एहो सफल पया, कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवा, सतगुरे अपना सद सदा संहारे। गुर के चरण केस संग चारे।

आपे पेड़ बिसथारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पेखों एक ओही

मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कतह ना डोले, कहो नानक जो राचे नाई, हर माला तां कै संग जाई, आसा महला पंजवा, जिसका सब किस तिसका होए, तिस जन लेप ना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करै सोई पा।

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मुका फिर पछताना, त्रिहो गुण में वरतै संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो नानक।

जानी पोर पया बहोर पछतानी प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहां करो री रहाओ कर्म है अमृत आनन सारेउ खिसर गयो भूम पर डारेउ साध मोहे लादी अहंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे।

उनकै संग हम तुम संग मेल, उनकै संग तुम सब को लोरै, ओस बिना को मुख नहीं जोरै, ते बैरागी कहां समाए, तिस बिन तुही दोहे रीरी रहाओ, उनकै संग तू ग्रह महमाहर, उनकै संग तू होई है जाहर, उनकै संग तू रखी पपोल, ओस बिना तू छुटकी रोल, उनकै संग तेरा मान महत, उनकै संग तुम साक जगत, उनकै संग तेरी सब बिद थाटी।

उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांधे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना हम

गर्भ मोह तज हूं रेन, उनकै संग देखो प्रभ नैन। निमक निमक एही आराधो, दिन सरहन ए सेवा साधो। भये कृपाल गोपाल गोबिंद, साध संग नानक बख्शिंद। आसा महला पंजवा, प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

प्रभ की प्रीत भय सगल निदान, प्रभ की प्रीत हृदय निर्मल नाम, प्रभ की प्रीत सद शोभावंत, प्रभ की प्रीत सब मिटी है चिंत, प्रभ की प्रीत एह भव जल तरै, प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभ की प्रीत सगल उधार है, प्रभ की प्रीत चलै संगार है, आपो कोई मिले ना भूलै, जिस कृपाल तिस साध संग भूलै।

संबाहा निकसिया फूक ता हुए गयो स्वाहा। ऊचे मंदर महल अररानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अरतियां मोहे पच।

जिस खसम दयाल आसा मोहल्ला पंजवा इन स्यों प्रीत करी कानेरी जो मिली है तो वदे वधेरी गल चमड़ी जो छोड़े नाही लाग छुट्टो सत।

आठ घाट ग्रह बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुर प्रसाद में खोटी डीठी, अगरक उसके वडे ठगाऊ, छोड़ह नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन भया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

सब लिखते लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ता कै अनहद तूरा, आसा महला पंजवा दुपदा एक, साधु संग सखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम, बुझ गई तृष्णा हर जसै अगानी, जप जप जीवा सारग पानी, करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवे हर भरे भंडार, तोट न आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जा

सूख सहज मेरा धन सोहागा, कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा, आसा महला पंजवा, माथे त्रिकुटी दृष्ट क्रूर, बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर, ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ, पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ पवे सब तरना, से उबरे जे

बाहां पकड़ हम राखा, आसा मोहल्ला पंजवा, सर्ब दुख जब बिसरह स्वामी, इहां उहां कामना प्राणी, संत तृप्ता से हर हर त्याए, कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ, संग होवत को जानत दूर, सो जन मरता नित नित चूर, जिन सब किस दिया तिस चितवत नाही।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कल मल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई। रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्र है मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वस्या हर का नाम, नानक तिसी ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जां की सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है। रहाओ जां का दान नुखूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जां की बख्श न मेटे कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जां कै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गही निरभउ पद पाई, सास सास सो गुण निद गाई, दूर ना होई कतहूं जाई, नदर करे ता हर हर पाई, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगे हर धन रास। आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की सरनाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी।

गुरबाणी सखी आनंद गावे साचे साहिब कह मन भावे वदी वेल बहु पीढ़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली।

सुनी सच्चे तिस धणी सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए पेख मस्ताक भई

भाव भोग है भोग अनेक गिण नावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया कपड़ भोग सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शार सर पर चालना महा बिखम संसार बिरले पेखिया छूटन।

हर कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रैन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोई सर्व रहया भरपूर सच्चा।

सगल रोग राखन हार अपार राखै अग्न माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तपत जाए सुख सहज आनंद घना नानक जन धूरा कार्य सगले सिद्ध भए

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर हुए रस कास सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है।

ठाकर तू ही प्रभ ता केवड भागा ओहो सहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा करन करावन सगल बिद सो सतगुरु हमारा रहाओ दूजा नाही और को तांका पहो करिये गुर सेवा महल पाईये जग दुत्तर तरिये दृष्ट तेरी सुख पाईये मन माहे निदाना जाको तुम कृपाल पये सेवक से परवाना अमृत रस हर

हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ परता कह सुमानिया एह शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी एहो तंबोला खाएरी गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाएरी आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेटै हर रायरी तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपारी साई सुहागण नानका जो पाणी करतारी आसा महला पंजवां दीगण डोला तऊ लो

पंथ सुमारी नाम दृढ़ गुरमन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवां जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताइए अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की उठ जासी मोहत चसाहा रे मन लेखे चल है लेखे बैस है लेखे लेंदा साहा सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उटाहा आसा महला पंजवां अपुष्ट बात ते भई सीधरी दूत दुष्ट सजनई अंधकार मह रतन परगासेउ मलीन बुद्ध हशनई जो कृपा गोविंद भई सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुरु मिली रहाओ मोहि किरपन को कोई ना जानत सगल भवन प्रगटई संग बैठनो कहीं ना पावत हुन सगल चरण सेवी आड़ आड़ को पिरत ढूंढते मन सगल त्रिशन बुझ गई एक बोल पी खवतो नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कवन वखाने अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर सरनई आसा महला पंजवां रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला तोटे को बेग ताया सस्त वखर तू

गंधण वहन सुन है उर जावे है, नाम लैत अलकाया, निंद चिंद को बहुत अमाहयो, बूजी उल्टाया, पारतान पारतान पारती निंदा, अखाद खाहे हरकाया, साच तर्म स्यो रुच नहीं आवे, सत सुनत शोहाया, दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हर नाया, नानक आहे सरन प्रभ आयो, राख लाज अपनाया, आसा महला पंजवा, मिथ्या संग संग लपटाई, मोह माया कर बांधे, जह जानो सो चीत ना आवे, अहम बुद्ध भय आंदे, मन बैरागी क्यों ना अरादे, काच कोठरी माहे तू बसता, संग सगल बिखे की ब्यादे रहाओ, मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पलखिन सीजे अर जादे, जैसे मीठे साध लुभाए, झूठ धंद दुर्गम दे, काम क्रोध अर लोभ मोह, एह इंद्री रस लपटा दे, दीप वारी पुरख बधाते, बहुर बहुर जनमाते, जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुरमेल सब सुख लादे, कहो नानक दिन रैन त्यावो, मार काढ़ी सगले अपादे, इउं जपियो भाई पुरख बधाते, भयो कृपाल दीन दुख भंजन।

कारण कोट दिन से दुख पावे है, करी मोह तरंग मान है, फिर बहुर बहुर पछतावे है। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ। पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तूमर, जैसा संग बिसियर स्यों है रे, तैसो ही एहो पारग्रहो। बैरी कारण पाप करता, बस्त रही आमाना, छोड़ जाहे तिन ही स्यों संगी, साजन स्यों बैराना। सगल संसार एह विद व्याप्यो, सो उबरेओ जिस गुर पूरा, कहो नानक पाव सागर तरेओ। पये पनीत शरीरा, आसा महला पंजवा, दोपदे लूक कमानो, सोई तुम पेखेओ। मूड़ मुग्ध मुकरानी, आप कमाने कौले बांधे, फिर पाछे पछतानी। प्रभ मेरे सब विद आगे जानी, भ्रम के मूसे तू राखत परदा, पाछे जी की मानी रहाओ। जित जित लाए तित तित लागे।

रहाउ, तिस सेवक कै हो बलिहारी, जो अपने प्रभु भावै तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिस नानक परसन आवै, आसा घर ग्यारवां महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ भेख दिखावै बहु बिद, जैसा है ओह तैसारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम भीतर, सुखै नाही परवेश सारी, साजन संत हमारे नीता, बिन हर हर अनीतारी, साध संग मिल हर गुण गाई, एहो जन्म पदार्थ

तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते अवर

हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमुख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे।

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल सियान।

भौजल लंघी है, सदा हर गुण गाओ, जन्म मरण निवारी है, दुख ना जम पुर होए, नाम निदान सोई पाए, कृपा करे प्रभ सोए, एक टेक आधार एको, एक का मन जोर, नानक जपिया मिल साध संगत, हर बिन अवर ना होर, आसा महला पंजवा, जियो मन तन प्राण प्रभ के, दिए सब रस भोग।

महा दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिय नीत सास सास त्याय

नाम चराव हो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन मह राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरा हृदय होए सहाई आप।

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रवतारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव मल मूत मूड़ जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता।

प्रसाद, सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे, रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी, ते पनीत संगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते, तिनके कुल उधारे, कोई ना जाने कोई ना माने, से परगट हर द्वारे, कमन उपमा देओ कमन वडाई, नानक खिन खिन वारे, आसा महला पंजवा, बावर सोए रहे, रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते, मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरी मिले प्रेम पिरी आसा महला पंजवा।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावे लोभ बिखिया बिखै लागे हर वित चित दुखाही।

निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लेख ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए।

प्रभ त्यावो भ्रम पीत जीत मटावो निद नाम नानक मोर आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल का।

पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवां हरख सोग बैराग आनंदी खेल रीद खायो रहाओ खिनहु भय निरभय खिनहु खिनहु उठ तायो खिनहु रस भोगन खिनहु खिनहु तज जायो खिनहु योग ताप बहु पूजा खिनहु परमायो खिनहु कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो।

नानक प्रभ पाया मेरे मना, सावरी महला पंजवा, मिल हर जस गाई है हां, परम पद पाई है हां, वा रस जो विदे हां, ताको सगल सिदे हां, अन दिन जागया हां, नानक बड भागया मेरे मना, रहाओ संत पग धोइए हां।

नाई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझै ता सच निहाला, अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रे पवन सूजै आप गुआवै, बाणी बूझै सच सुवावै, शब्द विचारे एक लिव तारा, नानक धन सवार नहारा, आसा महला पहला, लेख असंख लिख लिख मान, मन माने सच सुरत बखान, कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार, लेख असंख अलेख या

जीवन मुक्त मन नाम वसाए, गुरमुख होए ता सच समाए। जिन तरसा जी गगन आकाश, जिन सब थापी।

आचारी जग पंडित बिरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिरे अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन को।

है दुख कोई, सोरो वै जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रब सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना।

दुख सुख पर हर सहज सुचीत, तन मन सौंपो कृष्ण परीत। भीतर एक अनेक असंख, कर्म धर्म बहु संख असंख, बिन पै भगती।

भ्रांत सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरी जै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मानै मन।

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचार।

क्या लहस निदान, जिसका अन तन सहज ना जाना, परम भुलाना फिर पछताना, गल पाही बौरा बौराना, बूढ़त जग देखिया तो डर भागे, सतगुर राखे से वड भागे।

कहा वह बीते बिन नावै मन झूठ अनीते कहाँ चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तास्ते खोजत पावहु सहज हरे रहाउ काम क्रोध मन मोह शरीरा लाभ लोभ।

ग्रास इकत थाए किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख एहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन भय निरंकारी एहो मन निर्मल दर घर सोई गुरमुख भगत भाओ धुन होई एहनस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो कब याद जुगाद राम रसायन एहो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के

तू आप भलावहि नाम विसार, तू आपे राखहि कृपा धार। रोग भरम भेद मन दूजा, गुरबिन भरम जपहि जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देखहि, बिन गुर शब्द जन्म के लेखहि। देख अचरज रहे बिस्माद, घट घट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जा की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की स

मुख तिस लागे। जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग। नानक मुक्त भये हर रंग, आसा महला पहला एक तुकी। गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने।

पास एक लाख लहन बैठिया लख लहन खड़िया गरी सुहारे खांदिया मानन से जड़िया तिन गल सिलका पाइया टुटन मोत सरिया धन जोबन दोए वैरी होए जिन्नी रख।

जाननी काट ब्रह्म लुकाना। एक तपसी बन मह तप कर है नित तीरथ वासा, आप ना चीन है तामसी काहे भये उदासा। एक बिंद जतन कर राख दे से जती कहावे है, बिन गुर शब्द ना छूट ही भ्रम आवे है जावे है। एक गिर ही सेवक साधका गुरमति लागे, नाम दान इशनान दृढ़ हर भगत सो जागे। गुर ते दर घर जानी है सो जाए सियाण, नानक नाम ना विसरे साचे मन माने। आसा महला पहला मनसा मन है समाए ले, भवजल सच तरना।

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसै हौ मैं बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूस हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जन्म है के तारा की है

सार सच ना पाया, क्या भविया क्या ढूंढिया, गुर शब्द दिखाया, ममता मोह विसर्जिया, अपने घर आया रहाऊ, सच मिले सचिया।

हुक्म पछाणहु हुक्मी वजहो लिखाए आया जानिए लाहा पल्ले पाए हुक्म सियाणिए हुक्मी पैंदा जाए दरगाह पाणिए।

एक आधार तू दर सेवक दरवान दर्द तू जानही भगत तेरी हैरान दर्द गवावही दरगाह नाम हदूर गुरमुख जान सी वेला सच परवान शब्द पछाण सी सत संतोख कर पाओ तोसा हर नाम से।

अधारा अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम वरारे नानक नाम ना विसरै पूरा गुर तारी आसा महला तीजा अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सात वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्ब वडाणी तां के चरण जपै जन नानक बोले अमृत बाणी रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण अधारी ताके रूप न जाही लखने क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोग ही अंतर चारी तेरिया खानी कर्म हुए ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या तू करे प्राणी जा को नदर करह तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जानी जा तुद पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे आणी चारे वेद ब्रह्मे कौ दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताका हुक्म न बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगह जुगह के राजे किए गाव है कर अवतारी तिन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब साचा।

घर घर पाया भगती भरे भंडारा गुरमुख नाम त्याई है बूझे विचारा गुरमुख भगत सलाहा है अंतर शब्द अपारा गुरमुख सुख उपजे दुख कदे ना होई गुरमुख हम मैं मारी है मन निर्मल होई सतगुर मिले है आप गया त्रे पवन सोजी पाई निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मलाई पूरा गुर समझाया मति उत्तम होई अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई पूरा सतगुर ता मिले जा नदर करे किले विक पाप सब कटी है फेर दुख बिघन ना होई अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाई नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाई आसा महला तीजा सुन मन मन वसाए तू आपे आए मिले मेरे भाई अन दिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई एको नाम त्याए तू सुख पाव है मेरे भाई हों मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाउ इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे विण सतगुर पाई ना जाए पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ ना पाए आपै थै सब रखियोन किछ कहण ना जाई आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई जी जंत सब तिस दे सबना का सोई मंदा किसनो आखी है जे दूजा होई इको हुक्म वर्तदा एका सिर कारा आप पवाली दितियन अंतर लोभ वकारा इक आपे गुरमुख कीतियन बूझन विचारा भगत पियो नानो बख्शियन अंतर भंडारा ज्ञानिया नो सब सच है सच सोजी होई कोय भलाए किसे दे ना भुलनी सच जानन सोई कर्म है पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वास।

बाहर किश नाही गुर प्रसादी पाई है, अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाई है पाई। अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाओ, हर का गाहक हो है सो ले पाए रतन विचारा। अंदर खोले दिव दिष्ट देख मुक्त भंडारा, अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा। मन चिंदिया पल पाए से फिर हुए ना फेरा, पारखियां वत संभाल ले गुर सोजी होई। नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावे कोई, बाहर भाले सो क्या लह वत करे अंदर पाई। भरमे भूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई, घर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जाई। चोरे वांगू पकड़ी है बिन नावे चोटा खाई, जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई। अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई, आपे दान करे किसे आखी है आपे दे बुझाई। नानक

भी आगे जुग जुग प्रगट होए ए मन रूड़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूड़ी बाणी जे रपे ना एहो रंग लह ना जाए रहाव हम नीच मैले अत अभमानी दूजे पाए विकार गुरपारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार बिन गुर कोए ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कह पै पाए जो रते सिफती सच समाओ पै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए बिन पै कर्म कमावनी झूठे ठाओ ना कोई जिसनो आपे रंगे सो रपसी सत संगत मिलाए पूरे गुर ते सत संगत उपजे सहजे सच सुभाए बिन संगती सब ऐसे रह जैसे पास ढोर जिन कीते तिसे ना जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण विहाज है औगण विकण है गुर कै सहज सुभाए।

ठीक है। बहुविध श्रेष्ठ उपाय हुक्मे कार कराईंदा, दूजा किस कही है भाई, बुझना अबुझना तुद किया, ए तेरी सिरकार, एक ना बख्शे मेल लह, एक दरगाह मार कड्डे कूड़ियार, एक धुर पवित पावन है तुद ना मेलाए, गुर सेवा ते सुख उपजे, सच्चे शब्द बुझाए, एक कुचल कुचील विखली पते, नाम हो आप खुआए, ना उन सिद्ध ना बुद्ध है, ना संजमी फिर है उतवताए, नदर करे जिस अपनी तिस नू भावनी लाए, सत संतोख एह संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए, लेखा पढ़ ना पहुंची है कत कहने अंत ना पाए, गुर ते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए, इहो मन देही सोध तू गुर शब्द वीच।

रहाओ। एक पिरह दूर ना जाननी, दूजे परम भलाए, क्यों पाए निडोहागनी, दुखी रहन विहाए। जिनकै मन सच वसिया, सच्ची कार कमाए, हन दिन सेवह सहज स्यों, सच्चे माहे समाए। दोहागणी परम भलाइया।

शब्द रहे आपरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया किन्नी एक मन त्याया सदा रवह पेरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाई शब्द हम मारिए सच्चे महल सुख पाए।

सच रह सच्चे सच समाहे बिन शब्द सुनिए ना देखिए जग बोला अन्ना परमाए बिन नावे दुख पाए सी नाम मिले तिसे रजाए जिन बाणी स्यों चित लाया से जन निर्मल परवान नानक नाम तिन्ना कदे ना विसरे से दर सच्चे जान। आसा महला तीजा शब्दों ही भगत जाप दे जिनकी बाणी सच्ची होए विचों आप गया नाहु मन्या सच मलावा होए हर हर नाम जन की पत होए सफल तिन्ना का जन्म है तिन माने सब कोई रहाऊ हऊ मैं मेरा जात है अत क्रोध अभिमान शब्द मरे ता जात जाए ज्योति ज्योत मिले भगवान पूरा सतगुर भेटिया सफल जन्म हमारा नाम नवे निध पाया परे अखुट भंडारा आवह इस राशि के वापारिये जिन्ना नाम प्यारा गुरमुख होवे सो धन पाए तिन्ना अंतर शब्द विचारा भगती सार ना जाननी मनमुख अहंकारी तुरों आप खुआयन जुए बाजी हारी बिन प्यारे भगत ना होवे ना सुख होए शरीर प्रेम पदार्थ पाईए गुर भगती मन धीर जिसनु भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार हृदय को नाम वसे हम मैं दुबदा मार भगतां की जात पात एको नाम है आपे लए सवार सदा सरनाई तिसकी ज्यों पावे त्यों कार्ज सार भगत नराली अल्लाह दी जापै गुर विचार नानक नाम हृदय वसै पै भगती नाम सवार। आसा महला तीजा अनरस मह भुलाया बिन नामै दुख पाई सतगुरु पुरख ना भेट्यो जे सच्ची बूझ बुझाए ए मन मेरे बावले हर रस चख साध पाई अनरस लागा तू फिरह बिरथा जन्म गवाई रहाओ इस युग में गुरमुख निर्मली सच नाम रह लिवलाई बिन कर्मा किश पाईए नाही क्या कर कहिया जाई आप पछाण है शब्द मर है मनहु तज विकार गुर सरनाई भज पए बख्शे बख्शनहार बिन नामे सुख ना पाईए ना दुख विचों जाए इहो जग माया मोहे व्यापिया दूजे भरम भुलाए दुहागनी पिर की सार ना जानही क्या कर करह श्रींगार पन दिन सदा जलदियां फिरह सेजै रवै ना पतार सुहागनी महल पाया विचों आप गवाए गुर शब्दी शिंगारियां अपनी सह लईयां मलाई मरना मनहु विसारिया माया मोह गुबार मनमुख मर मर जम है पी मर है जमदर होवे खुआर आप मलायन से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम सुमाने मुख उजली तित सच्चै दरबार। आसा महला पंजवां अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गुआए इन बिद नगर बुठा मेरे भाई दुरत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई रहाव साच धर्म की कर दीनी वार हरहे मुहकम गुर

सहज सुख के सब हाट, साहा व्यापारी एकै थाट, जे जिया दन को लय ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप, वखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख घर आवो, सतगुर साहु सिख बन जारी, पूंजी नाम लेखा साच संवारे, सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव, अब चल नगरी नानक देव। असावरी महला पंजवां घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत, निर्मल साची रीत, रहाउ दर्शन की प्यास घणी, चितवत अनक प्रकार, करो अनुग्रह पार ब्रह्म, हर कृपा धार मुरार, मन परदेसी आया, मिलियो साध कै संग, जिस वखर कौ चाहता, सो पायो नामह रंग, जेते माया रंग रस, बिनस जाही खिन माहे, भगत रते तेरे नाम स्यों, सुख पुंचह सब ठाए, सब जग चल तो पेखी है, निश्चल हर को नाम, कर मित्राई साध स्यों, निश्चल पावह ठाव, मीत साजन

साथ चरण कमल बोहित पै लग सागर तरयो ते पेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद पावे सो भला तेरे पाने कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद आसा महला पंजवा बिरहड़ी घर चौथा संता की जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रभ सिमरिया प्यारी दर्शन कौ बल जाओ जिस सिमरत दुख बिसरै।

सुख सिंगार बिठिया के फीके तज छोड़े मेरी माए काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरनी पाए जो जन राते राम स्यो प्यारे अनत ना काहू जाय हर रस जिन्नी चाखिया प्यारी तृप्त रहे आगाय अंचल गहया साध का नानक पैसा गिर पार पराई जन्म मरण दुख कटिया प्यारी।

सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारी दूजी नाहीं जाई। जो तू कराम है सो करी प्यारे अवर किस करन ना जाई। दिन रैन सब सुहावने प्यारी जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारी तुर मस्तक लेख लखाई। एको आप वर्तदा प्यारी घट घट रहिया समाई। संसार कूप ते उधर लह प्यारे नानक।

सत्य सोए श्रेष्ठ जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिन का लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना।

जलिया जमराज के ही रूह आए माया कै संगल बंद लया खखै खुंदकार साहा आलम कर खरीद जिन खर्च दिया बंधन जा कै सब जग बांधिया अवरी का नहीं हुक्म पया गगै गोए गाए जिन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया कड़ भांडे जिन आवी साजी चाड़न वाहै तई किया कगै काल सेवक जे कालै शब्द गुरु कै लाग रहै बुरा भला जे सम कर जाने इन वेद साहिब रमत रहै चचै चार वेद जिन साजी चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी भोगी पढ़िया पंडित आप थिया सच्चै छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाए फुलाइन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जजै जान मंगत जन जाचै लख चौरासी भीख पविया एको लेवै एको देवै अवर न दूजा मैं सुनिया छजै चूर मरहो क्या प्राणी जो किस देना सो दे रहिया दे दे वेखै हुक्म चलाए।

आ सब थाई एक वस्या मन माही तत्ते तंच करहू क्या प्राणी घड़ी के मोहत के उठ चलना जूए जन्म ना हारो अपना भाज पढ़ो तुम हर सरना ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा चित लागा से जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डड्डे दंप करहु क्या प्राणी जो किश हुआ सो सब चलना तिसे सरे वो ता सुख पावहु सर्व निरंतर राव रहया तड्डे ताहे उसारे आपे ज्यो तिस पावे तिवें करे कर कर वेखै हुक्म चलाए तिस निस्तारी जा को नदर करी नाणे रवत रह घट अंतर हर गुण गावे सोई आपे आप मलाई करता पुनरप।

प्राणी तिसह त्यावहु जे अमर होवा तिसह त्यावहु सच समावहु ओस विटोहु कुर्बान किया हा है होर न कोई दाता जी उपाय जिन रिजक दिया हर नाम त्यावहु हर

कराई सब किस जाने नानक शायर इव कहिया राग आसा महला तीजा पट्टी एक ओंकार सतगुर प्रसाद अयो अंगे सब जग आया काके कंगे काल भया

दारू रुपया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज भया कक्कै काम क्रोध परमयो हो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़ है गुण है तू बहुत पकार है विन बूझे तू डूब मुआ तत्तै तामस जलियो हो मूड़े थत्तै थान पृष्ठ हुआ कग्गै कर कर फिर है तू मूड़े दद्दै दान ना तुद लया पप्पै पार ना पवही मूड़े परपंच तू

तेरा अंत ना जाई लखिया अकथ ना जाई हर कथिया नानक जिन को सतगुर मिलिया तिनका लेखा निबड़िया राग आसा महला पहला शंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद जोबन बालड़िए मेरा पिर रलिया ला राम तन पिर नेहो कणा रस प्रीत दयाला राम तन पिरह मेला हुए स्वामी आप प्रभ कृपा करी सीजा सुहावी संग पिरकै सात सर अमृत भरी कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन अमाहो मुंद सहज सुलो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर पावै प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै तौ गुण पछाण है ता प्रभ जान है गुण है वस अवगुण नसै तुद बाज एक तिल रह ना साका कहण सुनन ना तीजे नानका प्रियो प्रियो कर पुकारी रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा पिर बन जारा राम हर नामो वणन जड़िया रस मोल अपारा राम मोल अमोलो सच कर ढोलो प्रभ भावै ता मुंद भली एक संग हर कै करह रलिया औ पुकारी दर खली करन कारण समरथ श्री धर आप कारज सारे नानक नदनी तन सुहागण शब्द अब साधारे हम कर साचा सोहिलड़ा प्रभ आयड़ी मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लियड़ा दीता राम अपना मन दिया हर वर लिया ज्यों भावे त्यों रावे तन मन पिर आगै शब्द सुभागै घर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाईऐ बहु चतुराईऐ भाई मिले मन पाणी नानक ठाकुर मीत हमारी हम नाही लोकाणी आसा महला पहला अनहदो अनहद वाजै रुण चुन कारी राम मेरा मनो मेरा मन राता लाल प्यारी राम पन दिन राता मन बैरागी सुन मंडल घर पाया आद पुरख अपरंपर प्यारा सतगुर अलख लखाया आसन बैसन तिर नारायण तित मन राता विचारी नानक नाम रते बैरागी अनहद रुण चुन कारी तित अगम पुरे कहो कित बिद जाइए राम सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम सच शब्द कमाइए निज कर जाइए पाइए गुणी निदाना तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना परधाना जप तप कर कर संजम थाकी हठ निग्रह नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए गुर सागरो रतनागर कित रतन कनेरे राम कर मजनो सप्त सरी मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नहाए जा प्रभ भाई पंच मिले विचारी काम क्रोध कपट बिखिया तज सच नाम उरतारी हौ मैं लोभ लहर लभ थाके पाए दीन दयाला नानक गुर समान तीर्थ नहीं कोई साचे गुर गोपाला हौ बन बनो देख रही त्रिण देख सबाया राम त्रे भवनो तुझह किया सब जगत सबाया राम तेरा सब किया तू ठिर थिया तुद समान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन किस सालाही अण मंगिया दान दीजै दाते तेरी भगत भरे भंडारा राम नाम बिन मुक्त ना होई।

आदि पुरुष अपरम्परु तारे नाम अग्मय गोचर अपर अपारा पार ब्रह्म परदानो आदि जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुकट क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाने अहनस नाम ते आई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आदि पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण पर हर करनी सारी दर सच्चे सत्यारू आवन जावन ठाक रहाए गुरमुख तत विचारू साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन पर गासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन राव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हूं मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा महला पहला शंत घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सबनी थाई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारन हार जियो दुख बसारन हार स्वामी कीता जा का होवै कोट कुटंतर पापा केरे एक घड़ी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे विचार जियो तू सबनी ताई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहू ना आवै हार जियो ते कबहू ना हार है हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावै गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोह कुर्बान जियो ताकि सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाईऐ मान जियो हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै का लीजै हर उत्तम पुरख प्रधान जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया हों तिसै विटोह कुर्बान जियो नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै है मन है से जिन जाहि जियो तिन फल तोट ना आवै जहां तिस पावै जे जुग केते जाहि जियो जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल टूट ना आवै तिन जरा ना मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करहै से सूकह नाही नानक पीर ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै।

की फासह जम जाली राम, मछली वछुनी नैण रुनी, जाल बदक पाया, संसार माया मोह मीठा, अंत परम चुकाया, भगत कर चित लाए हर सिउ, छोड़ मनु अंदेसिया, सच कह नानक चेतरे मन, जीअड़िया परदेसिया, नदियां वहा विछुनिया, मेला संजोगी राम, जुग जुग मीठा विस भरे, को जाने जोगी राम, कोई सहज जाने हर पछाण, सतगुरु जिन चेतिया, बिन नाम हर के भरम भूले, पचह मुगध अचेतिया, हर नाम भगत नारद साचा।

का शब्द संभाले, साथ तेरे सो सहु सदा है, एक खिन हर नाम संभाले, जन्म जन्म के तेरे पाप कटे, अंत परम पद पावे, साचे नाल तेरा गंध लागे, गुरमुख

धुनि उपजै जित शब्द जगत थम रहाया तह अनेक वाजे सदा आनंद है सच्चे रहे आसमाए यों कह नानक सतगुर मिले है तावत थमिया निज

ना सहो जाण है। मरण जीवन की सोजी होई, गुर प्रसादी एको जाण है। ता दूजा भाव ना होई, मन शांत आई बजी बधाई।

कथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जीवनो मैं जीवन पाया गुरमुख पाए राम हर नामो हर नाम देवै मेरे प्राण वसाए राम हर हर नाम मेरे प्राण वसाए सब संसार दुख गवाया अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया पवित्र परम पद पाया अनहद धुन वाजे है नित वाजे गाई सतगुर बाणी नानक दात करी प्रभ दातै ज्योति ज्योत समाणी मन मुखा मन मुख मुए मेरी कर माया राम खिन आवे खिन जावे दुर्गंध मड़े चित लाया राम लाया दुर्गंध मड़े चित लागा ज्यों रंग कसुंब दिखाया खिन पूरब खिन पच्छम शाए ज्यों चक कुम्हार पवाया दुख खावे हैं दुख संच है भोग है दुख की बिरद वधाई नानक बिकम सहेला तरिय जाया वै गुर सरनाई।

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भगती आवे है लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए रत्ना रत्न पदारथ

लागे तिन हाथ चढ़िया, निर्मोल करत ने अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया, तेरी भगत भरे भंडारा, समुंद वरोल शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नान

सिद्ध कार्य सब सोहाए राम, रोमे रोम रोम रोमे, मैं गुरमुख राम त्याए राम, राम नाम त्याए पवे।

तमो रमय उच्चा गुण कहत्या अंत ना पाया। नानक राम नाम सुन पीने रामै नाम सुमाया। जिन अंतरे राम नाम वसै किन चिंता सब गवाया। राम सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया। राम मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया। राम नाम गुण गाई दुर्मत कुबुद गई सुध हुई। राम नाम मन लाए सफल जन्म शरीर सब होआ। जित राम नाम परगासिया नानक हर पज सदा दिन राती। गुरमुख निज घर वासिया जिन शरदा राम नाम लगी तिन दूजे चित ना लाया। राम जे धरती सब कंचन कर दीजे बिन नाम है अवर ना पाया। राम राम नाम मन पाया परम सुख पाया।

ना आवे। नानक गुरमुख राम पछाता कर कृपा आप मलावे। राम राम नाम सते सत गुरमुख जानिया राम। सेव को गुर सेवा लागा जिन मन तन अर्प चढ़ाया राम। मन तन अर्पया बहुत मन सरदया गुर सेवक पाए मलाए।

भी उत्तम हर जपी है सतगुर पाए जियो गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए हर जपत सुनत दुख जाए जियो हर हर नाम जपया दुख बिनसिया हर नाम परम सुख पाया सतगुर ज्ञान बलिया घट चानन अज्ञान अंधेर गवाया हर हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक तुर लिख पाए जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपी है सतगुर पाए जियो हर

सारे गुण गाया। जन्म जन्म के केल वेख दुख उतरे, हर हर नाम सुमाया। जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो। हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो। हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया। से धन वड्डे सत पुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया। जन नानक रेण मंगै पग साधू,

गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रवेक को दूजा अवर ना कोई हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई हर दरगाह पावे मान जियो सत जुग सब संतोख सरीरा पग चारे धर्म ध्यान जियो तेता जोग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए जियो पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया मन हिरदय क्रोध जलाए दियो मन हिरदय क्रोध महा बिसलोद निरपता वह लड़ दुख पाया अंतर ममता रोग लगाना हों मैं अहंकार वधाया हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर देख गुरमत हर नाम लह जाए दियो एता जोग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए जियो जुग द्वापर आया परम परमाया हर गोपी कान उपाय जियो तप तापन ताप है जग पुन आरंभ है अत किरिया कर्म कमाए जियो किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया दोए पग टिकै टकाए जियो महाजुद जोद बहुकीने विच हों मैं पचै पचाए दियो दीन दयाल गुर साध मलाया मिल सतगुर मल लह जाए दियो जुग द्वापर आया परम परमाया हर गोपी कान उपाए दियो कल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया पग चौथा टिकै टकाए दियो गुर शब्द कमाया औखद हर पाया हर कीरत हर शांत पाए जियो हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई हर हर नाम खेत जमाया कल युग बीज बीजे बिन नावे सब लाहा मूल गवाया जन नानक गुर पूरा पाया मन हिरदय नाम लखाए जियो कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया पग चौथा टिकै टकाए दियो आसा महला चौथा हर कीरत मन पाई परम गत पाई हर मन तन मीठ लगान जियो हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया तुर मस्तक भाग प्राण जियो तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग हर नामे हर गुण गाया मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी हर नामे हर सोहाया ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया मिल सतगुर मनुआ मान जियो हर कीरत मन पाई परम गत पाई हर मन तन मीठ लगान जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान जियो तिन हम चरण सरेव है खिन खिन पग धोवे है जिन हर मीठ लगान जियो हर मीठा लाया परम सुख पाया मुख भागा रती चारी गुरमत हर गाया हर हार उर पाया हर नाम कंठ धारी सब एक दृष्ट समत कर देखै सब आत्म राम पछाण जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान जियो सत संगत मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया बीजा अवर ना कोए जियो अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

संगत मन पाई हर रस नरसाई, विच संगत हर रस होए जियो, हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो, कद लेवो शब्द सुपाए जियो, मोह चीकड़ पाथे निगरत हम जाते।

एको होए, हर जन प्रभ एक समान जियो, तुर मरन लखाया गुरमुख सोहाया, जन उमरे हर हर ध्यान जियो, जग उपजै बिनसै बिनस बनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो, गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बहुड़ मरना होई, हर हर नाम अमर पद पाया।

बिन सबनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। आसा महला चौथा संत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आदि निरंजन निरंकार जियो। ता की गत कही ना जाई अमित वड्याई मेरा गोविंद अलख अपार जियो। गोविंद अलख अपार।

अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब मैं रहया समाए जियो। घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत न पाया किस रूप न रेख अदिष्ट अगोचर। गुरमुख अलख लखाया सदा आनंद रहै दिन राती सहजे नाम समाए जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। हर हर प्रभ एको अवर ना कोई तू आपे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान तुद जेवड़े अवर ना कोई तेरा शब्द सब तू है वरत है तू आपे करह सो होई। हर सब मह रव्या एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। सब तू है करता सब तेरी वडियाई ज्यों भावै तिवें चलाए जियो। तुदे आपे भावै तिवें चलावह सब तेरै शब्द समाए जियो। सब शब्द समावै जां तुद भावै तेरै शब्द वडियाई गुरमुख बुद्ध पाईऐ आप गवाईऐ। शब्दे रहिया समाई तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईऐ नानक नाम समाए जियो। सब तू है करता सब तेरी वडियाई ज्यों भावै तिवें चलाए जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा।

मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पिराम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजी हों मांगू सरन हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वच्छल हर बिरद है।

गुर हर मार्ग चाली मेरा मन तन नाम आधार है हम मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली गुरमुख प्यारी।

रस पिनी मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मेल हर मन मनी हम मूर्ख कार लाइया नानक हर कमे गुर अमृत पिनी दे होरी अमृत बुर के राम राजी जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इक्के आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजी गुर सतगुर सच्चा साहू है सिख दे हर रासी तन तन बन जारा बन जे है गुर साहु सबासी जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत ललाट लखासी सच साहु हमारा तू धनी सब जगत बन जारा राम राजी सब भांडे तुदै साजिया।

लै हम सरल प्रभ आए राम राजी हम भूल बगाड़ हैं दिन सरात हर लाज रखाई हम बारे

नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है, हर भगत हर लीजै। आसा महला चौथा, जिने अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगड़ सियाणे राम राजी, जे बाहर

मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजी गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुर सिखा की काल पाए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुर सिखा मन मिठा। हर दरगाह गुर सिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुर तुठा। जन नानक हर हर होया।

सुख सद हुई, जिन्ना नानक सतगुर भेटिया तिन्ह मिलिया हर सोई। जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजी। तिनकी निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा। जिन हर सेती मन मानिया, सब दुष्ट झक मारा। जन नानक नाम

प्यारे मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे नित आस करे नित जोवन जावे मेरे प्यारे जम सास हिरे भाग मणि सुहागण मेरे प्यारे नानक हर पुर तारे फिर रत्याड़े मैंडे लोयन मेरे प्यारे चात्रक बूंद जिवें मन

उड़ लुत्ते मन आस उड़ीनी मेरे प्यारे दोए नैन जुत्ते गुरु नानक देख बिबसी मेरे प्यारे ज्यों मात सुते

जिन हर मेलाइया सब आसा हर पूरिया मेरे प्यारे मन चिंदियाड़ा फल पाया हर तुठड़ा मेरे प्यारे जन नानक नाम समाया प्यारे हर बिन प्रेम ना खेलसा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देखसा हर दातड़े मेल गुरु।

भया, गृहवास आया मंगल गाया, पांच दुष्ट ओए भाग गया, शीतल आघाणे अमृत बाणे, साजन संत बसीठा, कहो नानक हर सियो मन मान।

तब किस मैं सब किछ पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचर

सरसियड़े मेरे भाई सब मीता राम, बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम। गुरमिल जीता हर हर कीता, टूटी पीता भरम गड़ा, पाया खजाना बहुत नदाना, साणथ मेरी आप खड़ा, सोई सुगयाना सो परदाना, जो प्रभ

अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम। सुर नर मुन जन सहज बखान।

हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाते दूक संतापै गुर चरणी लागे प्रम पौ भागे आप।

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता गुरपुरा पाया नाम ते आया जूए जन्म न हारे बिनवंत नानक सरन तेरी राख किरपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम हर धूड़ी नाइय मैल गवाइय जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुर सरन तरिय अपने प्रभ पावा।

राजी मिल संत संगत आराध्या हर घट कटे दीठा राम राजी हर घट कटे दीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे गुण निद गाया सब दुख मटाया हम मैं बिनसी गांठे प्रियो

जल संगराती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे मालक जीना सुत।

हर प्यारा मिले नारायण अपने मनोरथ तो पूरा राम राजे ताठी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूर्ण गुर पाए पुरब लखाए सब निद दीन दयाला आद माद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला सुख सहज आनंद कनेरे

मन हर चरण गिहिजै, ऐसी मन प्रीत कीजै। आसा महला पंजवां सलोक, बन बन फिरती खोजती, हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब, हर पाया मन माही। संत जां को खोजह असंख मुनि, अनेक तपे ब्रह्मे कोट अराधह ज्ञानी। जाप जपे जप ताप संयम क्रिया पूजा, अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा। तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना, मानुख बन तिन पशु पंखी। सगल तुझह अराधते दयाल लाल गोबिंद नानक, मिल साध संगत होए गते। कोट बिसन अवतार संकर जटा धार, चाह है तुझह दयार। मन तन रुच अपार, अपार अगम गोविंद ठाकुर। सगल पूरक प्रभ धनी, सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावह। जख किनर गुण भनी, कोट इंदर अनेक देवा। जपत स्वामी जय जयकार, अनाथ नाथ दयाल नानक। साध संगत मिल उधार, कोट देवी जाको सेवह। लक्ष्मी अनक पांत गुप्त प्रगट जाको राध है। पौन पानी दिन सरात, नखियतर ससियर सूर त्यावह। वसुद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी, सदा सदा त्यावे। सिमरत प्राण चतर बेद, खट शास्त्र जा को जपात। पतत पावन भगत वचल, नानक मिली है संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी, अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी। अवगत अगंत अथाह ठाकुर, सगल मंजे बाहरा। सर्ब जाचक एक दाता, नह दूर संगी जाहरा। वस भगत थिया मिले जिया, ताकि उपमा कित गनी। एहो दान मान नानक पाए, सीस साधा धर चरनी। आसा महला पंजवां सलोक, उदम करहो वडभागी हो। सिमरो हर हर राय, नानक जिस सिमरत सब सुख होवह। दुख दर्द भ्रम जाय, संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाईय। भेटत साधु संग जमपुर नह जाइय। दुख दर्द ना पौ ब्यापै, नाम सिमरत सद सुखी। सास सास अराध हर हर, त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निद, कर दया सेवा लाई है। नानक पयंपै चरण जंपै, नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। पावन पतत पनीत नाम निरंजना, परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल फल मही अल पूरिया। एक निमख जा कैर दै वसिया, मिटे तिसैव सूरिया। अगाध बोध समरथ स्वामी, सर्ब का पौ भंजना। नानक पयंपै चरण जंपै, पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निदे, मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी, पतत उदरन हर हरि। सागर संसार पाव उतार, नाम सिमरत बहुतरी। आद अंत बेअंत खोज।

आवे अवनाशी अवघत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावे नानक वखाणे गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार तां कै अनद घना सुखवंती सानार सोभा पूर्बणा मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुरबचन जाने जाको राम पतार तां कै अनद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसों चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटे संताप आप नह जनाई है शरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

तपास सेवा लागी है, जा के मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया, साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया, परम मोह विकार दूजा सगल तिनह त्यागिया, मन शांत सहज सुभाउ बूठा, आनंद मंगल गुण गाया, नानक वखाणे गुर बचन जाने।

कर जोड़। हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहु ना तामु शरण पावो, करना मैं प्रभ कर्मया। समर्थ अगत अपार निर्मल,

नीच सठ कठोर को लहीन व्यापत मोह कीच मल भरम करम अहं ममता मरण चीत न आवे बनता बनोद आनंद माया अज्ञान ताल पटावे खिसै जोबन बदै जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत न

संग मीठे भोग सोहन प्रमत भार अगंत आयो बहु परदेसह धायो अब ओट धारी प्रभ मरारी सर्व सुख हर नायो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु ना हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीख उधारे भगत है संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवन सुन श्रवन बानी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ बधाते राम के गुण गावे बसद कागद बनराज कलम।

हल्ला पंजवा पुरख पते भगवान तां की शरण गही निरपौ भये प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुरम लाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप पई राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोह बेकार बिनसे जोन आवन सब रही अग्न सागर पय शीतल साधे अंचल गह रही गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याए पूर्ण साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरलै किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त समानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निद जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन सिमरंत नानक हर हरे।

गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत संत। इन्नी रहनड़ी है चाम कन तारी, जागह संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागह, नाम सिमरह अन दिनो, चरण कमल ध्यान हिरदय, प्रभ बिसर नाही एक खिनो। तज मान मोह बिकार मन का, कलम ला दुख जारी, बिनवंत नानक सदा जागह, हरदास संत प्यारे। मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया, प्रभ मिले स्वामी सुखागामी, चाव मंगल रस परी, अंग संग लागे दुख भागे, प्राण मन तन सब हरी, मन इच पाई प्रभ ते आई, संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री तार, सगल आनंद रस बनिया। मिल सखिया पुछ है कहो कंत नी चाणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी, गुण गूढ़ गुप्त अपार करते, निगम अंत ना पावहे, भगत पाए ते आए स्वामी, सदा हर गुण गावहे, सगल गुण सुगयान पूरन, अपने प्रभ पाणी, बिनवंत नानक रंग राती, प्रेम सहज समाणी, सुख सोहिलड़े हर गावन लागे, साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन भागे, सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते, प्रभ आप कृपा धारिया, हर चरण लागे सदा जागे, मिले प्रभ बनवारिया। शुभ दिवस आए सहज पाए, सगल निध प्रभ पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, सदा हर जन तागे। आसा महला पंजवा, उठ मंज वटाउड़िया, तैं क्या चिर लाया मोहलत पुन्नड़िया, कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया, तो माया करहें पाप अमित्या, कन पसम टेरी जमै हेरी, काल बपड़ै जितया, माल जोबन छोड़ वैसी, रहे ओ पैनन खाया, नानक कमाना संग जुलिया, नह जाए किरत कमाया, हाथ हो मिर्ग जिवें पेख रहन चंद्रायन, सुख हो दुख भये नित पाप कमायन, पापा कमाने छड़ह नाही, लै चले कत गलावया, हर चंदौरी देख मूठा, कूड़ सेजा रावया, लब लोभ अहंकार माता, गर्भ भया समायन, नानक मृग अज्ञान बिनसे, नह मिटै आवन जायन, मिठै मख मुआ क्यों लए उडारी, हस्ती गर्त पया क्यों तरिए तारी, करण देहला भया खिन मह, खसम चेतना आयु, दुखा सजाई गणत नाही, किया अपना पायु, गुजा कमाना प्रगट होवा, ईत उतह खुआरी, नानक सतगुर बाज मूठा, मन मुखो अहंकारी, हर के दास जीवे लग प्रभ की चरनी, कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर सरनी, बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना, आप नाम जपाया, साध संगत आप हुआ, आप जगत तराया, राख लिए रखण हारे, सदा निर्मल करनी, नानक नरक ना जाहे कबहू, हर संत हर की सरनी।

धर्म करे दूत भय पलायन धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे कर अनग्रह राख लीने मोह ममता सब तजे गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायण विनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायण निध सिध चरण गहे ता केहा काड़ा सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा गह पुजा लीने नाम दीने करतार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापै हमें हर रस चाखिया साज संगे नाम रंगे

आयो माथै जिस पास लुकाइंदड़ो सो वेखी साथै संग देखै करनहारा काए पाप कमाइयै सो कृत की जय नाम लीजै नरक मूल ना जाइयै आठ पहर हर नाम सिमरहो चलै तेरे साथे भज साध संगत सदा नानक मिट हैं दोख कमाते वलवंच कर उदर पर हैं मूर्ख गावारा सब किश दे रहया हर देवन हारा दातार सदा दयाल स्वामी काए मनु विसारी है मिल साध संगे भजन संगे कुल समूहा तारी है सिद्ध साधक देव मुन जन भगत नाम आधारा बिनवंत नानक सदा भजियै प्रभ एक करने हारा खोट ना कीचई प्रभ परखण हारा कूड़।

तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरण आई आया। जल थल महियल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा। एक हर चंदौरड़ी अस्थर किश नाही माया रंग जेते से संग ना जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन सरहण संभाली है हर एक बिन काश अवर नाही। भावो दुतिया जाली है मीत जोबन माल सरबस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक।

पाद कमला भ्रम पीत कमला भ्रम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवद अकारत जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो।

नानक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास हे घन बूंद बचित्र मन आस हे अन पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजा लेव हो नाम देव हो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतत पावन हर दर्श पे

चंदा उगवह सूरज चढ़ है हजार केते चानन होंदिया गुरबेन घोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन

रते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिख नावे धर्म बहालिया। सलोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उज्जड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरै भाग। महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मै अंदर वेखै वरतै ताको ताक पौड़ी आपी न भोग भोग कै होए पसमड़ पौर सदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगे करनी कीरत वाची है बहलेखा कर समझाया।

बहुते जन्म परमिया, ता सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जे वरदाता को नहीं, सब सुनियो हूं लोक सबाया। सतगुर मिलया सच पाया, जिनी विच्चों आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया, सलोक महला पहला।

मन भाउ पौड़ी ना तेरा निरंकार है ना ही लय नरक ना जाई है जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आख गवाई है जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीच सदाई है जे जरवाना पर हर है जर वेस करेंदी आई है को रह ना परिये पाईये सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरयत।

पौड़ी, बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया।

तुह उपजे कित संजम एह जाय। हम एहो हुक्म है पय किरत फराह। हम दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे। कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए। नानक कह सुनो जनहो इत संयम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया। ओनी मंदे पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला

किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन्यो पाया जग तिस जो हारी स्वास्थ तिस दे बान अपहग।

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देह तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिलै सच पाया, जिन कै हिरदै सच वसाया, मूरख सच ना जाननी, मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया। श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़ी है जेते बरस बरस, पढ़ी है जेते मास, पढ़ी है जेती आरजा, पढ़ी है जेते सास। नानक लेख एक गल, होर हूं मैं चखना चाख। महला पहला, लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया, बहु तीर्थ भविया ते तो लविया, बहु

दुख पाया दूजा पाया वस्त्र न पहरै अहनिस कहरै मोन बगूता क्यों जागै गुरबिन सूता पग उपे ताना अपना किया कमाना फल मल खाई सिर शाई पाई मूर्ख अंधै पत गवाई विण नावै किस थाए ना पाई रह बेबाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाई हर का नाम मन वसाई नानक नदर करे सो पाए आस अंदेसे ते निह केवल हम मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन भावंदे दर सोहन कीरत गावंदे नानक करमा बाहरे दर ढो ना लहनी धाम दे एक मूल ना बुझन अपना अण हुंदा आप गणाए दे हौ ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझै त्याए दे श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा।

कूड़ कप्पड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खाप होए खार कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की कह दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखियों।

मल उतर तन करे हच्छा तोय सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार।

निवास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान महिंदा तली खाट जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लाल च छड़ी है होए एक मन अलख ते आई है फल तेवे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे होवे पूरब लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है। श्लोक महला पहला सच काल कूड़ वरतिया।

पाहे परे मरदार। ज्ञानी नचह बाजे वावह रूप करह सिंगार। ऊचे कूकह वादा गावह जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करह प्यार। धर्म

पौड़ी। तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया। इन्ना जनता कै बस किश नाही तुद वेकी जग ते उपाया। इक नानू तू मेल लै इक आपो तुद खुआया। गुर किरपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया।

होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।

है गुनाहगार ता उमी साधना मारी है जेहा खाले कालना तेवे हो ना उपचारी है ऐसी कला ना खेडी है जित दरगाह गया हारी है पढ़िया अते उमिया विचार अगे विचारी है मुहे चले सो अगे मारी है। सलोक महला पहला नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवाओ जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझ ताए सत जुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवाहु त्रेत रथ जतै का जोर अगे रथवाह द्वापर रथ तपै का सत अगे रथवाह कल युग

सह साच रहे सबको सच समावे। रिग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर। नाए लय परास्त जाहे नानक तौ मुखंतर पाहे। जुज मह जोर छली चंद्रा।

कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने हुए प्रवान ता खसमै का महल पाए सी खसमै भावे सो करे मनहु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी। श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़ कतेबा संजम तुरका भाई।

ताग, तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद, उना ते आवह ओई साध, कूड़ी रास कूड़ा वापार, कूड़ बोल करह आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहया भरपूर, मथे टिका तेड़ तो तीक खाई, हाथ छुरी जगत का साई, नील वस्त्र पहर हो वह परवान, मलेश तान ले पूजह पुराण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे न जाना, देखे चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एह अन्न असाडा फिटे, तन फिटे फेड़ करेन, मन जूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी।

वडो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहु कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहे कर मोहे पितरी दे अग्गे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फी एह करे नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर गुजन नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

आज ना कोई पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोई सूतक क्यों कर रखी है, सूतक पवैर सोई नानक सूतक एव ना उतर है, ज्ञान उतारे तोय महला पहला, मन का सूतक लोभ है, जिहवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना, पर त्रिय पर धन रूप कन्नी सूतक कन पै, लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी, बदे जमपुर जाहे महला पहला, सभो सूतक भरम है।

नाल आने दूसती कदे न आवै रास जिहा जाने ते हो वरतै वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावै दूजी होवै पास साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवै नानक सिफत विगा

खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजह गवाए अगला मुहे मुहे पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक।

जो पाई है नानक सा करमात साहिब तुठ है जो मिले महला दूजा एक ने ही चाकरी जित भौ खसम ना जाए नानक सेवक कहडी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंत ना जापनी हर ता के पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार इक ना गली जंजीरियां इक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हौ कैस्यो करी पकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार सलोक महला पहला आपे पांडे साजियन आपे पूरन दे इकनी दुध समाई है इक चुल्ला रहन चढ़े एक निहाली पै समन एक ऊपर रहन खड़े।

आप तिस विच जंत उपायक दिख थाप उथाप किसनो कहिए नानका सब किछ आपे।

भगता की कबीर जियो नाम देव जियो रविदास जियो आसा श्री कबीर जियो गुरचरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लाभ हो।

माया पास बंद नहीं पारे, हर मन सुन ना लूके, आपा पद निर्वाण ना चीनिया, इन बिद अपियो ना चूके, कही ना उपजै उपजी जाने, भाव अभाव बिहूणा, उदय अस्त की मन बुद्ध नासी, तौ सदा सहज लिव लीना, ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है, उदक कुंभ बिगराना, कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा, तौ तो मन सुन समाना, आसा गज साडे तै तै धूतियां, तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां, लोटे हाथ निबग, वे हर के संत

आ मेरा मन पाया हम पूत तेरा तू बाप मेरा एक ठाहर दोहां बसेरा कहो कबीर जन एको बूझिया गुर प्रसाद मैं सब किस सूझिया आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट इकत पत्र पर पानी आस पास पंच जोगिया बैठे बीच नकट दे रानी नकटी कोठन गन बाडाडू किन्ह बबेकी काटी तू रहाउ सगल माहे नकटी का वासा सगल मार ओहेरी सगलियां की हो।

आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु ब्याह करना तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तहु मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तहु मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे।

गावे, कर कर मुसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे, वंश को पूत ब्याहन चलिया, सोइने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुन गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाउ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया फहरी काया कर तुई दृष्ट की अग्न जलावे तिसका भाव लये हृदय अंतर चहो जुग ताड़ी लावे सब जोग तन राम नाम है जिसका पिंड पराना कहो कबीर जे कृपा धारे दे सच्चा निशाना आसा हिंदू तुर्क कहां ते आई किन ए रहा चलाई दिल में

पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई। जौरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। फर्द शरीर ही नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाड कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकरी टेक राम की, तुर्क रहे पचेहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तोहे करी ना राख कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। का की मात पिता कहो का को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोवे, हंस के ला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, पै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के। चौपदे एक तुके, सनक सनंद अंत नहीं पाया। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई, सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई।

न कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे इनते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपर

खंडस अवगन मेरा रहाउ। जे अत क्रोप करे कर ताया तां पी चीत ना राखस माया चिंत पवन।

करूं सलाम, कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुर्क दो समझावो, आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ, दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पाती तोरै मालनी पाती पाती जीओ, जिस पाहन को

तीन देव परताख तो रह करहे किसकी सेव। पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ। जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ। पात पहत अरलापसी कर करा का सार। भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार। मालिन भूली जग पुलाना हम।

पन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्द फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर धन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गुप

अहरखवाद ना की जैरे मन, सोकृत कर कर ली जैरे मन रहाओ। कुमार है एक जो माटी गूंदी, बहु विद्वानी लाई। काहू मह मोती मुक्ताहल, काहू ब्याद लगाई। सुमह धन राखण को दिया, मुग्ध कह धन मेरा। जम का दंड मूंड मह लागे, किन मह करे निवेरा। हर जाने उत्तम भगत सदावे, आग्या मन सुख पाई। जो तिस भावे सत

राय, कह बिसियर को दूध पियाए। सात संगत मिल बबेक बुद्ध हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुआन सब करे कराया, जो तुर लिखिया।

आओ नाभ कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आसवड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट तेतीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

हो गायत्री गोविंद हृदय हमारे, मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण, हृदय बस है गोविंदा, जम द्वार जब पूछस बबरे तब

अवतार चिरायुः कैसे खसम हमारे तू बामन मैं कांसी के जुलहा बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे हर सो मोर त्याना आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निदान बाबा माया मोह हित कीन जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाव नैन देख पतंग उर्जय पासना देख आग काल पासना मुग्ध चेत कनक कामन लाग कर विचार विकार परहर तरन तारन सोए कह कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोय आसा जो मैं रूप किए बहुतेरे अब पुन रूप न होई तागा तंत साज सब ठाका राम नाम बस होई अब मोहे लाचनो ना आवे मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाऊ काम क्रोध माया ले जारी तृष्णा गागर फूटी काम चोलना पया है पुराना गया परम सब छूटी।

मह तेरा सोच विचार ना देखै खबर ना करै दीन के बौरे तां ते जन्म अलेखै रहाउ साचक ते बखानै अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे ज्यो दिल मह खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पीतर।

रहो रहोरी बहुरिया कुंगट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़े रहाओ। कुंगट काट गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। कुंगट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। कुंगट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए।

जाना सब जागे अनतनायो ताना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना। तरन आकाश की कर गह बनाई चांद सूरज दोए साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी तह तांति मन माना। जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

तीर्थ लावे तिस बैकुंठ ना जाना। लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम अयाना। पूजो

मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई। दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र।

एक मन सत सहंस जैसे ऊत पूत प्रभ सोई रहाउ जल तरंग हर फेन बुदबदा जल ते भिन्न न होई एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय बिचारी घट घट अंतर सर्ब निरंतर केवल एक मरारी हासा आनी ले कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं बयालीस लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं जत्र जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं पहले बास लई है पवर है बीठल पहला काहे करूं आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं पहले दूध बटारे ओ बछरे बीठल पहला काहे करूं।

आदि मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दुख बनास पंच दुख असाध जाम है ता की केत के आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाव त्रिगद जोन अचेत संभव उन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिहि संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन पै हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलग घणी और एक मांगो भगत चिंतामण जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणै।

सुगंध निवासा माधु सतसंगत शरण तुम्हारी हम योगन तुम उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपियल हम बपुरे जस कीरा सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मदपम खीरा जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रामैया धन रहाओ संपत बिपत पटल माया धन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधो तेरो जन कह रविदास छूटे बो कमन गुन आसा हर हर हर हर हर हर हरी।

दूध पे आया, तौ जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता, इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देख देख सुन बोले, दौर्यो फिरत है रहाउ। जब कश पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसै लुभाना,

तन्ने जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन धन नहीं धीरे, लालच बेख काम लुभ धराता, मन बिसरे प्रभ हीरे रहाउ, बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया, गुण ते प्रीत बड़ी अनपांति, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया, ध्यान मान मन एक मय, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त भये, जोत समाए समानी जाकै,

साध दिनहु मोहब्बत जिन से सच्चिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते भोए भारथिए रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जणें दी माओ आए सफल से।

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरी द खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़िया मनहुम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घुम ना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए

मन पीरिया कंचन मने पासे कलवत चीरिया सेख हयाती जागना कोई थिर रहया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कत्तक कूंजा चेत डौ सावन बिजलिया से आले सोहंदिया फिर गल बाहड़िया चले चलन हार बचारा ले मनो गा डेंदियां छे माह तोड़ंदियां एक खिनो जिमी पुछै।

उपजे वेद पढ़ह मुख कंठ सवार ताको अंत न जाई लखना आवत जात रह गुबार प्रीतम क्यों बिसरह मेरे प्राण आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेवह गुर विचार रहाउ राव सस दीपक जाके त्रे पवन एका ज्योत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मन मुख रहन अंधार सिद्ध समाध करह नित झगरा दोह लोचन क्या हेर अंतर ज्योत शब्द धुन जागे सतगुर झगर नबेर सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचे महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहु निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला

आई। ऐसा सतगुर सेविए मना, जित सेवे है गोविंद प्रीत उपजे, अवर विसर सब जाय। हर सेती चित गहर है, जरा का पौ न होवे, जीवन पदवी पाय रहाउ। गोविंद प्रीत स्यों एक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी, आप सेती आप खाया, तां मन निर्मल हुआ, ज्योति ज्योत समई। बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाईऐ, जे लोचै सब कोई, कूड़ै की पाल विचों निकलै, तां सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुर की, क्या ओह सेवक सेवा करे, गुर आगै जियो तरे, सतगुर का पाणा चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला तीजा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी, हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है, दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी।

हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंदप हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है।

जाई। हर मेरा धन मेरे साथ चाले, जहां हों जाऊं तह जाई। सो झूठा जो झूठे लागे, झूठे कर्म कमाई। कह नानक हर का पाणा हुआ, कहना कछु ना जाई। गुजरी

गुर प्रसादी राम मन वसै ता फल पावै कोई। अंतर गोविंद जिस लागै प्रीत हर तिस कदे ना विसरै। हर हर करह सदा मन चीत रहाउ हृदय जिन कै कपट वसै। बाहर हूं संत कहाहे तृष्णा मूल ना चुकै अंत गए पछताहे। अनेक तीर्थ जे जतन करै ता अंतर की हऊ मैं कदे ना जाए। जिस नर की दुबदा ना जाए धर्म राए तिस देश जाए। कर्म होवै सोई जन पाए गुरमुख बूजै कोई। नानक विचों हऊ मैं मारे ता हर भेटै सोई। गुजरी महला तीजा तिस जन शांत सदा मत निश्चल। जिसका अभिमान गवाए सो जन निर्मल। जे गुरमुख बूजै हर चरणी चित लाए। हर चेत अचेत मना जो इच्छा है सो फल होई। गुर प्रसादी हर रस पाव है पीवत रह है सदा सुख होई। रहाओ सतगुर भेटे ता पारस होवै। पारस होए ता पूज कराए। जो उस पूजे सो फल पाए। दीखिया देवै साच बुझाए बिन पारसै पूज ना होवई। बिन मन परचे अवरा समझाए गुरु सदाए अज्ञानी अंधा किस ओहो मार्ग पाए। नानक बिन नदरी किछु ना पाईऐ जिस नदर करे सो पाए। गुर प्रसादी दे वडियाई अपना शब्द वरताए। गुजरी महला तीजा पंच पदे ना कांसी मत उपजै ना कांसी मत जाए। सतगुर मिले मत उपजै।

जो आप ना पछाणे सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरखा।

सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाउ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्तासह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आई त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाऊ सुख साग

आग को अमृत रस पाईए, तृप्त विष्टा खाए मुख गो है, अमृत सर सतगुर सतवादी, जितना तै कौआ हंस हो है, नानक तन तन बड़े बड़ पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तू है, गुजरी महला चौथा, हर जानी उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोलह पारे उपकारी, जो जन सुने सरदा भगत सेती।

था। जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभु पाया, मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे, मन तन शीतल सब हरिया हुआ, वड भागी हर नाम ते।

तेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाउ। धीरज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नामे हर सिउ चित लावे। अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे, गुरमत नाम जपै लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, ते भागहीन मोए मर जावे। आनंद मूल जग जीवन दाता, सब जन को आनंद करहो हर त्यावे। तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मलावे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुजरी महला चौथा घर तीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना को संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है। शरीर रहाउ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई। विचे ग्रिस्त उदास रहाई, जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई। तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाई, सो हम करहें जो आप कराई। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिव लाई। गुजरी महला पंजवा चौपदे घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चित्त वह उद्दम, जा आहार हर जियो परया।

से तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी तरया सिर सिर

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा बरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरे हुमे बिन गुर बाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा तारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे

आवे। हलत पलत कै संगे लाद खजाना गुरु नानक को दिया। एहो मन हर रंग रंगी गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत सब किल विखनास है पितरी होए उदारू। सो हर हर तुम सद ही जापहु जा का अंत न पारू। पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो जगदीश। रहाओ सतगुरु तुम कहो होए दयाला संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवहो सदा चिर जीवहो हर सिमर।

सो अपना दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटै प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काटै रहाउ माया के संबंध सैन साक कित ही काम ना आया हर का दास नीच कुल ऊचा तिस संग मन बांछत फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन ता मह त्रिशन ना बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी फिरत फिरत तुमरे द्वारे आया पै पंजन हर राया साध के चरण धूर जन बांछे सुख नानक एहो पाया गुजरी महला पंजवा पंच पदा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कहवासा ऊहा छोड़ धरन मह आया चित्र साल सुंदर बाग मंदर संग न कछु हूं जाया अवर सब मिथ्या लोभ लबी गुरपुरे दियो हर नामा जी को एहा वस्त फबी रहाउ इष्ट मीत बंधप सुत पाई संग बनता रच हसिया जब अंती अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसिया कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोयना रूपा दामा पहाड़ी को ओहो पहाड़ा मिलिया होर सगल पयो बे

ये पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख बिन से सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निदान सतगुरु दृढ़ाया बिन सुनाया वह जाई हर जप माया बंधन टूटे पये कृपाल दयाल प्रभ मेरे साध संगत मिल छूटे रहाओ आठ पैर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता हरख सोग दोह माहे नराला करने हार पछाता जिसका साथ तिन्ही रख लिया सगल जुगत बने आई कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई गुजरी महला पंजवा दो पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए करे अपने सगल करत नमस्कारु वर्ण जात को पूछे नाही बांछ चरण रवारु ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारु सगल श्रेष्ठ को धनी की जय जन को अंग नरारु रहाउ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारु नाम देओ त्रिलोचन कबीर दासरु मुक्त पयो चमियारु गुजरी महला पंजवा है नाही को गुजन हारु जान कमन पता शिव बरंच अर सगल मोन जन गहना सकाहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर विद।

जतर कता गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु न आयु जह जह अवसर आये बनियो है तहा तहा हर त्यायु प्रभ को भगत वच्छल बिरदायु करे प्रतपाल बारक की न्याई जन को लाड लडायु रहाउ जप तप संयम कर्म धर्म हर कीर्तन जा

जाति आराधु प्यारू, निमखना की जय ढीला, संत सेवा कर पावनी लाइए, त्याग मान हठीला, मोहन प्राण मान रंगीला, बास रहे ओही अरे कह संगे, देख मोहयो मन लीला, रहाओ जिस सिमरत मन होत

पंजवां मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपने ही तीन देव अर कोड़ तीसा तिनकी हैरत कश ना रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साधते भागी होए केरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखी परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार गुजरी महला पंजवा मात पिता भाई सुत बंदप तिनका बल है थूरा अनक रंग माया के पेखे किस साथ न चाले पूरा ठाकुर तुझ बिन आहे ना मोहरा मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही मैं आहे हो तुमरा तुरा रहा बल बल बल बल चरण तुम।

करी राजा रंक करे खिन पीतर नीचे है जोत तरी त्याई अपनो सदा हरी सोच अंधेसा

परी अचेत अयाने बारक नानक हम तुम राखो धार करी गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही चरण कमल रिदमाहे समाए तह भरम अंधेरा नाही ठाकुर जा सिमरा तू ताही कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभ को सदा सलाही रहाउ सास सास तेरा नाम सुमारो तुम ही को प्रभ आही नानक टेक पई करते की और आस बढ़ानी लाही गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै जस गावो निसे अर पूर।

आप जस मिटै हुए जग कीरत दरगाह बैसन पाईए जम की त्रास नास हुए खिन मह सुख आनंद सेती घर जाइए जाते काल न बिरथी जाइए आठ पहर सिमरहु प्रभ अपना मन तन सदा।

सर्व सुख होए, हर गुण सदा विचार। अंगीकार कियो मेरे करतै, गुर पूरे की वडियाई।

मिथ्या पज सदा भगवंत रहाउ नाम एक आधार भगता ईत आज्ञा टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समर्थ श्री धर सरण ता की गही मुकत जुग तरवाल साधु नानक हर निद लही गुजरी महला पंजवां घर चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सियाणपा साध सरणी आओ पार ब्रह्म परमेश्वरु प्रभु के गुण गाव रे चित चरण कमल आराध सर्व सुख कल्याण पावह मिटै सगल उपाद रहाव मात पिता सुत मीत भाई इस बिना नहीं कोई ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रविया सोए कोट जतन अपाव मिथ्या कछ न आवै काम सरण साधु निर्मला गात

चरण कमल अराध हृदय एक स्यों लिव लाव पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बक्षली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया।

तर पुत्र कलत्तर सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख नवारी मिले हर जन संत सर्ब बिद भ्रम ते पकार है कतह नाही चोट हर चरण सरन अपार प्रभ के दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवां घर चौथा दोपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज श्री तर सफल मूरत करन कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बेयोग मन चरनार बिंद उपास कल कलेश मटंत सिमरन काट जमदूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना अपाउ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरन को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाउ रहाउ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उदरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण परिउ नानक प्रभ तुमरी दे राखियो हर हाथ गुजरी अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे केतो हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाउ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे पार जात घर आंगन मेरा ओह पपत्र तत डाला सर्ब ज्योत निरंजन संभू छोटो बहुत जंजाला सुन सिखवंते नानक बिनवै।

सो सिख कथी अले सो वैद जे जाणै रोगी तिस कारण काम ना धंदा नाही धंदै गिरही जोगी काम क्रोध अहंकार तजी अले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथी अले चेत बन सब दूता ब्रह्म कमल मद तासर साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्ब जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बिख ताज अमृत पियाया गुजरी महला पहला कमन कमन जाचे है प्रभ दाती ताके अंत न परह सुमार जैसी भूख होए अभ्यंतर तू समरथ सच देवन हार ऐजी जप तप संयम सच आधार हर हर नाम दे सुख पाई तेरी भगत भरे भंडार रहाउ सुन समाद रह निवलागे एका एकी शब्द विचार जल थल धरन गगन तै नाही आपे आप किया करतार ना तद माया मगन ना छाया ना सूरज चंद ना ज्योत अपार सर्व दृष्ट लोचन अभ्यंतर एका नदर सोत्रे पवन सार पवन पानी अगन तिन किया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रवदाता दात करे अपने विचार कोट ततीस जाच है प्रभ नायक दें दे तोट नाही भंडार ऊंदे भांडे कछ ना समावे सिद्ध अमृत परे निहार सिद्ध समाधि अंतर जाच है रिद्ध सिद्ध जाच करह जयकार जैसी प्यास हुए मन अंतर तैसो जल देवे।

है बूझ अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर पै नाम निरंजन दीजे प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगे।

चिन्ना मद्दम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग बिसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करै प्रभ बख्शना मेटै नित नित चढ़ै सवाई।

लाय तू वड पुरख अगम तरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ ए मन मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमन चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मग्न हितं हिर नाम भगत दृढ़ मति गुरवाक शब्द रतन परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमति नाम तपं एहो जग मोहेत व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबर है हर नाम रिद रमन गुरमत निश्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साचे अंतर ज्ञान रतन सारं तै पाए भगत तर पवजल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरणी लभ लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरनं गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन चाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै।

ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यों बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाई जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनकस नंदन नारद मुन सेव है अन दिन जपत रह बनवारी शरणागत प्रहलाद जन आई तिनकी पैज सुवारी।

पसारी भगत जना की उत्तम बाणी गावे है अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म भया तिन केरा आप तरे कुल तारी मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे।

मल पख माया धारी संत जना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी एहो परपंच खेल किया सब करतै हर करतै सब कल धारी हर एको सूत वरतै जोगे अंतर सूत खिंचै एकंकारी रसन रसन रस गावह हर गुण रसना हर रस धारी नानक हर बिन

तार जग भव सिंध रहाउ। काम क्रोध हरन मद मोह दहन, मरार मन मकरंद जन्म मरन निवार। करनी तर पत राख परमानंद, जलत अनेक तरंग माया। गुर ज्ञान हर रिद मंत, छेद अहम बुद करना मैं। चिंत मेट पुरख अनंत, सिमर समरथ पल मुहूर्त। प्रभ ध्यान।

ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करी पसाऊ मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ महला तीजा नानक मुक्त द्वारा।

सेओ माने आए त्रिक अवेहा जीविया क्या जुग में पाया आए माया छोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कमलाए जिन सतगुर सिओ चित लाया तिन सुख वसया मन आए हर नाम त्यावह रंग सिओ हर नाम रहे लिवलाए नानक सतगुर सो

आए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से ही उबरे जे सच रहे लिव लाए पौड़ी। ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सदी रहे हजूर। नानक हुक्म ना मने ता घर ही अंदर दूर, हुक्म पीत ना मनाए सी। जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया, प्रेम सुहागण होए महला तीजा। रैन सबाई जल मोई कंत ना लायो भावो, नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता, उपाए कितै ना पाईऐ हर कर्म बधाता। गुर शब्दी हर मन वसै हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता। सलोक महला तीजा, काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड जाए। ਇਸ ਨੂੰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਖਵਾਲੀ ਹੈ ਜੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ।

आय नानक हुकुम ना जातु खसम का जे रहा सच सुमाय महला तीजा एको निश्चल नाम धन होर धन आवै जाय इस धन को तस

आई, सतगुरु की सेवा न कीतिया, अंत गया पछताई, अपनी कृपा करे गुर पाई, विचों आप गवाई, कृष्णा भुख विचों उतरे, सुख वसै मन आई, सदा सदा सलाही है, हिरदय लिवलाई। सलोक महला तीजा, जे सतगुर सेवे अपना, तिसनो पूजे सब कोए, सबना उपावा सिर उपाऊ है, हर नाम प्राप्त होए, अंतर शीतल शांत वसै, जप हिरदय सदा सुख होए, अमृत खाना अमृत पहनना, नानक नाम वडाई होए महला तीजा। ए मन गुर की सिख सुन, हर पावह गुणी निदान, हर सुख दाता मन वसै, हउ मैं जाए गुमान, नानक नदरी पाई, तायन दिन लागे ध्यान पौड़ी, सत संतोख सब सच है, गुरमुख पविता अंदरों कपट विकार गया, मन सहजे जिता, तह जोत प्रगास आनंद रस, अज्ञान गविता, आनंद नहार के गुण रवे, गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है, इको हर मिता। सलोक महला तीजा, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है, जे अन दिन हर लिवलाए,

को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे हम मैं मेत समाए। नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है, जे अन दिन हर नाम ते आए महला तीजा। अंतर कपट मरमुख अज्ञानी, रसना झूठ बोलाए। कपट कीता हर पुरख ना पीजे, नित वेखै सुनै सुभाए। दूजै पाए जाए जग प्रबोधै,

है काम क्रोध अहंकारा यह जम की सिरकार है इना ऊपर जम का डंड करारा मनमुख जम मग पाईन जिन दूजा भाव प्यारा जमपुर बदे मारियन को सुने ना पुकारा जिसनों कृपा करे तिस गुर मिले

पाए, गुर कै शब्द पर जाली है, तां एह विचों जाए। तन मन होवै उजला, नाम वसै मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए महला तीजा। एहो मन के तड़िया जुग भरमिया, फिर रह न आवै जाए, हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेल उपाय, जां हर बख्शे ता गुर मिलै, अस्थिर रह समाई।

रस होगी। आप अतीत अलिप्त है निर्योग हर जोगी, जो तिस भावै सो करे हर करे सो होगी। हर गुरमुख नाम त्याई है लह जाहे वजोगी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह आप अखाएंदा गुर शब्दी सच सोए, वाह वाह सिफत सलाह है गुरमुख बूझै कोए। वाह वाह बाणी सच है सच मिलावा होए, नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया कर्म प्राप्त होए। महला तीजा। वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई। वडभागियां वाह वाह मुंह कढ़ाई,

का नाम। जिन सेविया तिन फल पाया थौ तिन बलिहारै जाओ। वाहु वाहु गुणी निदान है जिसनु दे सो खाए। वाहु वाहु जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाहु वाहु गुरसिख नित सब करहु गुरपूरे। वाहु वाहु पावै नानक। वाहु वाहु

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाम सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भय अचिंत हर धन चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उचा निर्णय। महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो बरसना ता बरस कना बहुल बरसह काही। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास

पौड़ी नित जपिए सास ग्रास नाओ पर्वत गारदा जिसनो करे रहम तिस ना विसारदा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचारदा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनो लाए सच तिसे उधारदा जिस दै होवे वल सो कदे ना हारदा सदा भग दी बाण है हौ तिस नमस्कार दा श्लोक महला पंजवां काम क्रोध लोभ छोड़ी दीजे अग्न जलाई जीव दया नित जापीए नानक साचा नाओ महला पंजवां सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

तिन संग संग ना की चई नानक जिन्ना अपना सुआउ पौड़ी ता वेला परवान जित सतगुर भेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया निचल थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए ध्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिया जाप जे मुखो बोलेटिया हुक्मे भोजनिहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुड़ ना खोटिया। सलोक महला पंजवा विशोहे जंबूर हवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मलन नानक सुख संभूर।

आप दया तारी समरथ चुके बिल बलाप नथे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियां ने अपनी रख गरीब नवाज थाप आपे लयन छडाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख तराप।

नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह भेटत साध संगात महला पंजवा राम रमोह बड़ भागी हो जल थल महियल सोए नानक नाम आराध्य है।

ना जाए। गुर समरथ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अपेव। सलोक महला पंजवा। उदम करेंदिया जियो तू, कमाम दिया सुख पुंच, त्याए दिया तू प्रभु मिल। नानक उतरी चिंत महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन, निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी। कर कृपा भगवंत पौड़ी, तेरा कीता हुए ता काहे डरपी है, जिस मिल जपिया ना।

अहंकार सब किस तिसकै वस न कोई बाहरा सो भगता मन बुठा सच सुमाहरा तेरे दास ध्यान तुद तू रखन वालिया सिर सबना समरथ नदर निहालिया।

जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप किरपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसै दयाल बुझाए हुक्म मित जिसै भुलाए आप मर मर जमह नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल खिन टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खव सकै है हर जोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगै बिन लाणिया नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक हर सत्ते।

दौलत बन महिया अजहू ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कि यो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर का।

आई आवत किने ना पेख्यो कमने जाने री बाई कौन कह किन बूझी है रमैया आकुल री बाई रहाउ ज्यों अकाश पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई।

ठाकुर लिव लागी जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख भाग सभागे रहाउ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिसम पई मुख लागे सगली रैन सोई अंधियारी गुर किंचत कृपा जागे जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहे तुम सर अवर ना लागे देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली रहाव प्रिय के बचन सुखाने ही अरे यह चाल बनी है भली लटुरी मधुरी ठाकुर पाई ओह सुंदर हर ढुल मिली एको प्रियो सखियां सब प्रिय की जो भावे पेर सा भली नानक गरीब क्या करे बेचारा हर भावे तित राहे चली देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलूलै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाव हों फिरों दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मेल है मेरा प्रीतम प्यारा हम तिस की गोल गोली है।

0: संतर जार, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार, जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मरार, देव गंधारी, हर गुण गावे हों तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिल है जूठारी, हम रह जिये होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ियारी, हमरी मुदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी, ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी, जन नानक सरन तुम्हारी, देव गंधारी, हर के नाम बिना सुंदर है नक्ति, ज्यों बेसवा के करपूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रक्ति रहाओ, जिनकै हृदय नाही हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरक्ति, ज्यों नु गुरा बहु बातां जाने, ओह हर दरगाह है प्रस्ति, जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकती, नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पातै शुक्ति, छका एक, देव गंधारी महला पंजवां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माई गुर चरणी चित लाइए, प्रभ होए कृपाल कमल पर गासी, सदा सदा हर त्याइए रहाओ, अंतर एको बाहर एको, सब मह एक समाइए, काट अव घट रविया सब ठाई, हर पूर्ण ब्रह्म दिखाइए, उस्तत करह सेवक मुन केते, तेरा अंत न कतहु पाइए, सुखदाते दुख भंजन स्वामी, जन नानक सद बल जाइए, देव गंधारी,
1: माई होनहार सो होइए,
0: राच रहियो रचना प्रभ अपनी, कहां लाभ कहां खोइए रहाओ, कह फूल है आनंद बिखै सोग, कब हसनो कब रोइए, कब हूं मैल भरे अभमानी, कब साधु संग धोइए, कोई न मेटै प्रभ का किया, दूसर नाही अलोइए, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जेह प्रसाद सुख सोइए, देव गंधारी, माई सुनत सो

बोल करत निमकना बिसरोहिए मोरे ते बिसरत जाई हौं मरत सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत ज्ञान पजरत निर्गुण क्रूप कुल हीन नानक हौं आनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं गावत सुनत जपत उधारै

ज्यो अपने प्रभ भाव नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलावो रहाओ अनक अडंबर माया के बिरथे ता स्यो प्रीत कटावो ज्यो अपनो स्वामी सुख माने ताम है सोभा पावो दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख ब

श्री सेवा दर्शन दुख अवतारेउ नाम जपत महासुख पायो चिंता रोग बदारेउ काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारेउ माया बंद काटे कृपा निध नानक आप उधारेउ देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाउ आप मेट पए सरनाई एह मत साधु कही प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया भरम अंधेरा लही।

राम नाम रस माते महा किल बिख कोट दुख रोगा प्रभ दिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

अग्ञान अंधेरा संती काटिया जी दान गुर दैनी कर कृपा कर लीनो अपना जल ते शीतल होनी कर्म धर्म किस उपज ना आयो नह उपजी निर्मल करनी

रहाउ। खोजत खोजत खोज बिचारियो, हर संत जना पह आहा। तिने प्राप्त एहो निधाना, जिनकै कर्म लिखा। ते बड़ भागी ते पत

देव गंधारी पंजवा मन गुरमिल नाम अराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल भाद्यो रहाओ कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पाद्यो भाओ भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साध्यो भयो अनग्रहो मिट्यो मूर्चा अमोल पदार्थ लाद्यो बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा देव देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफले आया जीवन फल ताको पार ब्रह्म।

सुपनै ही पुरजायो इतनी ना बूझै कबहू चलना विकल भयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपायो लोभ सुनै मन सुख कर मानै बेग तहां उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो देव गंधारी पंजवां।

आग हर चरनी लागो जिस प्रभे अंचल गही है आंच न लागे अग्न सागर के शरण स्वामी की अही है कोट पराध महा कीर्त कान बहुर बहुर प्रभ सही है परना मैं पूर्ण परमेश्वर नानक तिस शरण ही है देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दूप बनाते उतरे सगल कलेचा रहाव जन्म जन्म के किल विखनाश हैं

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करहु अनग्रहु स्वामी मेरे मन ते कभू ना डारो रहाओ साधु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन मह इहो सुख धारो गुण गावह ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निदान नानक दान पावो कंठ लाए उड़ धारो देव गंधारी।

तलाइय संकट घोर कटे खिन तर नानक हर दर्श समाइय देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाव दुई कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन त्याया

जब चितवो तब तुहारी, उन समाहार मेरा मन साधारी, सुन गावो गुरबचनारी, बल बल जाऊं साध दरसारी, मन मैं राखो एक असारी, नानक प्रभ मेरे करने हारी, देव गंधारी महला पंजवा, प्रभ यह मनोर

जन चरनी निस बासर दर्श पाव तन मन अर्प करूं जन सेवा रसना हर गुण गाव सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिए एक आधार नाम धन मोरा आनंद नानक एहो लही है।

पाए। छोड़ न जाए सद ही संगे, अन दिन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्ब सुखैना, त्याग न कतहु जाए। अनक अनक भांत बहु पेखे, प्रिय रोम न समसर लाए। मंदर भाग सोभ द्वार, अनहत रुण चुन लाए। कहो नानक सदा रंग माणी, ग्रह प्रिय तीके सद थाई।

तरन परियो संत हारिए, कहो नानक प्रभ मिले मनोहर, मन शीतल बिगसारे, देव गंधारी महला पंजवा, हर जप सेवक पार उतारियो, दीन दयाल भये प्रभ अपने, बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ, साध संगम गुण गावे हर के, रतन जन्म नहीं हारियो, प्रभ गुण गाए बिखै बन तरिया, कुल है समूह उधारियो, चरण कमल बसिया रिद पीतर, तास ग्रास उचारियो, नानक ओट गही जगदीश्वर, पुनः पुनः बलिहारियो, राग देव गंधारी महला पंजवा कर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, करत फिरे बन पीख, मोहन रहत नराग।

चार बरन्ना मुक्त भये देव तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया दुतिया गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निध पाई सहजो राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक रे हर एक जान एक रे गुरमुख जान रहाउ काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई रविया रे रविया सर्वथान ज्यों बैसंतर काष्ट मझार बिन संजम नहीं कार्य सार बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार मिल संगत ताज अभमान

प्राण आधार समर्थ अथाह बड़ा प्रभ मेरा कट कट अंतर साहिब नेरा ताकि शरण आसर प्रभ नानक।

चुटकी रे मन चुटकी रे काकत संग ना चुटकी रे रहाओ। ज्यो काजर भर मंदर राखियो जो पैसा कालू की रे दूरों ही ते भाग गयो है जिस गुरमिल चुटकी त्रे कुटीरे मांगो दान कृपाल कृपा।

रहाउ। मद माया कै भयो बावरु, हर जस नह उचरै, कर परपंच जगत को डहकै, अपनो उधर भरै। स्वान पूछ ज्यों होए ना सूदो, कहो ना कान धरै। कहो नानक भज राम नाम नित, जां ते काज सरै। देव गंधारी महला नवा, सब किश जीवत को व्यवहार। मात पिता भाई सुत बंधप, हर फुन ग्रह की नार रहाव। तन ते प्राण हो जब न्यारे, तीरत प्रेत पकार। आद घड़ी को नह राखै, घर ते देत निकार। मृग तृष्णा ज्यों जग रचना, यह देखो हृदय विचार। कहो नानक भज राम नाम नित, जहां ते होत उधार। देव गंधारी महला नौवां, जगत मैं झूठी।

पोयंगन बसरिया अनक उपरिया तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहाव मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन किरिया सगल बटरिया बिरख एकत्रिया बहुबंद है परिया हिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवां हर की गत नह को जाने जोगी जति तपी पाच हारिए अर बहु लोग सियाने रहाव इन मह राव रंग को करी

राम हर रस बीता हर मन प्यारा मन हर रस नाम चकोले राम गुरमत मन ठहराइए मेरी जिंदड़िए अनक ना काहू डोले राम मन चिंदड़ा फल पाया हर प्रभु गुण नानक बाणी बोले राम गुरमत मन अमृत गुठड़ा मेरी जिंदड़िए मुख अमृत बैन अलाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए मन सुनिए हर लिव लाए राम श्री वचुन्ना हर प्रभ पाया गल मिलिया सहज सुपाए राम जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़िए अनहत शब्द बजाए राम सखी सहेली मेरिया मेरी जिंदड़िए कोई हर प्रभ आन मलावै राम हौ मन देवो तिसे आपना मेरी जिंदड़िए हर प्रभ की हर कथा सुनावै राम गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदड़िए मन चिंदड़ा फल पावै राम नानक भज हर शरणागति मेरी जिंदड़िए वडभागी नाम त्यावै राम कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़िए गुरमत नाम परगासे राम हौ हर बाज उदीनी।

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम ते सर्वन भले शोभ नीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए जो जाए लगे गुर पैरे राम गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम च तेरे राम ते नेत्र भले प्रवान है मेरी जिंदड़िए जो साधु सतगुरु देख है राम ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए जो हर जस हर हर लेख है राम तिस जन के पग नित पूजिए है मेरी जिंदड़िए जो मार्ग धर्म चले सह राम नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए हर सुन हर नाम मने सह राम धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए सब हर हर नाम त्यावै राम पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए नित हर हर हर जस गावै राम वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए मुख हर हर नाम।

राम जिस अंतर हृदय शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झख मारन

एक अराध्या मेरी जिंदड़िए तिना नाही किसै दी किस चड्डा राम गुर सेवै हर महल पाया मेरी जिंदड़िए झख मारन सब निंदक कंडा राम जन नानक नाम त्याया मेरी जिंदड़िए तुर मस्तक हर लिख छड्डा राम बिहागड़ा महला चौथा सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ।

लड़िए मिल साधु संग अगाणे राम। हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए, जप हर हर कृष्णा जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए, इस मन नाम वसाए राम। जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए, सो हर धन निध पाए राम। वडभागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए, नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर राव रहे आ मेरी जिंदड़िए।

को बधाता तुरहों लिखिया तिना रहन दिन लिव लाइए। हो मैं ममता मोह छुट्टा जा संग मिलिया साधी जन कह नानक मुक्त हुआ हर हर नाम अरादी। कर जोड़े हो संत एकत्र होए मेरे लाल जियो।

तिन संग जिन बधाता पाया नाम राते जी दाते नित देहे चढ़े सो आया रिद सिद्ध नव निदहर जप जिन्नी आत्म जीता बिनवंत नानक बड़ भाग पाई है साध साजन मीता जिन्नी सच वणंजिया हर।

संत प्रसाद तरे पवजन पूर्व लिखिया पाया वजी वदाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर एच पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद वद सुख रैनड़िए प्रिय प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसों सदा पगा पग धूर बांचो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रिय रंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजालीनी प्रेम पीनी मिलन प्रीतम।

चरण लग है, मन प्रिय प्रेम घना, हर की भगत मंग है, हर भगत पाई है, प्रभ त्याई है, जाए मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्प तन तन एहो मना, बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण, भ्रम भीत हर हर मिल भग है, बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए, हर नाम नित नित नित जप है, हर नार सुहागनी सब रंग माणी, रांड ना बैसे ही प्रभ पुरख चिराणी, नह दुख पावे प्रभ त्यावे, तन ते बदभागिया, सुख सहज सोवे है, किल विख खोवे है, नाम रस रंग जागिया, मिल प्रेम रहना हर नाम गहना, प्रिय बचन मीठे पाणी, बिनवंत नानक मन इच्छ पाई, हर मिले पुरख चिराणी, तित ग्रह सोहलड़े कूड आनंदा, मन तन रव रहा प्रभ परमानंदा, हर कंत अनंत दयाल श्री धर, गोविंद पतत उदारनु, प्रभ कृपा धारी हर मुरारी, भय सिंध सागर तारनु, जो सरण आवै तिस कंठ लावै, एहो बिरध स्वामी संदा, बिनवंत नानक।

गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नास्ते जन्म मरण ना होए तिसको कट्टे जम के पासे मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो मिनवंत नानक तार कृपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावह संत जना प्रभ का जय कारो राम मिल संत गावह खसम पावह हर प्रेम रस रंग भिन्निया हर लाभ पाया आप मटाया मिले चिरी विचुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम अपारू बिनवंत नानक सदा निर्मल सच शब्द रुण चुनकारू सुन बड़ भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी किस हृदय सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नाम हुआ कल कलेशा दुख हरे हर सरन पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मन तन पाणी बिनवंत नानक सदा गाइए पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भए किस कहन ना जाई राम जिसते उपजेड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया

0: तपत ना कत है बुझे बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारिये, नाथ निर्गुण कछ ना जाना।
1: मेरा गुण अवगुण ना बिचारिये,
0: दीन दयाल गोपाल प्रीतम। समरथ कारण करना नानक चातरक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना। हमें सरोवरो पियो हर हर नामा राम, संत है संग मिले जप पूर्ण कामा राम। सब काम पूर्ण दुख बदीरन, हर निमख मन हुना बीसरे। आनंद अनदिन सदा साचा, सर्व गुण जगदीसर। अगणत ऊच अपार ठाकुर, अगम जाको तामा। बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन, मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला, सुन गावन हारे राम। हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत

सदमना शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊचे अगम अपारी बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारी बिहागरा।

गुणग पालना जप है रसना, फिर कदहो से देह आवे, तरवर सुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के, सदा फिर दुहेली, तू बलवंच लूक कर है, सब जाने जानी राम, लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम, किरत कमाने दुख सहो प्राणी, अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता, रतन जन्म गवाया एक सहार के नाम बाजू, आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया, भरम मोहे लोभाणी बीच ना कोई करे, किरत घन विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया, पकड़े चलाया अपना कमाया, महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया, तपत थम गल लातिया, काम क्रोध अहंकार मूठा, खोए ज्ञान पछतापिया, बिनवंत नानक संजोग भूला, हर जाप रसन ना जापिया, तुझ बिन को नाही प्रब राखण हारा राम, पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम, पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला, अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

अनक दुख कमावनी अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावनी कर अनग्रह पतत पावन बहु जोन प्रम ते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महा चंचल दोख कर कर जोरी नानक सरन

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत कह जाही, आद अंते मद पूरन, सर्वत्र घट कट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो, सेवक सियाणे राम, सरपर विचड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला, कहां अस्थित पाईऐ, बिन नाम हर के आन रचना, अहला जन्म गवाईऐ, हौ हौ करतना तृष्ण बूझै, नह काम पूर्ण ज्ञानी, बिनवंत नानक बिन नाम हर के, कीत्या पछताने, तार अनग्रहो, अपना कर लीना राम, पुजा गह काग लियो, साधु संग दीना राम, साध संगम हर अरादे, सगल कलमल दुख जले।

तुद जेवड़ होर शरीक होवै ताय आखियै तुद जेवड़ तू है होई जिन तू सेवया तिन सुख पाया।

पाए। गुर का शब्द संभाल तू मूड़े, गात मत शब्दे पाए। नानक सतगुर तद ही पाए, जा विचों आप गवाए पौड़ी। जिस दै चित वसया मेरा स्वामी, तिसनों क्यों अंदेसा किसै गलै दा लोड़ी है। हर सुखदाता सबना गल्ला का, तिसनों त्याए दया किव निमख घड़ी मुँह मोड़ी है। जिन हर त्याया तिसनों सर्ब कल्याण होए, नित संत जना की संगत जाए बहिया मुँह जोड़ी है। सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के, सब जन के बंधन तोड़ी है। हर कृपा ते हुआ हर भगत, हर भगत जना कै मुहे दिठै। जगत तरिया सब लोड़ी है। श्लोक महला तीजा, सारस ना जल जाओ। जिन हर का स्वाओ ना पाया, नानक रसना शब्द रसाए। जिन हर हर मन वसाया, महला तीजा सारस ना जल जाओ। जिन हर का नाउ वसारिया, नानक गुरमुख रसना हर जपै। हर कै नाए प्यारिया पौड़ी, हर आपे ठाकुर सेवक भगत। हर आपे करे कराए, हर आपे वेखै विगसै आपे। जित पावे तित लाए, हर इक ना मार्ग पाए आपे। हर इक ना उजड़ पाए, हर सच्चा साहिब सचत पावस। कर वेखै चलत सुभाए,

नानक तरवर एक फल दुए पंखेरु आहे आवत जातमा दी सही ना पर पंखी ताहे बहुरंगी रस भोगिया शब्द रहै निर्वाण हर रस फल राते नानका कर्म सच्चा निशान पौड़ी आपे धरती आपे है राह आप जमाए पिसावै आप पकावै आप भांडे दे परोसै आपे ही बह खावै आपे जल आपे दे शिंगा आपे चुली भरावै आपे संगत सद बहालै आपे विदा करावै जिसनु कृपाल हुए हरे आपे तिसनु हुक्म मनावै। सलोक महला तीजा। कर्म धर्म सब बंदना पाप पुन संबंध ममता मोह सो बंदना पुत्र कलत्र सो तंद जह देखा तह जेवरी माया का संबंध।

सच वसै अज्ञान अंधेरा जाय। सब किस देखै तिसै का जिन किया तन साज। नानक शरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी

0: दिन रह सदा गुण गाई, बिन कर्म किन ना पायु,
1: भौक मोए बिल लाई।
0: गुर कै शब्द मन तन भिजै, आप वसै मन आई, नानक नदरी पाई, आपे लई मलाई पौड़ी, आपे वेद पुराण सब शास्त्र, आप कथै आप भिजै, आपे ही बह पूजे करता, आप परपंच करीजै, आप परविरत आप निर्विरति, आपे अकथ कथीजै, आपे पुन सब आप कराई, आप लिप्त वर्तीजै,
1: आपे सुख दुख देवै करता,
0: आपे बख्श करीजै। श्लोक महला तीजा। सेखा अंदर हो जोर छड तू, पहो कर झल गवाए, गुर कै भय कीते निस्तरे, भय विच निरभउ पाए। मन कठोर शब्द भेद तू, शांत वसै मन आए, शांति विच कार कमावनी, सा खसम पाए थाए, नानक काम करो।

कल युग बोहित होए गुरमुख हो वैसो पार पवे जिन्ना अंदर सत्या सोए नाम संभाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म

खंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते तू हर सुखदा।

हरस्यों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिलिया मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया। आपे दस अठ वर्ण उपायन, आप ब्रह्म आप राज लिया। आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया। आप अभुल ना भुलै कब ही,

गुर प्रसादी जीवत मरै हुक्मै बूझै सोय। नानक ऐसी मरनी जो मरै तां सद जीवन होए पौड़ी। जां आप कृपाल होए हर स्वामी तां अपना नाउ हर आप जपावै। आपे सतगुर मेल सुख देवै अपना सेवक आप हर भावै। अपनिया सेवकां की आप पैज रखै अपनिया भगतां की पैरी पावै। धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवै। जो हर का प्यार

प्रकार अमृत भोजन नाम हर राज्य राज्य जन खाहु सब पदार्थ पाइन सिमरन सच लाहु संत प्यारी पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहु सलूक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए जे को मूर्ख आपहु जाने अंधा अंध कमाए नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनो कृपा करे रजाए महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए तिस जोगी की नगरी सब को वसे भेखी जोग ना होए नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस घट प्रगट होए पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंडे सन बाही सन बाह एते वेश करेंदिए मुंडे सहो रातो अबराहा ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहो रावण गईया हों धादी कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टिया भरिए मांग संधूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

मलाया, पूरे सतगुर हर नाम त्याया रहाय। ब्रह्म वेद बाणी परगासी, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने। तामस बहुत अहंकारा, किसन सदा अवतारी रूदा, कित लग तरै संसारा। गुरमुख ज्ञान रते जोगे अंतर, चूकै मोह गुबारा।

देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाई, नाम परमल हृदय रहया समाय, नानक मस्तक जिस वड भाग, गुर की बाणी सहज बैराग।

मन आए परमे भूला फिरे संसार मर जन्मे जम करे खुआर नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया गुर प्रसादी।

जिन पेर रावया सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हौं क्या करी दोहागण।

मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा। वडहंस महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन वड्डी आस हरे, क्यों कर हर दर्शन पावा। हौ जाए पुछा अपने सतगुर, गुर पुछ मन मुग्द समझावा। भूला मन समझै गुर शब्दी, हर हर सदा त्याए। नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा, तो हर चरणी चित लाए। हौ सब वेस करी पिर कारण, जे हर प्रभ साचे पावा। सो पिर प्यारा मैं नदर ना देखै, हौ क्यों कर धीरज पावा।

सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागण जिन फिर रावड़ा सच सवरा हौ जाए पुछा सुहाग सुहागण तुसी क्यों फिर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नदर करी फिर सच मैं छोड़ियाड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करहो हर प्रभ का इत मार्ग भैने मिलिये अपनड़ा प्रभ नदर कर देखे नानक जोत ज्योति रलिये जो हर प्रभ का मैं दे सनेहा तिस मन तन अपना देवा नित पक्खा फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी ढोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा सुनाए तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा नानक मन आस पुजाए गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम ते आवा गुर सत गुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा नित नित।

खाले। जिसनो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले, सो हर हर नाम सदा सदा संभाले। जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया। वडहंस महला पंजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हत ऊंचा ताका दरबारा अंत नाही किश पारा वारा। कोट कोट कोट लख तावै एक तिल ताका महल ना पावै। सहावी कौन सो वेला जित प्रभ मेला रहाव, लाख भगत जाको अराध है लाख तपीसर तप ही साध है। लाख जोगीसर करते जोगा लाख पुगीसर भोग है भोगा, कट कट वस है जान है थोड़ा।

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला पंजवां, धन सो वेला जित दर्शन करना।

तब दाते जिसह जनाब हो तिनह तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता बड़ा हंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जल तल महियल रहे आपर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रित पारे सरन परे हो नानक हर द्वारे बड़ा हंस महला पंजवा तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे चरण कमल हृदय उरतारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारी।

साज संग हर अमृत पीजै, ना जियो मरे ना कबहू सीजै, वडभागी गुर पूरा पाइय, गुर किरपा ते प्रभु त्याय रहाउ। रतन जवाहर हर मानक लाला, सिमर सिमर प्रभ भए निहाला, जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना।

तार संभाली, मैं निर्गुण कौ रख लेता। हों पई उड़ीनी कंत को अमाली, सो पेर कद नैनी देखा। सब रस भोगण विसरे, बिन पेर कितै ना लेखा। यो कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हों वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिने आगे हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पेर कामना आए। जां सह बात ना पुछिया अमाली, तां बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए। हों वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके धुआं सद पाए। जिचर दूजा भरम सा अमाली।

वारी खसम कढाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावना। सब उपायन आप आपे नदर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे। सब कोई मीठा मांग देखे, खसम भावे सो करे।

रंग रत्ती मुइये सुभावंती नारे सच्चा शब्द मिल रही मुइये फिर रावे पाए प्यारी सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी हर हर स्यों ने हो रचाया आप गुआया ता फिर पाया गुर कै शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन मेल लई पिर आपे साचै साह सवारी निर्गुण वंतड़िए पिर देख हदूरे राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये फिर रव रहया भरपूरे राम फिर रव रहया भरपूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली फिर सहज रावै मिलया कर्म विधाता जिन हर रस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही भरपूरे नानक कामन सा फिर भावै।

नानक हर की भगत नराली, गुरमुख विरलै कीजै। गुरमुख खेती हर अंतर बीजी, हर लीजै शरीर जमाए राम। अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम। लाहा परथाए हर मन वसाए, धन खेती वापारा। हर नाम त्याए मन।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमती मन निज घर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा

पारा, खोटे खरे सब परखियन, तित सच्चे कै दरबारा राम, खोटे दरगहा सुतियन, उभे करन पुकारा राम, उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा, मन मुख जन्म गवाया, विख्या माया जिन जगत पुलाया, साचा नाम ना पाया, मन मुख संता नाल वैर कर,

से आखी है और करना किछु ना जाई राम। जित भावे तित लाए सी ज्यों तिस दी वडियाई राम। ज्यों किस दी वडियाई आप कराई वरियाम ना फुसी कोई। जगजीवन दाता कर्म विधाता आपे बक्के सोई। गुर प्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई। आप करे किसे आखी है और करना किछु ना जाई।

रसना हर रस पीजै अंतर पीजै साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पिए पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रबीजै नानक नाम रते से निर्मल होर हूं मैं मैल परिजै पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पह करह पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागे माया के वापारा राम माया के वापारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाई बिख का कीड़ा बिख स्यो लागा बिष्टा माही समाई जो तुर लिखिया सोए कमावे कोए ना मेटन हारा नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया।

सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रत्ते अंत नबेरा, नानक नाम रत्ते से सच समाणी, बहुर ना पवजल फेरा, माया मोह सब बरल है, दूजे

कै कोई जिन सृष्ट साजी सो कर वेखै तिस जेवड़ अवर ना कोई मनमुख अंधा तप तप खपै बिन शब्द शांत ना आई नानक बिन नावै सब कोई भुला माया मोहे खोआई एहो जग जलता देख कै भज पया।

सेवा लागे सेवट भागे जुग जुग एको जाता जात सत संयम कर्म कमावै बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवै हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजै होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे देह बुझाई राम आपे देह बुझाई अवर ना पहाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सुभाखिया घर मह निज घर पाया सतगुरु दे वडाई नानक जो नाम रते से महल पाए मत प्रवान सच साई वडहंस महला चौथा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सतगुर प्रीत लगाई राम हर हर।

आए जप हर हर नाम भिक्षे राम जप हर हर नाम कमल पर गास्ते हर नाम नमंग निद पाई हौ मैं रोग गया दुख लाथा हर सहज समाध लगाई हर नाम वडाई सतगुर ते पाई सुख सतगुर देव मन परसते हौ जीवा हौ जीवा सतगुर देख सरसे कोई आण मलावे मेरा सतगुर पूरा राम हौ मन तन देवा तिस काट शरीरा राम हौ मन तन काट काट तिस दे जो सतगुर बचन सुनाए मेरा मन बैराग भया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो सुख दाते देहो सतगुर चरण हम धूरा।

हर पुरख निरंजन सोई राम, हर हर नाम जिन्नी आराध्या, तिनका दुख भरम पौ भागा, सेवक भाई मिले वडभागी, जिन गुर चरनी मन लागा, कहो नानक हर आप मलाए, मिल सतगुर पुरख सुख होई, गुर जेवड़ दाता, मैं अवर ना कोई, बड़हंस महला चौथा, हौ गुरबिन खरी निमाणी राम, जग जीवन दाता, गुर मेल समाणी राम, सतगुर मेल हर नाम समाणी, जप हर हर नाम त्याया, जिस कारण हो ढूंढ टुनेंदी, सो सज्जन हर घर पाया, एक दृष्ट हर एको जाता, हर आत्म राम पछाणी, हौ गुरबिन खरी निमाणी, जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया,

रह तिनके जिन सतगुर पुरख प्रभ के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी शरदा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी शरदा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाई किस बिन घड़ी निमक नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हरे आपे शरदा लाए मलाए हरे आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम हरे आपे मेलै करै सो होई राम जो हर प्रभ भावै सोई होवै अवर न करना जाई बहुत सियाणप लया न जाई कर थाके सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर ना कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई बड़ा हंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास ग्रासे जिनको हर प्रभ कृपा धारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया

हर मिले हर गुण सुख घनी, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बडभागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया, नानक बखाने नाम जाने, हर नाम हर प्रभ मंगिया, कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया, देह घोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुरु जी।

0: तुद सलाही
1: गुण अवगण मेरा किसना बिचारिया
0: बख्श लिया खिन माही नौ निद पाई बजी वधाई वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वार घर पाया मेरे लाथे जी सगल वसूरे सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन चलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच धनी चंत तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम ते सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम ते सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदारने आए भै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए जिन कौ कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक तिन कोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया सलोक लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखड़िया बेअन्न।

से परधान्य हर से तीरंग राते हर रसै अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने पाणी कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिनकै सद कुरबाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी संत तिन खनिया वन्या।

भ्रम दुख दर्द निवार खिन मह रख ले हो दीन दयाला मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो सरण आवे गुण निदान पावे सो बहुड़ जन्म ना मरता बिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता आठ पहर हर त्याइए राम मन इच्छे अड़ा फल पाइए राम मन इच्छ पाइए प्रभ त्याइए मिटह जम के त्रासा गोविंद गाया साध संगाया भई पूर्ण आसा तज मान मोह विकार सगले प्रभु कै मन पाइए बिनवंत नानक दिन सरैणी सदा हर हर त्याइए दरवाजे है अनहत वाजे राम घट घट हर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा बिराजे अगम अगोचर ऊंचा गुण बेअंत किस कहन ना जाय कोई ना सकै पहुंचा आप अपाए आप प्रतपाले जी जंत सब साजे बिनवंत नानक सुख नाम भगती दर वजह है अनहद वाजे राग बड़ा हंस महला पहला घर पंजवा अलाहनिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंदे लाया मोहलत पुन्नी पाई भरी जानी अड़ा घत चलाया जानी घत चलाया लिखया आया।

ऐथे आया सब को जासी, कूड़ करहो अहंकारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए, जे रोवे लाए प्यारो, वड़ांस महला पहला, आव हो मिल हो सहेली हो, सचड़ा नाम लए हां, रोवे है बिरहा तन का, अपना साहेब संभाले हां, साहेब संभाले हैं पंथ निहाले हैं, असा पे उते जाना, जिसका किया तिन्ही लिया, हुआ तिसे का पाणा, जो तिन कर

दूजी कार न भाले आप निरालम धंदे बाधी कर हुक्म छडावन हारू अज कल करदिया काल ब्यापै दूजे भाए विकारू जम मार्ग पंथ न सुजई उजड़ अंध गुबारूआ ना जल लेप तुलाइया ना भोजन प्रकार।

गई परांती। पेर निर्मायल सदा सुखदाता, नानक शब्द मलाए फिर हों चुनिया भी मिल है। जे सतगुर लाग है साचे पाए।

प्रेम समाय, जिन्हें अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता, कूड़ मुठी कूड़े आरे, सुने हो कंत मेहली हो, फिर सेवे हो शब्द विचारे, सब जागे आप।

प्यारी मैं प्रभ सच पछाणिया होर भूली अवगण यारी मैं सदा रावे फिर अपना सचड़ै शब्द विचारे सच्चै शब्द विचारे रंग राती नारे मिल सतगुर प्रीतम पाया अंतर रंग राती सहजे माती गया दुश्मन दुख सबाया अपने गुर कौ तन मन दीजै तां मन भीजै कृष्णा दुख नवारे मैं तेरे सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे सचड़ै आप जगत अपाया गुर बिन घोर अंधारू आप मलाए आप मिलै आपे दे प्यारू आपे दे प्यारू सहज वपारू गुरमुख जन्म सवारे धन जग मह आया आप गवाया दर साचै सचियारू ज्ञान रतन घट चानण होआ नानक नाम प्यारू सचड़ै आप जगत अपाया गुर बिन घोर अंधारू वडांस महला तीजा इहो शरीर जजरी है इसनों जर पहुंचै आई गुर राखे से उभरे होर मर जमै आवै जाए होर मर जमै है आवह जावह अंत गए पछतावह बिन नावै सुख न होई एथै कमावै सो फल पावै मनमुख है पत खोई जमपुर घोर अंधार महा गुबार ना तिथै भैण ना भाई

सच्चै नाम समाए हर गुण गाए मिल प्रीतम सुख पाए सदा आनंद रहै दिन राती विचो हों मैं जाए जिन्नी पुरखी हर नाम चित लाया तिनकै हों लागू पाए काया कंचन ता थीए जा सतगुर लए मिलाए सो सच्चा सच सलाही है जे सतगुर दे बुझाए बिन सतगुर भरम भलाणिया क्या मुँह देसन आगे जाए क्या देन मुँह जाए अवगुण पछताए दुखो दुख कमाए नाम रतिया से रंग चलूला फिर कै अंक समाए तिस जेवड़े अवर ना सूजई किस आगे कही है जाए सो सच्चा सच सलाही है जे सतगुर दे बुझाए जिन्नी सचड़ा सच सलाहिया हौ तिन लागो पाए से जन सच्चे निर्मले तिन मिलिया मल सब जाए।